0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: सरयू नदी के तट पर बसी सुंदर अवधपुरी, रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 22वीं तिथि के तदानुसार 13 जुलाई सन 2026। इस समय सुबह के 5:53 और 36 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें। ठीक 6 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 6:02 का समय रहेगा कार्यक्रम सुप्रभात का। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। आठ बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में मुख्य समाचार। 8:02 पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 9:02 पर आप सुनेंगे दिल के तराने, गाने नए पुराने।

11 बजे होंगे। एक बार फिर से हिंदी में समाचार। 11:02 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम बॉलीवुड ट्रेल्स। बारह बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 12:02 पर आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 1:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रेनबो हेल्पलाइन। दो बजे होंगे हिंदी में समाचार। 2:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 5:59 हो चुके हैं। लीजिए अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी का ये रेनबो चैनल है। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा, ईरान का हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आज आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से आज शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन पहुंचेंगे। कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरूआत की। माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू। थाईलैंड में कल देर रात बैंकॉक के एक पब में लगी भीषण आग में 27 लोगों की मौत हो गई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया और चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

सुबह के 6:07 और ठीक 10 सेकेंड हुए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 कार्यक्रम सुप्रभात शालिनी के साथ। यकीन की डोर को कमजोर कर देता है शक, दो प्यार करने वालों को भी दूर कर देता है शक। शक किसी भी रिश्ते या सुकून भरी जिंदगी के लिए वाकई एक धीमे जहर की तरह काम करता है। ये धीरे धीरे प्यार, मानसिक शांति और रिश्तों की नींव को अंदर से खोखला कर देता है। इसे कैसे दूर कर सकते हैं, इसी तरीकों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये खूबसूरत सा गीत।

बिल्कुल, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, कार्यक्रम सुप्रभात। आपको मैं हवाओं में तो नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि हवाओं में तो आप पहले ही तैर रहे हैं अपने सपनों में, है ना। मैं आपको वहां से उठाने का, जगाने का काम करूंगी, क्योंकि यही सच्ची दोस्ती है। और इस दोस्ती में शक की कोई भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शक जो है वो जिंदगी में जहर के जैसा होता है। और इसे कैसे खत्म कर सकते हैं, इस पे कैसे काम कर सकते हैं, तो आप खुली बातचीत कर सकते हैं। जो भी शक या गलत फहमी आपके मन में हो, उसे अपने मन में लंबे समय तक रखने के बजाय आप उसे सीधे सामने वाले से ना साथ बैठकर स्पष्ट रूप से बात कर लें। अपने मन की जो इनसिक्योरिटीज़ है ना, उनको खोलकर साझा करने से ना कई अनसुलझे सवाल खत्म हो जाते हैं। बात करने से बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं। तो चलिए, उन सारी बातों को हल करते करते इस गाने को साथ साथ आप उसका आनंद लीजिए। आप सुन रहे आकाशवाणी रेनबो 102.6, मेरे यानी शालिनी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात।

जरा सी नहीं, पूरी जगह दी है हमने आपको यहाँ पर, क्योंकि ये रेडियो स्टेशन आप ही के लिए तो है, आप ही के लिए हम यहाँ पर आते हैं। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ कार्यक्रम सुप्रभात। ये तो आप जानते ही है ना। और ये जो आप सिप सिप करके चाय कॉफी का स्वाद ले रहे हैं ना, उसकी महक यहाँ तक पहुंच रही है मुझे। देखा, जगा दिया ना मैंने आपको, ऐसी हूं मैं। तो फटाफट से ना आप जो है ध्यान लगाकर सुनिए वो सारी बातें जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपने देर से ट्यून इन किया ना, तो मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि ये है आकाशवाणी रेनबो 102.6 कार्यक्रम सुप्रभात, सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ। शक की गुंजाइश जहां भी थोड़ी सी होती है ना, मोहब्बत वहां रोज थोड़ा थोड़ा मरती है। शक जिंदगी में जहर के जैसा है, और इसे अपनी जिंदगी में ना उतरने दें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि विचारों और कल्पनाओं में उलझने के बजाय ना, केवल ठोस सबूतों पर विश्वास करें आप। जब भी शक आपके ऊपर हावी हो, खुद से सवाल करें कि क्या ये सिर्फ आपका वहम है या हकीकत। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मन में बहुत सारी बातें आती जाती हैं, बहुत सारे विचार आते जाते हैं, और हम उन्हें ही सच मान लेते हैं, उन्हीं पर भरोसा करते रहते हैं, और बस यहीं पर शक जो है वो पुख्ता होता जाता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने मन के बहकावे में नहीं आना है, ठोस सबूतों पर ध्यान देना है। ठीक है, फिलहाल ध्यान देना है इस गाने पर जो मैं आपके लिए चलाने जा रही हूं, तू ही मेरी शब, बाय केके।

बिल्कुल, ये गाना जो है ख्वाबों में नहीं हकीकत में बज रहा है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 और कार्यक्रम सुप्रभात जो है वो शुरू हो चुका है और शब जा चुकी है और सुबह जो है वो शुरू हो चुकी है। इसलिए आंखें खोलिए क्योंकि आपका जो अलार्म है ना वो 4-5 बार जो है बजकर वो बंद हो चुका है। अब हाथ हो गई है, उठ जाइए। इतनी खूबसूरत सुबह आपका इंतजार कर रही है और हम भी साथ में आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं कि शक की आदत बहुत बुरी होती है साहेब। ये आंखों देखी हकीकत को भी झुठला देती है। कई बार आंखों देखी और कानों सुनी भी गलत हो सकता है। ये सारी बातें गलत हो सकती हैं, बिल्कुल। तो जब तक आप जो है सच्चाई की गहराई तक ना पहुंच जाए, किसी बात पर यकीन ना करें, है ना। और कई बार क्या होता है ना कि आत्मविश्वास की कमी के कारण भी ना शक जन्म लेता है। खुद को बेहतर बनाने और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि जो व्यक्ति खुद में पूर्ण होता है वो सामने वाले में छोटी छोटी गलतियां या कमियां नहीं निकालता है। जो खुद को कम समझते हैं वही दूसरों में कमियां या शक की वजह तभी पैदा होती है जब वो खुद को कम समझते हैं। तो इसीलिए किसी शक को पैदा होने से पहले, उसको जगह देने से पहले दूसरे पहलू पर भी ध्यान दें। हो सकता है कि कोई और भी वजह हो सकती है जो आप सोच रहे हैं वो ना हो, है ना। तो इसीलिए शक में रहकर

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

बिल्कुल रहते हैं आप हमारे दिलों में, हमारे सभी श्रोता हमारे लिए बहुत खास है, हमारे दिलों में रहते हैं क्योंकि हमें इतना कीमती वक्त वो जो देते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अहम है। आज सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 कार्यक्रम सुप्रभात शालिनी के साथ। हालांकि ये जो है वो मैसेज बेस्ड शो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बहुत सारे श्रोता हमें मैसेज करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके हर मैसेज को पढ़ते हैं ध्यान से, यह और बात है कि हम उसे यहां पर कह नहीं सकते। किसी ने शक की बात पर कहा कि बहुत खूब कहा कि हम ना अपनी इंट्यूशन पर हमें ध्यान देना चाहिए, शक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वो हमें सच बताता है कि क्या है। और जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको किसी पर शक करने की, क्योंकि जो हमारा है वो हमारा रहेगा और जो नहीं है वो दूर चला ही जाएगा। ये बात किसी भी मुद्दे पर लागू होती है। और जो लोग रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते हैं उनका पता चल जाता है आपको अपनी इंट्यूशन से, अपने आत्मशक्ति से। तो किसी के लिए अगर शक आपके मन में आए तो आप जो है अपने मन की आवाज़ सुने पहले। क्यों गैरों की बातों में आकर अपनों पर तुम सवाल करते हो, कांच के बने इन धागों को तोड़कर क्यों मलाल करते हो। शक जिंदगी में जहर के जैसा है, इसे घुलने मत दीजिए। प्रेम से प्यार से बातों को सुलझा लीजिए और मिठास जिंदगी में घोल लीजिए। तुम मिले अगला गीत आपके लिए नीरज श्रीधर की आवाज में।

बिल्कुल सही कह रहे हैं नीरज श्रीधर, तुम मिली तो मिल गया ये जहां, है ना, क्योंकि आपसे मिलकर हमें भी ऐसा ही लगता है, बहुत खुश हो जाते हैं हम। और आपको कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं 9868107070 पर, यानी कि 9868107070 पर। कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ। शक जिंदगी में जहर जैसा होता है, ये जो करीबियों में भी दूरियां पैदा कर देता है शक, सच को भी झूठ की चादर उड़ा देता है शक, है ना। तो जब भी आप ओवरथिंकिंग करें, बहुत ज़्यादा सोचें, हर छोटी बात का नकारात्मक जो है वो मतलब निकालने की कोशिश करें, इससे पहले ज़रा सोचें, उसे सहज रूप से उस चीज़ के बारे में समझें कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। क्योंकि अक्सर ना हम अपने मन की बातों को सही मान लेते हैं और एक के बाद एक जो विचार आते रहते हैं वो चेन बनती चली जाती है, जो न सिर्फ हमारा नुकसान करती है बल्कि हमारे रिश्तों का भी नुकसान करती है। तो इसीलिए आप जो है वो आत्ममंथन करें, खुद से पूछें कि क्या आपका शक जो है वो किसी पुरानी घटना या डर पर आधारित है, जिसका आपके प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि वर्तमान स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं है। बिल्कुल ऐसा होता है, हम ना अगर एक बार हमें धोखा मिलता है तो हमें लगता है कि अब हम भरोसा करने के लायक ही नहीं रहे, तो हम शक करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और हंसते हैं तो हमें लगता है कि हमारा मजाक बना रहे हैं, जबकि बात कुछ और हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने किन्हीं बातों पर हंस रहे हो, लेकिन हम ही हमेशा जो है वो नेगेटिव मोड हमारा ऑन रहता है, या यूं कहें कि हमारा डिफेंसिव मोड जो है वो ऑन रहता है हमेशा। तो हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे पहलू पर आप सोच लीजिए शक करने से पहले, तो आपकी सारी मुसीबतें हल हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ मैं आपके लिए गाना चला रही हूँ तो आपका मूड भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है।

यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

बिल्कुल सही सुना है आपने, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम सुप्रभात सुन रहे हैं आप शालिनी के साथ। शक जिंदगी में जहर जैसा है। क्या आप भी शक करते हैं? थोड़ा करते हैं, ज्यादा करते हैं? किसी और पर शक करने से पहले आप ये सोच लीजिए कि ये आप पर असर डालता है। तो अगर आपको अपना ख्याल रखना है ना, तो शक करना कम कर दीजिए और कम करते करते धीरे धीरे खत्म कर दीजिए। क्योंकि ज्यादा शक करने वाले लोगों से ना आप दूरी बना लें तभी अच्छा है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में अगर आप खुद शक करते हैं तो भी कम करें, और अगर शक्की लोग आपके आसपास है ना तो भी उनका असर आप पर पड़ता है, संगत का असर तो पड़ता है, ये बात तो सच है। तो इसीलिए, और अगर आप बहुत लंबे समय से बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, शक करते हैं, तो आपको ना माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ज़रूरत है। शक से होने वाले तनाव को कम करने के लिए ना रोज़ाना कम से कम 10 से 15 मिनट आप मेडिटेट करें। इससे आपके विचारों में क्लैरिटी आती है, ठीक है? तो अगर प्यार है तो रखो भरोसा, बातें दिल की खुल कर बोलो, शक की इस कड़वी गांठ को वक्त रहते ही तुम खोलो। आंखों देखी बात पर भी कभी गौर कर लेना, पर बिना सोचे समझे कभी फैसला ना कर लेना। रिश्ते नाजुक धागे हैं, इन्हें प्यार से संभालो, मन से नफरत और शक का ये जाल निकालो, ठीक है? तो इसी के साथ आज का जो समय है वो हमें इजाजत और नहीं दे रहा है बात करने के लिए, तो मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द मिलेंगे आपसे, मैं कहती हूँ कि ख्याल रखें तो गाना सुनी जाए, ठीक है?

नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 7 बजे के मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए। तीनों परीक्षण से इसरो ने ये पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उनके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वे डूबेंगे या उलटेंगे नहीं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक का शुभारंभ करेंगे। वे कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के 3रे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण शुरू। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू किए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई और दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को होगा, जबकि फाइनल 20 जुलाई को खेला जाएगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

वेल ऐसा ऑप्शन तो होता नहीं है कि दिल सीने में दो हो लेकिन अगर ऐसा कोई ऑप्शन होता भी ना किसी दुनिया में तो भी दिल का बेहद ख्याल रखना चाहिए, बहुत संभाल के उसे रखना चाहिए, है ना। इसी ब्यूटीफुल बात के साथ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मंडे है यानी कि लगातार काम करने का दिन है। हम सभी जानते हैं कि वीकेंड के बाद मन बहुत बहुत मुश्किल से लगता है लेकिन अगर लग जाए ना तो आउटपुट बहुत अच्छा निकल सकता है। तो पूरी कोशिश कीजिए कि अपने पसंद के काम से शुरुआत कीजिए आज के इस दिन की, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने किया है। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आपके लिए लेकर आए हैं आकाशवाणी रेनबो पर। दिल्ली एनसीआर में आप हमें सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के जरिए हम आप तक पहुंच रहे हैं। डीटीएच के जरिए भी पहुंचते हैं, न्यूज ऑन एआईआर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी पहुंचते हैं, वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म भी है, कितने सारे मीडियम है दिल से दिल तक पहुंचने के लिए। इसीलिए दिल का ख्याल रखना बहुत

रही था कि बातें जो है वो एक दूसरे तक सही तरीके से कम्युनिकेट हो सके। करंट टेम्परेचर की बात करें, लगभग 31 डिग्री सेल्सियस है दिल्ली एनसीआर का, मैक्सिमम जाने वाला है 38 डिग्री तक, मिनिमम रहेगा और लगभग 29 डिग्री तक, इनकी 29 डिग्री सेल्सियस तक सनी वेदर रहेगा और बारिश की संभावना जो है ना वो काफ़ी कम जताई गई है। तो बस अब देखिए, बारिश तो बहुत लक पर डिपेंड करती है, आ गई तो आ गई, खैर बारिश आए ना आए मैं आ गई हूँ स्टूडियो में आपके लिए प्रोग्राम लेके, जो कि है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। बहुत सारी बातें मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए, इतिहास बताएंगे, कुछ लोगों को याद करेंगे और कुछ खेलों की जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुँचाएंगे। सुनते रहिए, जुड़े रहिए दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, जहाँ जहाँ आप जाएंगे हमें ही पाएंगे। और अब हम ले चलते हैं आपको 13 जुलाई यानी कि आज के दिन के इतिहास में। इतिहास के पन्ने क्या कहते हैं जो आज के दिन से जुड़े हुए हैं, वो ये कहते हैं कि 1645 की अगर बात करें तो अलेक्सेई रोमानोव ने अपने पिता माइकल की जगह ली थी और वो रूस के शासक बने थे। 1830 की बात करें तो जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन, जो कि अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है, बंगाली पुनर्जागरण की शुरुआत करने वाले अग्रणी संस्थानों में से एक है और इसकी स्थापना अलेक्जेंडर डफ और राजा राम मोहन राय ने की थी कोलकाता में। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एशिया का सबसे पुराना निरंतर संचालित होने वाला ईसाई उदार कला और विज्ञान का कॉलेज है, काफ़ी प्रतिष्ठित ये कॉलेज है। और 1832 की बात करें तो स्कूलक्राफ्ट ने मिनेसोटा में मिसिसिपी नदी के स्रोत की खोज की थी। स्कूलक्राफ्ट को ही इसकी आधिकारिक खोज का श्रेय दिया जाता है। इटली के एक बेहद मशहूर भौतिक विज्ञानी मार्कोनी की जब हम बात करते हैं तो 1897 में बेतार संदेश के लिए अमेरिकी पेटेंट उन्होंने हासिल किया था आज के दिन 13 जुलाई को। और इससे कुछ दिनों पहले अपनी इसी तकनीक का ब्रिटिश पेटेंट भी उन्होंने हासिल किया था, तारीख थी 2 जुलाई 1897 यानी 1897। अब 13 जुलाई को बात करते हैं हम क्रिकेट के, दुनिया के इतिहास की, एक बड़ा दिन है क्रिकेट के लिए हमारे, क्योंकि 13 जुलाई को भारतीय क्रिकेट इतिहास में कुछ अलग हुआ था। वो ये कि इसी दिन 1974 में भारतीय क्रिकेट टीम ने अपने पहले वनडे इंटरनेशनल मैच के सफर की शुरुआत की थी और इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहली बार 60 ओवर के प्रारूप का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला था। लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पे ये हुआ था और उस समय भारतीय टीम की जो कप्तान थी अजीत वाडेकर के हाथों में थी। हालांकि परिणाम भारत के पक्ष में नहीं था, लेकिन यही मुकाबला भारतीय क्रिकेट के उस सफर की शुरुआत बना जिसने आगे चलकर विश्व क्रिकेट की एक नई इबारत लिखी। और आगे चलकर तो हम सभी जानते हैं कि वनडे विश्व कप जीतकर दुनिया को अपनी ताकत का, क्रिकेट में अपनी महारत का एहसास भारत ने करवा ही दिया था। और भारत के इस पहले वनडे मैच को आज भी भारतीय क्रिकेट के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए नई संभावना के द्वार खोल दिए थे। और 1998 में 13 जुलाई यानी कि आज के दिन भारत के लिएंडर पेस ने, जो कि बहुत ही फेमस हमारे खिलाड़ी हैं, उन्होंने हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप में अपने जीवन का पहला ATP खिताब

वेल, इस ब्यूटीफुल ट्रैक के बाद हम याद करने जा रहे हैं कि ऐसी हस्ती को जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हम तक पहुंचाई और अमर हो गई उनकी लेखनी, उनके जाने के बाद भी आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनके बारे में सबको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित आशा पूर्णा देवी की, जो कि आधुनिक बांग्ला के में बहुत ही सम्मान के साथ पढ़ी जाती रही हैं, जिन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में लिखना शुरू कर दिया था और तभी से उनकी लेखनी जो है निरंतर सक्रिय बनी रही। एक उन्होंने एक ऐसे महत्वपूर्ण साहित्य का सृजन किया जो अगर गुण की दृष्टि से देखें या परिणाम की दृष्टि से देखें दोनों ही दृष्टियों में अतुलनीय रहा। कहानी लेखन में भी उनका हाथ उतना ही मजबूत था जितना वो उपन्यास लिखने में था। उनकी जो शुरुआती कहानियाँ थी वो किशोर अवस्था के पाठकों के लिए थी। 200 से ज़्यादा उपन्यासिक कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं, 800 से ज़्यादा कहानियाँ उनके नाम पर हैं जिनके माध्यम से उन्होंने समाज के विभिन्न पक्षों को उजागर किया। अपनी प्रतिभा के कारण ही आशा पूर्णा देवी को समकालीन बांग्ला उपन्यासकारों की पहली पंक्ति में गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। और आशा पूर्णा देवी को टैगोर पुरस्कार मिला 1964 में, लीला पुरस्कार पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया 1976 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उसी वर्ष में उन तक पहुंचाया गया, उनको उससे नवाजा गया। और इनका निधन हुआ 13 जुलाई 1995 को, लेकिन वो हमारे बीच छोड़ गई अपनी लेखनी, अपना साहित्य, अपनी बातें, अपने विचार। तो उन्हें हम याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस प्रोग्राम में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

पहले इस ब्यूटीफुल ट्रैक के बाद, और इसमें खास तौर पर ये जो गाना था ना, इसमें आप देखते हैं कि बहुत अच्छे से डांस मूव्स हो रहे हैं, और इसी तरह से डांस मूव की बात करते हुए हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही फेमस भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर रहे अस्ताद देबू के बारे में, जिनका जन्म हुआ 13 जुलाई 1947 में, और आज इनकी जयंती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही प्रसिद्ध ये समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर रहे, कथक के साथ साथ कथकली के जितने भी फॉर्म्स थे वो उन्होंने सीखे, और इन दोनों को मिलाकर इन्होंने एक नया डांस फॉर्म भी तैयार किया और बहुत ही ख्याति बटोरी। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो दी, 70 से ज्यादा देशों में इन्होंने एकल, सामूहिक और युगल नृत्य की प्रस्तुतियां दी, और मणिरत्न, विशाल भारद्वाज जैसे फिल्मकारों की फिल्मों में, और मशहूर चित्रकार MF हुसैन साहब की फिल्म मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज के लिए भी इन्होंने कोरियोग्राफी की, और उन्हें 2002 में उन्होंने अस्ताद देबू फाउंडेशन की स्थापना भी की, जो कि दिव्यांगों समेत कमजोर वर्गों को रचनात्मक प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था बनी। पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए, और आधुनिक नृत्य कला में योगदान के लिए उन्हें मिला साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार भी। 10 दिसंबर 2020 मुंबई शहर 73 वर्ष के वो थे जब उन्होंने इस दुनिया से विदा ली, लेकिन देबू साहब को रंगमंच की शैली के लिए, उनके नृत्य के लिए हमेशा याद किया जाएगा, जिसमें भारतीय और पश्चिमी शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। और मीनाक्षी फिल्म की बात हुई है, इसमें इन्हीं की कोरियोग्राफी थी, तो इसी के गाने के साथ मैं इस प्रोग्राम से, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR से आपसे विदा लेती हूँ, क्योंकि शिवेंद्र आ गए हैं आपके लिए स्पोर्ट्स पल्स लेके, तो खेलों से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए उनके साथ और सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। हमारी मुलाकात होगी दिल के तराने गाने नए पुराने में 9 से 10 के बीच में।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
1: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
2: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
3: स्पोर्ट्स पल्स।
4: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार करें। स्पोर्ट्स पल्स का एक और संस्करण लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ, और आज का दिन बेहद खास है। वैसे तो साथियों हर सोमवार खास होता है, खेल के लिहाज से बात करें तो हर दिन खास होता है, हर लम्हा खास होता है, हर वर्ष खास होता है, हर महीना खास होता है। खेल के मैदान पर हम देखते हैं जय और पराजय का अटूट सिलसिला चलता रहता है, और खिलाड़ी उनमें जो शिद्दत होती है, उनमें जो संकल्प होता है, जो जीवट होता है, जो उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि अगर आज हार गए तो कल जीतना है, और गिरकर उठना, उठकर गिरना जीवन की रीत पुरानी है। खेल के मैदान पर साथियों जय पराजय, हार जीत, विनिंग लूजिंग के सिलसिले चलते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, कुछ ऐसे मकाम होते हैं जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। और हम यहाँ पर दो इवेंट की बाबत आपसे ज्यादा बात करना चाहेंगे, वैसे अन्य खेलों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन क्रिकेट और टेनिस। क्रिकेट का मक्का कहते हैं लॉर्ड्स के मैदान को, टेनिस का मक्का कहते हैं विंबलडन के टेनिस कोर्ट्स को। और ये भी एक संयोग है साथियों कि इस समय लॉर्ड्स के मैदान पर, क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले मैदान पर, भारत और इंग्लैंड की टीमों के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा है महिला वर्ग का, जहां पर भारतीय टीम इस समय जीत की दहलीज पर पहुंच चुकी है। भारत ने पहली पारी में बनाए 285, इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए 170, भारत ने दूसरी पारी में बनाए 341 रन, 7 विकेट के नुकसान पर पारी घोषित कर दी। और इंग्लैंड जब कल तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ लॉर्ड्स पर, 130 रन बनाए थे उन्होंने, 6 विकेट गिर चुके थे, यानी जीत के लिए अभी भी इंग्लैंड को चाहिए 327 रन का पहाड़ सा लक्ष्य, और उनके सामने है सिर्फ 4 विकेट शेष। और बहुत से नई हिस्टोरिक बातें हुई हैं इस मैदान पर। यास्तिका भाटिया, उन्होंने भारत के लिए शतक लगाया, 113 रन बनाए। भारतीय महिला टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर जो एकमात्र टेस्ट मैच खेला जा रहा है, वहां पर जैसे हमने कहा कि यास्तिका भाटिया ने कमाल का खेल दिखाया, और उन्होंने स्मृति मंधाना के साथ पारी को संभाला। यास्तिका अंत तक नाबाद रहीं, 113 रन बनाए उन्होंने। स्मृति मंधाना दूसरी पारी में भी शतक से चूक गईं, 70 रन बना करके पवेलियन लौटी। शेफाली वर्मा ने दूसरी पारी में भारत के लिए 33 रन बनाए थे, और जेमेमा रोड्रिग्स हालांकि दूसरी पारी में कुछ खास नहीं कर सकी। यास्तिका भाटिया ने शतक जमाया। और एक लॉर्ड्स के मैदान पर साथियों एक रोल ऑफ ऑनर्स है, वहां पर जो खिलाड़ी 5 विकेट लेते हैं या शतक जमाते हैं उनके नाम उस रोल ऑफ ऑनर्स में शामिल किए जाते हैं। तो भारत की दो खिलाड़ी हैं, यास्तिका भाटिया जिन्होंने रोल ऑफ ऑनर्स में अपना नाम लिखवा दिया शतक जमा करके, और भारत की गेंदबाज क्रांति गौड़, उन्होंने पहली पारी में इंग्लैंड की 5 विकेट हासिल किए और एक अविस्मरणीय उपलब्धि उन्होंने अपने नाम दर्ज की, और साथ ही एक नया इतिहास रचा, और उन्होंने भी रोल ऑफ ऑनर्स में लॉर्ड्स के मैदान पर अपना नाम दर्ज करा दिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है लॉर्ड्स के मैदान के लिहाज से, सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट मैचेस में कभी शतक नहीं जमाया लॉर्ड्स के मैदान पर, जो आधिकारिक टेस्ट मैच होते हैं आईसीसी के, और अजीत अगरकर ने टेस्ट मैच में शतक जमाया है लॉर्ड्स के मैदान पर। तो लॉर्ड्स के मैदान पर रोल ऑफ ऑनर्स में अजीत अगरकर का नाम शामिल है साथियों, लेकिन सचिन तेंदुलकर का नाम शामिल नहीं है। और इसी तरीके से तमाम वाकयात हैं और अपने आप में खास उपलब्धि होती है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जीत की दहलीज पर है लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, महिलाओं का जो खेला जा रहा है भारत के साथ, और इंग्लैंड हार की कगार पर है। और कुछ दिन पहले ही, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, जब इंग्लैंड और वेल्स में T20 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था, यहां भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाई थी, और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा करके 7वां T20 वर्ल्ड कप खिताब जीता था, लेकिन लॉर्ड्स में खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने अपना आधिपत्य जमा रखा है। जीत से सिर्फ 4 विकेट भारतीय टीम दूर है। क्रांति गौड़ जिन्होंने 5 विकेट हासिल किए पहली पारी में, उन्होंने दूसरी पारी में भी इंग्लैंड के 2 विकेट हासिल कर लिए हैं। क्रांति गौड़ अपनी इस उपलब्धि को कैसे शब्द दे रही थी, आइए सुनते हैं।
5: कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि फर्स्ट नेम मेरा है, देन मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड की बात है। ये सारे प्लेयर्स का ड्रीम होता है, 5 विकेट फर्स्ट टाइम हमारा लॉर्ड्स में मैच हुआ है। एक ही थिंग्स था कि 5 विकेट लेना और बोर्ड में नाम लिखाना करके, देन विकेट्स लेना है टीम के लिए, टीम को भी जिताना है।
4: तो विकेट लेने हैं टीम के लिए, टीम को जिताना है, बहुत गौरव और गर्व की बात है। हम सभी के लिए भी बड़े गर्व और गौरव की बात है कि क्रांति गौड़ ने 7 विकेट हासिल कर लिए हैं और उन्होंने बहुत ही खास उपलब्धि अर्जित की है लॉर्ड्स के मैदान पर। भारतीय टीम, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम भी इन दोनों इंग्लैंड में है और वो 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला खेल रही थी। उसके बाद अब 3 वनडे मैचेस की सीरीज होनी है और उसके बाद भारत को जिम्बाब्वे का जो सीरीज है वो खेलनी है। भारत इससे पहले, इंग्लैंड से पहले आयरलैंड से सीरीज खेला, तो एक ड्यूबियस डिस्टिंक्शन भारतीय टीम के नाम पर दर्ज हो गया, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नाम पर, क्योंकि आयरलैंड ने 2 मुकाबलों की श्रृंखला में भारत को 2-0 से हराया और उसके बाद 5 T20 मुकाबलों की श्रृंखला का पहला T20 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। बाकी के 4 मैच इंग्लैंड ने बड़े प्रभावशाली अंदाज में जीते। आखिरी मैच उसमें इंग्लैंड ने बनाए 258 रन, भारत ने बनाए 201 रन, यानी भारत 57 रन से ये मैच हार गया और 56 रन से इनफैक्ट भारत मैच हार गया। श्रृंखला 0-4 से भारत हारा और काफी कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके बारे में टीम प्रबंधन को विचार विमर्श करना होगा आगे आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए, और जो एक प्रोफेशनल भारतीय टीम मैनेजमेंट है, बोर्ड है, वो जरूर उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम प्रबंधन विचार करेगा और टीम इस हार से उभरेगी। लेकिन इस श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व कर रहे थे श्रेयस अय्यर, और जैसा हम लगातार साथियों आपसे कहते हैं कि हार को शब्द देना कभी भी आसान नहीं होता, श्रेयस अय्यर टीम के हार के बाद क्या कह रहे थे, आइए सुनते हैं।
6: Definitely hurts, but I feel that it's a great learning for me as a captain and also for other players who have played here for the first time. When I say great learning, it's all about how you turn up for the tournament. You can't just have that mindset that you will come to England and you will win the series. You need to work hard, you need to be focused, which we were as a team, but I personally feel that they played exceptional cricket throughout in all 3 departments.
4: Yeah, Shreyas Iyer, ऑफ कोर्स कह रहे थे कि डिसअपॉइंटेड है टीम और ऑफ कोर्स हारना, हार के कारणों का विश्लेषण करना कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जैसे हमने कहा कि उम्मीद करें कि भारतीय टीम इस हार से उभरेगी और 3 वनडे मैचेस की सीरीज इंग्लैंड के साथ खेली जानी है। मंगलवार को पहला वनडे मुकाबला खेला जाएगा और उम्मीद करें कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम यहां पर अच्छा प्रदर्शन करेगी। उम्मीद ये भी करें कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम आज लॉर्ड्स में चौथा दिन है टेस्ट मैच का, 4 विकेट भारत को लेने हैं, तो भारत अगर इस मैच में जीत दर्ज करता है तो एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि होगी भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास में। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से आते हैं, विंबलडन के बारे में आपसे बात करेंगे।
0: इस समय आकाशवाणी दिल्ली से आप सुन रहे हैं खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
4: साथियों एक बार फिर से स्पोर्ट्स पल्स में स्वागत है। विंबलडन का हमने जिक्र किया था, जरूर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप फुटबॉल की। 3 मेजबान देश थे, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ वर्ल्ड कप के इतिहास में कि अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा ने इस टूर्नामेंट की मेजबानी की। ये टूर्नामेंट अब अपने बिजनेस एंड पर पहुंच चुका है, यानी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का फैसला हो चुका है। पहले सेमीफाइनल में 14 जुलाई को इंग्लैंड खेलेंगे अर्जेंटीना से। इंग्लैंड ने 1966 में एकमात्र बार वर्ल्ड कप का खिताब जीता है और अर्जेंटीना डिफेंडिंग चैंपियन है। 1978, 1986 और 2024, यानी 3 बार उन्होंने वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। स्पेन ने 2010 में एकमात्र बार खिताब जीता है, फ्रांस ने 1998 और 2018 ये 2 टाइटल जीते हैं। कुल मिलाकर के 1930 में जब वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी साथियों, तब से लेकर के अब तक सिर्फ 8 देश हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है। हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था और ब्राजील ने 5 बार खिताब जीता, इस बार खिताब के दौड़ से बाहर, सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके। जर्मनी, उन्होंने भी 4 बार खिताब जीता है, वो भी सेमीफाइनल के दौड़ तक नहीं पहुंच सके। और एक और टीम है इटली, जिसने 4 बार खिताब जीता है, लेकिन वो तो फाइनल के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाए लगातार दूसरी बार। उरुग्वे एक और टीम है जिसने 2 बार खिताब जीता है, वो भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। तो इंग्लैंड ने नॉर्वे को पराजित किया 2-1 से क्वार्टर फाइनल में। अर्जेंटीना बहुत ही शानदार अंदाज में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। इंसिडेंटली फ्रांस और मोरक्को के बीच 2022 में भी जब मुकाबला खेला गया था वर्ल्ड कप का, वहां पर सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच मुकाबला हुआ था और तब भी आइडेंटिकल स्कोर लाइन रही थी। फ्रांस ने मोरक्को को इस बार क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया, पिछली बार सेमीफाइनल में 2-0 से हराया था। फ्रांस स्पेन से खेलेंगे। स्पेन ने बेल्जियम को पराजित किया। एक और बहुत ही शानदार टीम है यूरोप की, बड़े नामचीन खिलाड़ी उसमें शामिल रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक पुराना चैंपियन ही अब वर्ल्ड कप फुटबॉल का खिताब अपने नाम ले जाएगा। अब वो इंग्लैंड होता है, अर्जेंटीना, फ्रांस या स्पेन, ये तो आगे आने वाले कुछ दिन आपको बता ही देंगे, जानकारी मिल ही जाएगी और अगले सप्ताह हम इसका पूरा लेखा जोखा स्पोर्ट्स पल्स में लेकर के आपके लिए आएंगे। विंबलडन की बात करते हैं। विंबलडन में महिला वर्ग का खिताब, एक नई चैंपियन, एक जो सिलसिला चल रहा है बड़े लंबे समय से, अगर मुझे ठीक से याद आता है तो 2016-17 का साल था जब सेरेना विलियम्स ने विंबलडन में टाइटल डिफेंड किया था। उसके बाद से लगातार हर साल नई चैंपियन मिल रही है विंबलडन में महिला वर्ग में। और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा, उन्होंने अपने ही देश की कैरोलिना मोकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हरा करके अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने में कामयाबी हासिल की। यह भी एक संयोग था, एक नया इतिहास था विंबलडन के टेनिस कोर्ट्स पर। चेक गणराज्य की दो खिलाड़ी पहली बार फाइनल में, सिंगल्स फाइनल में आमने सामने थी और वहां पर लिंडा ने बाजी मारी। उन्होंने अपने ही देश की खिलाड़ी कैरोलिना को 3 सेट तक चले मुकाबले में पराजित किया। जीत को शब्द देते हुए ये हैं चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा।
7: It feels incredible. All these matches have been so tough, physically or mentally tough. It's never easy to get the last point. We're friends. I'm so glad that I could play my first Grand Slam final with you. I think we made a history today. I believe that all our Czech fans at home are proud of us, so no matter the result today, I think it was a good day for both of us.
4: जी हाँ, लिंडा ने उसको, उन्होंने कहा कि चेक गणराज्य के जो टेनिस फैंस होंगे वो जरूर बहुत गर्व का, गौरव का अनुभव कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही देश की दो खिलाड़ी सिंगल्स फाइनल में आज के इस कॉम्पिटिटिव माहौल में विंबलडन के फाइनल में पहुंचती हैं, तो इसे बहुत बड़ी बात कहा जा सकता है। पुरुष वर्ग में यानिक सिनर डिफेंडिंग चैंपियन, उन्होंने खिताब जीता। उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को पराजित किया। अलेक्जेंडर ज्वेरेव पहली बार फाइनल खेल रहे थे विंबलडन का और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को बहुत ही प्रभावशाली अंदाज में खेलते हुए पराजित किया। सेमीफाइनल में सिनर ने जोकोविच को पराजित किया था, जबकि ज्वेरेव ने ब्रिटेन के फेरी को पराजित किया था, जिनका एक ड्रीम रन चला था इस टूर्नामेंट में। अलेक्जेंडर ज्वेरेव हार जरूर गए, लेकिन हारने के बाद क्या कहा उन्होंने यानिक सिनर से पराजित होने के बाद, आइए सुनते हैं।
8: I think overall, compared to where I was last year, it's obviously a very different championship for me. And of course, I would have loved to lift the trophy, but he was better than me. And then I was struggling to push off on the serve a little bit. So my serve speed went down, but everything else was fine. I was moving fine from the baseline and playing from the baseline fine. But from on the serve, I was struggling a bit more than you.
4: तो ये तो थे अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और कुछ अन्य खेलों की बात करें, जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है 14 तारीख से, जहां पर भारतीय चुनौती मौजूद रहेगी। कई खिलाड़ी वहां पर खिताब पर दावेदारी पेश करते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा एथलेटिक्स में सर्वेश कुसारे, जो कि भारत की एक पदक की उम्मीद है आगे आने वाले इंटरनेशनल मुकाबलों में, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। डायमंड लीग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता और सर्वेश कुसारे डायमंड लीग में पदक जीतने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। वैसे पहले हाई जंपर हैं जिन्होंने डायमंड लीग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। तीरंदाजी का वर्ल्ड कप साथियों स्टेज 4 आखिरी चरण वो मैड्रिड में चल रहा था और वहां पर भारतीय खिलाड़ियों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। हालांकि कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी रहे, लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि पदक भारतीय खिलाड़ियों ने जीते। और एक और खबर आपको दे दें कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। श्रेयस अय्यर टीम के कप्तान रहेंगे। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा उप कप्तान, ईशान किशन विकेटकीपर, शिवम दुबे, सूर्यांश शेगड़े, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव और प्रभसिमरन सिंह जो कि विकेट कीपर होंगे। 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। चलते चलते आपको बता दें बर्थडे, आज लेमिन यमाल स्पेन के खिलाड़ी अपना बर्थडे मना रहे हैं और

0: 19 जुलाई को हरमीत देसाई और रॉजर बिनी का बर्थडे होगा, 15 जुलाई को सरदारा सिंह हॉकी खिलाड़ी अपना बर्थडे मनाएंगे, 16 जुलाई को धनराज पिल्लई का बर्थडे होगा, 17 जुलाई को एचएस प्रणय और 18 जुलाई को स्मृति मंधाना अपना बर्थडे मनाएंगी। फिलहाल शिवेंद्र को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रेनबो चैनल है। अब प्रस्तुत है मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न कर लिए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति APMC के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान श्री शाह एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के 3रे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों का निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई और दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: कली चाहे कच्ची हो या पकी या फिर फूल हो, तोड़ना गलत बात है।
1: चीची, मम्मी ने कहा फूल तोड़ना गंदी बात होती है, समझ गए आप?
0: तो अच्छी बात है, नहीं तो समझाना में आता है। अभी समझाएंगे आपको, बताएंगे और डिटेल में। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अंबर सर हो या दिल्ली NCR, सब जगह गर्मी जो है वो बराबर चल रही है और उसने अपना कहर बरपाया हुआ है। फिलहाल जो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम टेम्परेचर जो आज का रहने वाला है वो है 28 to 30 degrees Celsius और मैक्सिमम रहने वाला है 37 degrees Celsius to 39 degrees Celsius। मैं क्या जी सोने मकड़ो, की हाल चाल है? ये पूछने से पहले मैं जानती हूँ कि आपके हाल ना बुरे हैं, क्योंकि गर्मी में सबके हाल बुरे हैं, लेकिन यहाँ जो बातें हम करेंगे ना उनसे आपके मिजाज जो है वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। फिलहाल आपके लिए ट्रैक चला रही हूँ, उसके बाद आते हैं फटाफट से, करेंगे ढेर सारी बातें, इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी मेरे पास न्यूज अपडेट्स हैं, तो बने रहिए 102.6 पर। मेरा नाम है शालिनी और शो का नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। प्रिटी वुमन इज नेक्स्ट फॉर यू।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने कोई भी गुनाह नहीं किया, इसीलिए तो हम यहाँ पर फिर से हाजिर हो गए। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और आपके साथ हूँ मैं शालिनी। आपके लिए अच्छी सी न्यूज़ है मेरे पास और वो ये कि ग्रेटर नोएडा के लोगों को ना जल्दी ही नई कनेक्टिविटी मिल सकती है। प्राधिकरण ने हिंडन नदी पर जो बने हुए नए पुल को जोड़ने का काम है वो शुरू कर दिया है और अगले 4 माह में पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है इस काम के। तो आप जो है अब आपको ना जो ट्रैफिक में जो परेशानी हो रही थी और आने जाने में जो परेशानी हो रही थी ना उससे निजात मिल जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अगला ट्रैक आपके लिए और उसके बाद और भी ढेर सारी जानकारियां सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर मेरे यानी शालिनी के साथ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि आप हमें सुन रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी, जैसे कि हमारे OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी देश के कोने कोने में। तो सुनते रहिए रेनबो

कोई और आपसे बात करे ना करे, हम यहाँ पर हाजिर हैं। मेरा नाम है शालिनी और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आपके लिए एक और न्यूज है मेरे पास, एक खास न्यूज है, और वो ये है कि राजधानी दिल्ली में ना जल्द ही पहला सोलर ट्री लगने जा रहा है। सबसे पहले ये सोलर ट्री सचिवालय की बिल्डिंग में लगाने की योजना, और इसके बाद दिल्ली सरकार क्लीन एनर्जी अपनाने की मुहिम के तहत पूरी दिल्ली में इसे लगाने की योजना बना रही है। सोलर ट्री क्या होता है ये जान लेते हैं। ये ट्री एक तरह ऐसा फोटोवोल्टिक यानी कि पीवी पैनल होता है जो सूरज की रोशनी को अधिक से अधिक ऊर्जा में बदलने के लिए पेड़ जैसे स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं, और पीवी पैनल के अलावा पूरे सोलर सेटअप को एक पेड़ जैसे आकृति का रूप देने के लिए मेटल फ्रेम, प्लास्टिक और इसके अलावा अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शामिल इनोवेशन स्तर के हिसाब से डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं। सोलर ट्री के जो पीवी पैनल से सोखी गई सूरज की रोशनी को ये बिजली में बदला जा सकता है, और इसे स्ट्रक्चर के बेस में लगी बैटरी में स्टोर किया जाता है। साथ ही इस पैनल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो घूम सकते हैं और समय के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी सोख सकते हैं। तो दुनिया के कई शहरों में ऐसे सोलर ट्री देखे जा सकते हैं, और जल्दी ही आपकी दिल्ली में भी आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिलहाल आपको सुनने को मिलेगा ये गाना जो मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ।

जीने की बातें करेंगे हम यहाँ पर आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अगली खबर आपके लिए ये है कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जाम की समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए शाहबेरी में 3 लेन का डबल डेकर एलिवेटेड रोड बनाने की योजना चल रही है और इस पर करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है। तो आपकी जो भी समस्याएं थी अब सुन ली गई है, उनका समाधान हो गया है। तो बस इसी बात पर मैं आपके लिए एक गाना प्ले कर देती हूँ, ठीक है?

बिल्कुल हम आपके साथ ही हैं, लेकिन आपको गमगीन नहीं होने देंगे। हम आपके लिए एक से खबरें लेकर आ रहे हैं, तो आप जो है वो बिल्कुल नॉर्मल बने रहेंगे, ठीक है। आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर आपके साथ हूं मैं शालिनी, और चल रहा है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ट्रेन सिखा जाती है सब्र करना, क्योंकि मंजिल मिलने से पहले ना कई स्टेशन आते हैं, लेकिन अब ट्रेन आपको इसके अलावा और भी एक एक्सपीरियंस देगी। अब आपको ट्रेन में सीटी की आवाज के साथ साथ ना शहनाई वाला लुत्फ भी मिल सकता है।

कैसे? अब इंडियन रेलवे कोच बुकिंग के कुछ नए रूल्स हैं जो शायद कुछ पहले से भी थे, जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं थी। तो अगर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। घर में अगर शादी है और बारात लेकर कहीं दूर जाना है तो आप मेहमानों को ले जाने के लिए ना पूरी ट्रेन या एक पूरा का पूरा कोच या बोगी बुक कर सकते हैं। भारतीय रेलवे जो है वो यात्रियों को अपने फुल टैरिफ रेट यानी कि FTR सर्विस के माध्यम से शादी, ट्रैवल और ग्रुप टूर जैसे विशेष अवसरों के लिए ना पूरी ट्रेन या पूरा कोच बुक करने की सुविधा देता है। और ये काम ना IRCTC के जरिए मैनेज किया जाता है। और ये कोई नई सुविधा नहीं है, पहले से है। और इसमें कुछ चेंजेस के साथ ना आपके लिए फिर से न्यूज़ आई है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। रेलवे जो है काफ़ी समय से ये लोगों को सुविधा दे रहा है। और इसमें इंडियन रेलवे के नियमों के मुताबिक सभी रेलवे जोन के स्टेशन से शुरू होने वाली यात्राओं के लिए FTR यानी कि फुल टैरिफ रेट ट्रेनों की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। हालांकि चार्टर्ड कोच सिर्फ उन्हीं स्टेशन पर जुड़े या हटाए जा सकते हैं जहां ट्रेन का जो तय स्टॉपेज 10 मिनट या उससे ज्यादा का हो। और सभी ट्रेनों में कोच नहीं जोड़े जा सकते, यानी कि कुछ ट्रेनें इससे अलग हैं। तो आप मेहमानों की संख्या के आधार पर ना कोच बुक कर सकते हैं। और एक कोच में आमतौर पर जो है वो मैक्स टू मैक्स मिनिमम 50 या 50 से लेकर 80 तक हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके अलावा बुकिंग का जो समय है वो सारी जानकारी जो है FTR रजिस्ट्रेशन यात्रा की तारीख से ज़्यादा 6 महीने पहले कम से कम आप, और 30 दिन पहले जो मैक्सिमम आप कर सकते हैं, या तो 6 महीने पहले करिए या मिनिमम जो है 30 दिन से पहले आप कर सकते हैं। और इसके तहत ना यात्री एक ट्रेन में कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कोच बुक कर सकते हैं। तो आप जो है अपनी पूरी फैमिली, पूरे कुनबे को लेकर ना साथ में यात्रा कर सकते हैं और अपने शादी ब्याह के जो वो माहौल है ना उसको एंजॉय कर सकते हैं। और इनके जो नियम है उसके अनुसार ना पार्टी कम से कम 18 कोच यानी कि 2 SLR सहित बुक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 कोच बुक किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए जा सकते हैं। और अगर आप इसके अलावा और भी कोई जानकारी चाहते हैं ना तो इनकी जो IRCTC की FTR पोर्टल की वेबसाइट है https://www.ftr.irctc.co.in पर जाकर सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं आपके लिए एक गाना चला रही हूँ, उसे एंजॉय कीजिए। इसके बाद और भी ढेर सारी जानकारी है मेरे पास। आकाशवाणी 102.6 सुन रहे हैं आप, मेरी यानी शालिनी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

बहुत से लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि आज सुबह सुबह इतने सैड सॉन्ग्स क्यों प्ले हो रहे हैं और सुबह सुबह ही रोने का सा मूड हो गया है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, लेकिन वो क्या है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आपको एक ऐसी खबर मिलती है कि आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे पर ना मायूसी छा जाती है, और ऐसा हम सबके साथ कभी ना कभी होता है ना। तो बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। तो ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था आपके साथ करने का, पर ऐसा जो है वो वक्त की नज़ाकत को आप समझ लीजिए, तो उस वजह से ऐसा है। फिलहाल मैं आपको एक अच्छी सी न्यूज़ बता देती हूँ, वो ये है कि गुरुग्राम में ना डिजिटल सुविधाओं से लैस कोर्ट टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया गया है, और 7 एकड़ में बने इस नए विशाल जिला कोर्ट परिसर में 26 कोर्ट रूम, 530 वाहनों की पार्किंग, जिम, पुस्तकालय समेत कई सारी सुविधाएं हैं। और ये जो है वो सबसे बड़ा जो है वो उत्तर भारत का जिला न्यायालय परिसर गिना जा रहा है। तो गुरुग्राम वासी जो है इसके लिए जो है वो कॉलर उठाकर कह सकते हैं कि उनके पास ये सुविधा है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और फिलहाल आपको बधाई देते देते आपके लिए मैं ट्रैक चला रही हूँ, इसे एंजॉय करिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6, मेरे अनी शालिनी के साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। मैं क्या जी, हालचाल तो ठीक है ना?

और अभी जैसे ही मैंने बताया कि सैड सॉन्ग क्यों प्ले हो रहे हैं, तो जिन्होंने हमें मैसेज किया वो अचानक से हमसे सॉरी बोलने लगे, तो मैं उनसे कहना चाहूंगी कि सॉरी की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ की परिस्थितियां क्या बदल गई हैं आपको कैसे पता, तो आप तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, अब जो है शो का टाइम है वो समाप्त हो चुका है और अगली आरजे जो है इंतजार कर रही, तो अब मैं आपसे कहना चाहूंगी कि चलते चलते एक सॉन्ग मैं आपके लिए और प्ले कर रही हूँ। फिलहाल आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद मी शालिनी ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6। और अब चलिए ख्याल रखिए, तो गाना सुनी चाहिए।

लीजिए सुनिए सुबह 9 बजे के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। राज्यपाल ने असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंधित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिए हैं। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। वे पहली अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता अपराध प्रतियोगिता और शिखर सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भी हिस्सा लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। यह देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के 3रे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू किए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलदबरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और भी कमजोर करना है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज 1 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिक सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो गई हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई और दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

दिल के तराने गाने नए पुराने, वही प्रोग्राम है जिसमें हम सुनवाते हैं आपको नए जमाने के गाने और साथ ही साथ पहुंचाते हैं आपको हर 15 मिनट के अंतराल पर एक सुनहरे दौर के गाने तक। तो आज भी इस प्रोग्राम को लेकर मैं आ गई हूँ आपके लिए सोनू भट्ट। आप हमें ट्रैफिक की अपडेट दे सकते हैं दिल्ली NCR की 9868107070 पर। हम शेयर करेंगे सभी फेलो पैसेंजर्स के साथ। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

वेल इस ब्यूटीफुल से ट्रैक के बाद टाइम आ गया है एक बार ले चलने का आपको, यानी कि पहली बार ले चलने का आपको सुनहरे दौर में, और सुनवाने का आपको एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि जुड़ा हुआ है प्रकाश मेहरा साहब से। 13 जुलाई 1939 उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्मे प्रकाश मेहरा की आज बर्थ एनिवर्सरी है। एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में इन्होंने हमें दी। अपने करियर की शुरुआत इन्होंने 1950 में की थी बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर, और पहली बार जो इन्होंने फिल्म बनाई थी वो थी हसीना मान जाएगी, और इस फिल्म में शशि कपूर अभिनेता के तौर पर नजर आए। 1971 में मेला जो फिल्म थी उसमें इन्हें निर्देशक का काम मिला, और 1973 में आई जंजीर जिन्होंने प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन दोनों को ही स्थापित कर दिया एक बहुत बड़े मकाम पर। और यहाँ से बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की छवि जो है वो भी बनी और वो भी स्थापित हो गए पूरी तरह से। और उसके बाद दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया जिनमें से मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी और हेरा फेरी शामिल हैं। इन्हें याद करते हैं और इन्हीं की फिल्म मुकद्दर सिकंदर से ये ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए किशोर दा की आवाज में।

श्रेया घोषाल की बहुत ही सुमधुर सी आवाज के बाद अब सुनवाने जा रही हूँ मैं आपको एक गाना जो शीला फिल्म से 1973 में फिल्म आई थी। यश चोपड़ा साहब ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इसको प्रोड्यूस किया था गुलशन राय ने। इसमें

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान का

0: कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

एक बार फिर से ले चलते हैं आपको सुनहरे दौर की ओर, और लेके आते हैं आपके लिए गाना जो कि है जंगली फिल्म से। और ये जो फिल्म थी 1961 की फिल्म है, डायरेक्ट किया सुबोध मुखर्जी साहब ने और प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया। इसमें नजर आए शमी कपूर और सायरा बानू।

इसी के साथ ही मेरा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है, क्योंकि शालू आ गई हैं आपके लिए लेकर मैचलेस म्यूजिक आर। तो देश विदेश की खबरों को जानने के बाद आप उस प्रोग्राम को इनके साथ एंजॉय कीजिएगा, बने रहिएगा। मुझे यानी सोनू को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और खूबसूरत मोड़ पर। सुनते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: कभी तो हंसाए।
1: जी हाँ, जिंदगी एक पहेली फ्रॉम द आइकॉनिक फिल्म, द 1970 फिल्म आनंद, द आइकॉनिक सॉन्ग जिंदगी कैसी है पहेली, पहेली तो है। इनफैक्ट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग द डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी नेवर रियली वांटेड दिस टू बी अ सॉन्ग इन द फिल्म, ही वांटेड इट टू प्ले इन द बैकग्राउंड स्पेशली व्हेन द फिल्म वाज ओपनिंग ड्यूरिंग द ओपनिंग क्रेडिट्स। इट्स ओनली ऑन द इंसिस्टेंस ऑफ लीड एक्टर राजेश खन्ना दैट दिस वाज ब्रॉट आउट फ्रॉम द बैकग्राउंड एंड मेड अ प्रॉपर सॉन्ग। So as the song is playing, we can relive it in our memories into that iconic beach shoot where Rajesh Khanna is walking down Juhu Beach and then he frolics on the sand there, buys some balloons and is singing there. It's the song and the meaning and the picturization, which is so beautiful, so reminiscent of times when life is unpredictable. It's unpredictable even now. That's what life is. And as the days will go on, as the moments will roll on, new poets, new people, new ideas will all have their little philosophy about defining life. And at the end of it all, it's going to remain just that. Undefinable. And that's best, isn't it? Some things can never really be captured in words. Just like our love for you and your love for us, which we share on the airwaves of 102.6 Akashvani Rainbow every day, every moment. Your messages, of course, are coming in. So what I'll do is, right here, I'll take a little message break.
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

शब्द आनंद बख्शी के, संगीत से सजाया राहुल देव बर्मन जी ने, फिल्म अमर प्रेम. वी लिसन टू इट एंड वी फेल इन लव विद इट ऑल ओवर अगेन. जी हाँ, लोग हैं कुछ तो कहेंगे. इट्स व्हाट पीपल डू, दे टॉक. एंड इट्स अप फॉर अस, अप टू अस टू डिसाइड व्हाट वी आर गोइंग टू लिसन टू, व्हाट वी आर गोइंग टू इग्नोर. लोग हैं कुछ तो कहेंगे. और आप क्या कह रहे हैं प्यारे दोस्तों? योर मैसेजेस आर टेलिंग अस. लेट्स क्विकली सी what you're telling us. All right. Adi Adi, your friend Colonel Gupta is writing in from Chandigarh and he says, good morning, Shalu. Good morning, dear Colonel. He says, well, he's tuned into the show. Thank you so much. And he's about to leave for work in 5 minutes. But in that time, he took out the time to tune in. Thank you. Thank you, dear Colonel. Thank you so much. Rajkumar writes in from Trichy. He says, classy Hindi pics and thank you for your kind words, Rajkumar. Really mean the world to me. Then this is Dolly. Good morning, Dolly. We have been connecting quite

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। राज्यपाल ने असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण से संबंधित विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये देश का दूसरा सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 63 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से

देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केरलम की 21 वर्षीय मेडिकल छात्रा की उज्बेकिस्तान में यातना और हत्या से जुड़ी खबर का स्वतः संज्ञान लिया है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय छात्रों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नए सैन्य हमले शुरू किए। अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। और खेल जगत से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में इटली के यानिस सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता और फीफा फुटबॉल विश्व कप में सेमीफाइनल के लिए टीमें तय हो चुकी हैं। पहला सेमीफाइनल 15 जुलाई को और दूसरा सेमीफाइनल 16 जुलाई को होगा। वहीं फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को खेला जाएगा। ये थे अभी तक के आकाशवाणी FM रेनबो मुख्य समाचार।

साथ ही आपको मौका मिलेगा आज का बॉलीवुड सरताज बनने का भी, क्योंकि प्रोग्राम में जो अपडेट्स हम लोग शेयर करने वाले हैं उसे आप भेज सकते हैं। उस पर पूछूंगी मैं एक सवाल जिसका सही जवाब आप भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। तो प्रोग्राम से जुड़े रहिए, प्रोग्राम में शेयर की गई बातों से जुड़े रहिए, क्योंकि उन्हीं में छुपा होगा आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी।

बॉलीवुड रील्स में पहली अपडेट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आमिर खान और आशुतोष गोवरीकर की फिल्म के बारे में है, उनकी अपकमिंग फिल्म के बारे में है। उसका नाम जो है डिसाइड हो चुका है, इस फिल्म का नाम होगा ललकार। और कहा जा रहा है कि लगान आई थी ना 25 साल पहले, जिसमें दोनों एक साथ पर्दे पे थे, दोनों के साथ का प्रोजेक्ट था, और उस

बाद ये जो जोड़ी है आमिर खान की और आशुतोष गोवरीकर की, ये एक साथ फिर से बड़े पर्दे पर आने वाले हैं और ये अपडेट्स भी आ रही हैं कि ये फिल्म जो होगी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पीरियड ड्रामा होगा और फिल्म की कहानी जो है वो भारतीय क्रिकेट इतिहास के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज के बारे में है, मतलब न सिर्फ खेल के बारे में है बल्कि इतिहास में जो लोग रुचि रखते हैं उनके लिए भी खासा अच्छा खासा प्लॉट है इस फिल्म में। और रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उसके मुताबिक ये फिल्म जो होगी उसका सबसे अहम किरदार जो है वो लाला अमरनाथ का है। लाला जी के बारे में तो पता ही है कि भारत के पहले सेंचुरी बनाने, टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाले एक क्रिकेटर थे और इंडिपेंडेंट भारत के शुरुआती दौर में वो राष्ट्रीय टीम की कप्तानी भी कर चुके थे और ऑलराउंडर थे, राइट हैंड बल्लेबाज थे और राइट आर्म मीडियम पेस के गेंदबाज भी थे। और सो इस फिल्म का प्लॉट जो समझ में आ रहा है वो ये है कि क्रिकेट के रिकॉर्ड्स तो होंगे ही, साथ ही साथ पार्टीशन के वक्त जो क्रिकेटर्स थे, खिलाड़ी थे, वो किस तरह से दो देशों के बीच में बटे और फिर किस तरह से क्रिकेट के संबंधों की शुरुआत हुई। 1952 की टेस्ट सीरीज के बारे में इस फिल्म में काफ़ी अच्छे से बताया जाएगा, इस बात की भी खबर है। फिलहाल इन दोनों की जोड़ी यानी कि आमिर और आशुतोष गोवरीकर की जोड़ी लगान में आई थी 25 साल पहले, ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई थी ये फिल्म और खासे रिकॉर्ड्स इस फिल्म ने बनाए थे। अब देखते हैं कि ये जो आने वाला प्रोजेक्ट है ललकार, जिस फिल्म का नाम है, उसमें क्या होगा। हाँ, एक और खबर आ रही है कि इस फिल्म में फरहान अख्तर जो हैं वो भी जुड़ रहे हैं। फिलहाल रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर मच अवेटेड और जैसे ही आएंगी बॉलीवुड रील्स में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड ट्रेल्स और आकाशवाणी रेनबो जिसे आप सुन सकते हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आकाशवाणी रेनबो से जुड़ सकते हैं या फिर आप वेव्स

OTT प्लेटफॉर्म पर भी इस फ्रीक्वेंसी से जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। और बॉलीवुड ट्रेल्स में अगली अपडेट आ रही है ऋतिक रोशन के बारे में। बहुत ही जल्द सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिश 4 के साथ ऋतिक रोशन जो हैं बड़े पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। और बहुत ही ख़ास अपडेट ये है कि ये फिल्म उनके लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस फिल्म के साथ ही वो डायरेक्टरल डेब्यू भी कर रहे हैं। क्रिश फ्रेंचाइजी की जितनी भी मूवीज़ अभी तक की रही हैं, तीनों का डायरेक्शन जो है वो राकेश रोशन ने यानी कि ऋतिक के फादर ने किया था, लेकिन अब चौथी मूवी के डायरेक्शन की जिम्मेदारी ऋतिक रोशन ने खुद उठाई है। और नर्वस भी हैं इनफैक्ट, लेकिन ये बात पक्की है कि ज़ोर शोर से इस फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ 2027 में इस फिल्म को रिलीज़ करने की भी पूरी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। ऋतिक वैसे रजनीकांत की मोस्ट अवेटेड फिल्म जेलर 2 का भी हिस्सा है। फिलहाल इस अपडेट के साथ ये ट्रैक ऋतिक की ही फिल्म से आपके लिए। काइट्स फिल्म से केके की आवाज़ में ये ट्रैक है।

आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप बॉलीवुड रील्स 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, या फिर देश या विदेश दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं आप आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल बॉलीवुड की इंडस्ट्री से अगली अपडेट हम तक आई है रणबीर कपूर की फिल्म रामायण के पहले पार्ट के बारे में, जिसकी चर्चा खूब जोर शोर से है। ट्रेलर के लेकर ताज़ा अपडेट भी आई है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो 24 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। वैसे रणबीर कपूर की अगर हम बात करें तो बहुत सी फिल्म्स हैं जिसमें उनकी आने वाली फिल्म्स हैं। इन पर कहा जा रहा है कि 8 फिल्म्स में वो आने वाले समय में नज़र आएंगे, रोमांस और एक्शन करते हुए नज़र आएंगे। उनमें से एक ही फिल्म इस साल रिलीज हो रही है, बाकी जो हैं वो 2027 यानी कि 2027 से लेकर 2029 तक सिनेमा हॉल्स में रिलीज होंगी। पहली तो सबको पता ही है, खूब चर्चा चल रही है रामायण के बारे में। नितेश तिवारी की डायरेक्शन में ये फिल्म 2 पार्ट्स में आएगी और पहला पार्ट इसी साल दिवाली के मौके पर होगा। ट्रेलर इसका 24 जुलाई को रिलीज़ हो रहा है और दूसरा पार्ट जो है अगले साल यानी कि 2027 में दिवाली के मौके पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा लव इन वॉर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बन रही इस मूवी के बारे में भी काफ़ी चर्चा है। रणबीर कपूर इस फिल्म में हैं, साथ ही साथ आलिया भट्ट और विक्की कौशल भी हैं। रोमांटिक ड्रामा फिल्म 21 जनवरी 2027 में रिलीज़ होगी और ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म का जो सीक्वल है वो भी आ सकता है और 2029 में इस सीक्वल को यानी कि लव इन वॉर 2 को रिलीज़ करने की खबरें भी आ रही हैं। एक और फिल्म है जिसकी चर्चा चल रही है, धूम 4। यशराज फिल्म्स की एक्शन थ्रिलर मूवी धूम 4 में भी रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं। फिलहाल मेकर्स मूवी की प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये फिल्म जो है 2027 में रिलीज हो सकती है। इसके अलावा एनिमल पार्क डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी की इस एनिमल का सीक्वल जो है एनिमल पार्क, इसको लेकर आ रहे हैं और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ एक और फिल्म का सीक्वल आ रहा है जिसमें रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है, डायरेक्टर अयान मुखर्जी की ब्रह्मास्त्र के सीक्वल के बारे में, और कहा जा रहा है कि इस फिल्म का दूसरा और तीसरा पार्ट बनने वाला है। और अगर अपडेट्स को सही माने तो दूसरा पार्ट 2028 में और तीसरा पार्ट जो है वो 2029 में रिलीज हो सकता है।

और बॉलीवुड रील्स में अब वो पल आ चुका है जब हम आपको आज का बॉलीवुड सरताज बनने का मौका देने वाले हैं। जी हाँ, आपसे पूछने वाले हैं एक सवाल और सवाल का सही जवाब अगर आप हम तक पहुंचाते हैं तो बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और सवाल पूछने से पहले नए जुड़ने वालों को बता देती हूँ हमारा वो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप हमें जवाब भेजेंगे। हमारा नंबर है 9868107070। और पेश है सवाल। आशुतोष गोवरीकर और आमिर खान एक फिल्म के साथ दोबारा आ रहे हैं। इस फिल्म का नाम है ललकार और 25 साल पहले भी इस जोड़ी ने धूम मचाई थी। स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, क्रिकेट पे बेस्ड फिल्म थी। आपको मुझे उस फिल्म का नाम बताना है। आमिर खान और आशुतोष गोवरीकर की जोड़ी जो है 25 साल पहले क्रिकेट थीम पर एक स्पोर्ट्स ड्रामा थीम पर एक फिल्म को लेकर आई थी। इस फिल्म ने ऑस्कर में नॉमिनेशन भी लिया था। आपको मुझे उस फिल्म का नाम बताना है और भेज दीजिए सही जवाब 9868107070 पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप 102.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर या फिर न्यूज ऑन एयर ऐप या वेब्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से। और फिलहाल इस चैनल जिस पर हर घंटे कुछ नया लेकर हम आपके लिए आते हैं, कुछ ही मिनटों में यानी कि 12:02 पर प्लेट कूल में शालिका कपूर आपके साथ रहेंगी। 1:02 पर रेनबो हेल्पलाइन में मैं आकृति ही आपसे एक बार फिर से जुड़ूंगी। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम। जी हाँ, जिंदगी का हर पड़ाव अपने साथ एक नई खूबसूरती को लेकर आता है। बचपन सीखने का, यूथ में जब हम आते हैं तो बहुत से सपने देखने का पड़ाव वो होता है, और एज के साथ साथ जब आप थोड़ी से उम्र दराज होते हैं तो समय होता है अपनी एक्सपीरियंसेस को बांटने का, या फिर मैं कह लूँ खुद को खोजने का। तो इसी विषय पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। प्रोफेसर अर्चना दसी जो कि सोशल वर्कर हैं और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं, हमारे साथ आएंगी और इस विषय पर आपके अपने कुछ सवाल होंगे या फिर यूं ही इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िएगा आकाशवाणी रेनबो से 1:02 पर। आशियाना प्रोग्राम में शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगी 2:02 पर। और आज 3 बजे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में बात होगी इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मानसून सीजन। जी हाँ, मानसून आता है और साथ ही बढ़ जाती है नमी जिससे कि इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। डॉक्टर विष्णु कुमार गुप्ता जो कि CMO हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल में, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रहेंगे।

और बॉलीवुड रील्स में अब वक्त आ चुका है जब हम आज का बॉलीवुड सरताज कौन बने हैं उसका नाम अनाउंस करने वाले हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था कि आमिर खान और आशुतोष गोविरकर कौन सी फिल्म के साथ 25 साल पहले आए थे जो फिल्म हिट हुई थी और ये एक स्पोर्ट्स ड्रामा थी। आप में से बहुत से लोगों के सही जवाब आए हैं, लेकिन फिलहाल आज के प्रोग्राम में बसंत तोमर साहब सही जवाब के साथ बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। उन्होंने इस फिल्म का नाम बताया है लगान। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और बसंत साहब के अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया है। सभी का नाम लेना चाहूंगी। सलीम मलिक साहब मेरठ से, तरुण कोहली साहब सूरजकुंड से, हरीश गौर साहब मेरठ से, इसके अलावा अनिल कुमार साहब का सही जवाब आया है, प्रवीण चौहान साहब, कंचन सोनिया बिहार से, पंकज अमरावती से, नितिका पारेकर पुणे से, सुरेश बदान लुधियाना से ये सही जवाब आया, संजय खत्री का कोल्हापुर महाराष्ट्र से, पाराशर अग्रवाल साहब आपका भी सही जवाब आया, धर्म भाटिया जी सुकलाल बाला वेस्ट बंगाल से सही जवाब के साथ हमसे जुड़ी हैं। इसके अलावा राजकुमार के संतानी साहब नवी मुंबई से ये हैं सेलिना। इसके अलावा सही जवाब देने वाले हैं वेस्ट बंगाल से सादिर साहब, नौशाद चौधरी मंडोली दिल्ली से, लगान बता रही हैं साक्षी गोपाल दिल्ली से, जीत हिमाचल प्रदेश से हमसे जुड़े हैं। इसके अलावा ये सही जवाब हम तक पहुंचा है सुनील कुमार ठाकुर साहब का और उमेश कुमार साहब का ख्याला से भी, लेकिन आज के सही जवाब के साथ बसंत तोमर साहब बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और इसी के साथ मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा नमस्कार। मुलाकात होगी 1 बजे रेनबो हेल्पलाइन में, जिसमें आज हम बात करेंगे एक्टिव एजिंग की।

0: time to have a look at what the time is saying. The clock rod is telling us. Yes, of course, we are playing it cool on the airwaves of 102.6 Akashvani Rainbow. But even as we're doing that, the clock is ticking away to glory. And it has told me that it is 19 minutes past 12 and 40 seconds right on the dot. So what happens now? Here, we'll take a little break from playing it cool and we shall delve into the messages.
1: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
2: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
1: क्या ये जांच उपलब्ध है?
3: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
4: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
3: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
4: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
5: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

पेश है इस घंटे के आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है, जिसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारा मंगा में 56वीं अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरे वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये थे अभी तक के आकाशवाणी एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रेनबो पर रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरिया और कहना आपसे यही चाहती हूं कि अगर आप ये सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है धीमी रफ्तार, तो अपनी सोच को यहीं पर रोक लीजिए, क्योंकि नए जमाने का मोटो है लाइफ 60 के बाद भी सुपरहिट है। जी हाँ, आज के सीनियर सिटीजन के पास एक्सपीरियंस तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आसपास नजर उठा के देखें तो आज के सीनियर सिटीजन एक्टिव हैं, बहुत से हैं जो लोग फिटनेस आइकन हैं, ट्रैवलर हैं, सोशल मीडिया के स्टार्स हैं, मोटिवेट करते हैं दूसरों को और लाइफ की इस सेकंड इनिंग्स में एनर्जी से भरे हुए हैं। एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक है। और हमारे आज के प्रोग्राम में हमारी एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं। प्रोफेसर अर्चना, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में आपका।
1: नमस्कार। नमस्कार सारे सुनने वाले श्रोता, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और आपसे बात करके।
0: आपसे बहुत सारे सवाल आज करने हैं, एक्टिव एजिंग होती क्या है, हाउ टू मेंटेन दिस एक्टिव एजिंग, और साथ ही साथ बहुत से सवाल, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो सुनने वाले हैं उनके जहन में भी खासे सवाल होंगे कि ये जो एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम है, ये क्या चीज है, या फिर बढ़ती उम्र के साथ साथ इस एनर्जी को और स्पिरिट को कैसे हम बरकरार रख सकते हैं। आपके सभी सवालों का हम स्वागत करेंगे इस घंटे। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर अपनी कोई भी क्वेरी पहुंचा सकते हैं, या फिर आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800111026, या फिर आप हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन 01123421080 या फिर 2342108 पर फोन करके अपने सवालों को हम तक पहुंचा भी सकते हैं। और फिलहाल प्रोफेसर अर्चना, आप लंबे समय से जो है सोशल वर्क से जुड़ी रही हैं, और एक्टिव एजिंग की अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट क्या है एजिंग का, पहले तो आपसे यही जान लेते हैं।
1: अगर एजिंग को देखा जाए तो एजिंग तो वैसे एक प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्डर है, तो मतलब बच्चा टीनेज बन जाता है, फिर उसके बाद वो अडल्ट बन जाता है, उसके बाद वो वृद्ध बन जाता है, तो बेसिकली तो वो ग्रो ही कर रहा है। एक अपनी उम्र का असर जो है वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर दिखता है। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली यहाँ पे एजिंग की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जिसमें धीरे धीरे हमें फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली और सोशली एक डिक्लाइन दिखने लगता है, एक जो है वो ढलाव आने लगता है। तो वहाँ पे हम ये कहते हैं कि शायद एक उम्र के साथ साथ वो व्यक्ति जिसको हम वृद्ध कहते हैं, वो शायद अपने वातावरण में जो बदलते हालात हैं उनके साथ कोप अप नहीं कर पाता है। तो हम कहते हैं कि भाई अब ये लोग एजड हो गए हैं
0: जी।
1: ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एजिंग की।
0: एजिंग की है, लेकिन साथ ही साथ आप और हम तो खूब समझते हैं इस बात को कि एजिंग जो है इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एजिंग लाइक इन नंबर्स, लेकिन स्पिरिट की, और इस एक्टिव एजिंग को बरकरार कैसे रखा जाए। मेरा अगला सवाल प्रोफेसर अर्चना से यही होने वाला है कि आज जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं न्यू मिलेनियम में, और इनफैक्ट प्रोग्राम में आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले प्रोफेसर अर्चना से यही बात हो रही थी कि आज के समय का भारत युवा भारत है, लेकिन बहुत जल्द वो समय भी आने वाला है जबकि एजिंग पॉपुलेशन हमारी, यही जो युवा हैं आज से कुछ दशकों के बाद जो हैं उस कगार पे होंगे, तो उस समय की तैयारी भी करनी है, स्पिरिट्स को भी बहुत एक्टिवेटेड और मोटिवेटेड रखना है। तो आप तो मुझे ये बताइए कि ये जो हम लोग एक्टिव एजिंग है, हाउ कैन इट बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिव एजिंग टू द फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, समाज के लिए, दूसरों के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए। जैसे आपने किस्सा बड़ा अच्छा सा बता रही थी, कोई हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, उसके बारे में प्लीज चर्चा कीजिए। तो हमारे श्रोता

0: मेमोरीज रही हैं, और जो इंटरेस्टिंग बात है वो सारी उनकी कुछ फॉन्ड मेमोरीज हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक मेमोरीज हैं उनके बचपन की, और उन मेमोरीज के साथ उनके अपने बच्चे, उनके अपने बेटे नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन उसके साथ बहुत खूबसूरती से उनका पोता कनेक्ट करता है। सो दिस इज द इंटरजेनरेशनल बॉन्ड जिसकी
1: जी
0: हम बात करते हैं। और मुझे लगता है कि हर ग्रैंड पेरेंट अपने बच्चे को जो है वो शायद उनके साथ उतना एंजॉय नहीं करता जितना अपना पोते पोतियों के साथ एंजॉय करता है।
1: जी
0: तो वो एक कनेक्ट जो है, और वही कनेक्ट आज के मिलेनियम में बहुत जरूरी है, बिकॉज ये मिलेनियम जो है इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें अर्बनाइजेशन है, इसमें टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे साइंटिफिक इनोवेशंस हो रहे हैं। अब इस बदलती हुई दुनिया में जो ये यंग जनरेशन है, अभी अभी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे गया और उसमें यही स्लोगन था कि आप जो है वो यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो यूथ जो अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए सक्षम बने आज भी और फ्यूचर की भी। तो
1: जी
0: जैसा कि आकृति जी आपने कहा कि फ्यूचर की तैयारी भी करनी है, तो वो आज ही के यूथ को यहीं से शुरू करनी है।
1: एब्सोल्युटली. और कहा जाता है ना कि 60 साल का बूढ़ा या 60 साल का जवान, यही अंतर है आपकी स्पिरिट में. द वे यू लुक, योर अप्रोच, योर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही आज की रेनबो हेल्पलाइन का विषय है. और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं. आपके सवाल हम तक पहुँचने शुरू हो गए हैं इस ट्रैक के बाद. उन सभी सवालों को मैं लूंगी. नए जुड़ने वालों को बता दूँ, हमारा आज का व्हाट्सएप नंबर जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं वो है 9868107070.

0: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूं मैं आकृति खंडूरी और पूछना आपसे यही चाहती हूं कि क्या आप भी यही मानते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। आज 60 साल की उम्र में आपने देखा होगा लोग मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 70 की एज में स्टार्टअप्स शुरू कर रहे हैं और 75 की एज में सोशल मीडिया के स्टार बन चुके हैं। इनफैक्ट बहुत से लोग हैं जो अपनी असल जिंदगी जो है रिटायरमेंट के बाद शुरू कर रहे हैं, पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। दे आर फिजिकली एक्टिव, यानी कि बढ़ती उम्र नहीं बल्कि बढ़ता इंथुजियाज्म जो है वो मायने रखता है। रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है एक्टिव एजिंग की, जहां हर दिन है एक नई शुरुआत और उम्र का हर पड़ाव है जिंदगी का एक नया सेलिब्रेशन। जी हाँ, एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक है। हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्चना डासी हमारे साथ हैं। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हैं और आप लोगों के सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर पहुंचने भी शुरू हो चुके हैं। पहला सवाल हम तक आया है मीरा जी का, जो कि दिल्ली से हमसे जुड़ी हैं, और मीरा जी का कहना है कि हाल फिलहाल में मैंने बच्चों के कहने पर ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस जो हैं वो शुरू कर किए हैं। कुछ ख़रीदना होता है तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन हर दिन अखबार में ये जो डिजिटल फ्रॉड की खबरें आती हैं उसको देखकर बड़ी घबराहट भी होती है। तो प्रोफेसर रचना कुछ कहेंगी इनके लिए?
1: मीरा जी, पहले तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जो है वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस शुरू किया, लेकिन हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने पासवर्ड, अपना ओटीपी, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो किसी से शेयर ना करें, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ चीज़ खरीदारी कर रही हैं किसी भी पोर्टल से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो अगर हो सके तो एक अपना बैंक अकाउंट जो है वो अलग खुलवाइए, जिसके अंदर एक छोटा अमाउंट रखें, 5-7 हज़ार रुपये टाइप्स रखें, और उसी बैंक अकाउंट को यूज़ करें अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से कुछ खरीदना हो। कोशिश करें कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जब कर रही हैं तो उसमें किसी भी तरीके का जो ल्योर होता है कि ये आपको फ्री मिलने वाला है, ये कर लीजिए तो इसके साथ हम आपको ये वाला बोनस दे देंगे, ये आपको कुछ फ्री कूपन मिलेगा, उस तरह के किसी भी चीज़ में फंसे नहीं, बिकॉज वो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका जो ट्रांजैक्शन है वो फिर फ्रूटफुल नहीं रहेगा। हो सकता है चांसेस हो कि उसमें स्कैम

0: मर्ज भी हों, क्योंकि हम जो छोड़ तो सकते नहीं है किसी भी चीज को। अगर मिलेनियम की बात करें तो एक तरह जहां डिजिटल रेवोल्यूशन है वहां पे स्कैमर्स भी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है।
1: जी, विजिलेंट और अलर्ट रहिए। अगला सवाल आया है अशोक साहब का गाजियाबाद से, और ये कहते हैं कि मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हैं और दूसरे शहरों में बसे हुए हैं, और बड़ा खालीपन सा, बड़ा अकेलापन सा लगता है। चाहते नहीं हूँ, रोज बाहर भी निकलता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मन किसी बात में नहीं लग रहा है। तो क्या कहेंगी प्रोफेसर रचना?
0: मैं बस एक सुझाव देना चाहूंगी आपको सर। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो अलग-अलग पॉपुलेशन ग्रुप्स के लिए काम करती हैं। वो बच्चों के लिए काम कर रही हैं, वो महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, वो हो सकता है जो हमारे झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों में लोग रहते हैं वो उनके लिए काम कर रही हैं, और उन्हें आप जैसे पढ़े लिखे लोग एज वॉलंटियर ज़रूरत होते हैं। तो अगर आप अपने आसपास की किसी भी स्वयंसेवी संस्था से जुड़ना चाहें तो दे विल डेफिनेटली वेलकम यू, और फिर आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद ऐसा टाइम है जहाँ पे आपके टाइम की भी वैल्यू हो रही है, आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू हो रही है, और आप कुछ दे पा रहे हैं समाज को वापस। बहुत अच्छा लगेगा आपको अपने आप को बिजी रखना इस तरीके से।
1: जी, आई थिंक इनके सवाल के माध्यम से एक बहुत बड़े मुद्दे की बात हम लोग कर सकते हैं इस वक्त। जो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है, उनके जो नोटेबल ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं प्रोफेसर अर्चना? बिकॉज हमने देखा है समाज में एक इस तरह की सोच सी बन गई है कि आप अब रिटायर हो गए हैं, आपने जिंदगी भर में जितना काम करना था कर लिया है, अब आराम करने के दिन है, और यही आराम करते करते किस तरह से आप आइसोलेट होने लगते हैं, आपका मन उदास होने लगता है, पता ही नहीं चलता। तो प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस नोटेबल ट्रेंड अमंग सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन।
0: तो जो सोच है समाज की अभी भी वो यही है कि अच्छा अब रिटायर हो गए तो यानी कि वृद्ध हो गए, अब वृद्ध हो गए तो यानी कि अब बीमार हो गए, अब बीमार हो गए तो अब इसका मतलब अब आप डिपेंडेंट हो गए। तो ये वाली सोच जो है ये तो कहीं पे समाज में दिखती है हमको, लेकिन अगर देखा जाए तो इस समय 10% पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन की, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 10% पॉपुलेशन जो है वो 60+ वाले लोगों की है, यानी कि वो सीनियर सिटीजन्स की है, और यही संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अगर आप देखेंगे तो अर्बन एरिया के अंदर जो है वो कम वृद्ध रहते हैं, रूरल एरिया में करीबन 70% लोग रह रहे हैं, और अगर इंडिया के रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें तो साउथ के जो स्टेट्स हैं और वेस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ ओल्डर पीपल है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो दिख रहा है और बहुत तेजी से दिख रहा है वो है फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, यानी कि वृद्धावस्था का नारीकरण। तो आप ये देखिए कि रफली जो इस समय एल्डरली पॉपुलेशन है, जो वृद्ध लोगों की संख्या है, उसमें करीबन 60% जो है वो एल्डरली पॉपुलेशन महिलाओं की है। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा लंबा देर तक जीवित रहती हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। तो अब आप ये देखेंगे कि उसकी वजह से जो है वो आपको सिंगल विडो वुमेन बहुत ज्यादा नंबर में दिखेंगी, या उन औरतें जो हैं उनका क्रॉनिक डिजीजेस या इस तरह की प्रॉब्लम्स उनकी होने लगेंगी, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी होने लगेगी। तो ये एक नोटेबल ट्रेंड दिख रहा है, और इस मिलेनियम के अंदर इसी ट्रेंड को रिवर्स करने की जरूरत है, ताकि जब मैं एक्टिव एजिंग की बात करती हूं तो दो मुद्दों को, दो चीजों को बार बार मैं कहूंगी, एक ऑटोनॉमी और एक इंडिपेंडेंस। ये दो की गोल्स हैं एक्टिव एजिंग के। ऑटोनॉमी का मतलब सीधा सीधा है कि आप अपने जीवन से जुड़े हुए फैसले खुद कितने सक्षम तौर से ले सकते हैं, और दूसरा इंडिपेंडेंस कि आप इंडिपेंडेंटली अपने कितनी चीजें खुद कर पाते हैं। तो ये दो हमारे की गोल्स हैं एक्टिव एजिंग के, और इनकी सख्त जरूरत है इस नए मिलेनियम में।
1: जी बहुत ठीक कहा प्रोफेसर अर्चना आपने कि ऑटोनमी और इंडिपेंडेंस, और ये दोनों ही हमारे ही हाथ में है। मतलब ये तो सोच की तो बात है, अगर आप सोचें कि आप डिपेंडेंट हैं, अब आप वृद्ध हो रहे हैं तो आप हमेशा के लिए किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, और अगर आप सोचें कि नहीं खुद ही करना है, आप मतलब यकीन मानिए ये इतनी अमेजिंग ताकत हम इंसानों के अंदर है, अगर जितना उसको जागृत करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा बाहर निकल कर आएगी। और ये एक तरह का एक वे ऑफ लाइफ होना चाहिए कि जब तक जिएंगे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां खुद करें, आपका ब्रेन भी एक्टिव होगा। इनफैक्ट अगला सवाल रेणु जी का हम तक दिल्ली से आया है, और ये कहती हैं कि भूलने की सी आदत हो गई है, छोटी छोटी बातों को ही मैं भूल जाती हूँ, कुछ दिनों पहले का बरसों पुरानी बात याद रहती है लेकिन हाल फिलहाल की बातें याद नहीं रहती। तो किसी ने कहा है कि कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, अब इस उम्र में क्या नया सीखूं, तो रेणु जी को अगर आप कुछ हेल्प देना चाहें क्या नया कर सकती हैं।
0: आप कुछ भी नया कर सकते हैं, आप जरा मन में ये सोचिए, क्या कोई ऐसी चीजें थी रेणु जी जो आप अपनी जवानी में बचपन में करना चाहती थी और उस समय कर नहीं पाई, जैसे गाना सीखना, जैसे कोई नई लैंग्वेज सीखना। तो कुछ ऐसी चीजें जो आप सीख सकती हैं जिसमें ब्रेन को एफर्ट करना पड़े, बहुत छोटी छोटी चीजें, अगर आप कुछ भी ना कर सकें, जैसे आप न्यूज़पेपर में देखती हैं या आपके फोन्स में, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें जो है वो सुडोको आता है, तो सुडोको एक पजल है, गेम है, अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकती हैं। यानी कि कोई भी ऐसी चीज आपको करनी है जिससे ब्रेन की एक्सरसाइज हो और उससे आपकी मेमोरी जो है वो शार्प होगी, डेफिनेटली शार्प होगी।
1: एब्सोल्युटली कुछ नया सीखिए, नई भाषा सीख लीजिए, आजकल बड़े आप आते हैं और बहुत इजी होता है, इट्स फन एज वेल एज इट्स अ लर्निंग ब्रेन एक्सरसाइज। संगीत सीखिए, जैसा कि आपने कहा कि जब आप यंग होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चे होते हैं, बहुत कुछ होता है, आपको समय ही नहीं मिल पाता अपने लिए, लेकिन अब तो बहुत समय है। फिलहाल एक मैसेज हम तक पैंथर तोमर साहब का आया है, जो कहते हैं कि न्यू मिलेनियम में बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता को बोझ मानने लगे हैं, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में बूढ़े पेरेंट्स के लिए एक्टिव एजिंग के क्या मायने रह गए हैं। प्लीज बताएं कि जो सेंसिटिविटी बच्चों में या यूथ में कम होती जा रही है, उनको कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं।
0: बहुत बड़ा चैलेंज है, इसीलिए हमने कहा कि जब हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे ये कहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट इज द स्लोगन, तो कहीं पे शायद बचपन से ये जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है कि वो अपने बच्चों को बुजुर्गों से कनेक्ट करके रखें। तो किस तरह से हम उनको जोड़ सकते हैं वो बहुत ही बड़ा काम है हमारे लिए। हम ये भी मान के चलते हैं कि ठीक है, उनके पास समय का अभाव है, क्योंकि इस समय जिस रफ्तार से जिंदगी चल रही है उसमें समय का अभाव होता है, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके यंगर जनरेशन के साथ खुद इनिशिएटिव लेके जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है हम अगर एक कदम आगे बढ़ाएंगे सीनियर सिटीजन होके, तो वो भी फिर एक कदम बढ़ाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो कहीं पे एक तो हम अपनी जो वो अहम है, ईगो है कि मैं बड़ा हूं और ये छोटे हैं तो इनको मेरे पास पहले आना चाहिए, तो लेट अस टेक द इनिशिएटिव एंड लेट अस स्टार्ट दैट फर्स्ट स्टेप। और वही एक छोटा सा स्टेप जो हम अपनी यंगर जनरेशन की तरफ बढ़ाएंगे उनको समझने में, उनके साथ इन्वॉल्व होने में, तो वही एक बहुत बड़ी जर्नी बन जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर अर्चना, आप कह रही हैं कि जितना आप यूथ के साथ रहेंगे उतना ही एनर्जेटिक जो है यूथ भी फील, हम भी अपने अंदर वो यूथ को फील करेंगे। एंड एट द सेम टाइम बच्चों के लिए भी ये है, नहीं भूलना है कि समय का चक्र तो चलता ही जा रहा है, देयर वुड बी अ पॉइंट जब हम भी उसी स्थिति में होंगे। तो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और होगा जरूर। आप जैसे लोग जो कि वर्क करना चाहते हैं एक्टिव एजिंग के बारे में, लोगों को अवेयर करते हैं, बार बार इस बात को, इस संदेश को पहुंचा रहे हैं लोगों को कि हार मत मानिए, एक सीखने की, एक सीकिंग, एक लर्निंग की स्पिरिट आपके अंदर रहे, तो एक्टिवली आप एज भी करेंगे एंड यू विल डेफिनेटली कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्लेस दैट यू आर. फिलहाल ये ट्रैक रॉक स्टार फिल्म से प्रोफेसर रचना की रिक्वेस्ट पर मैं प्ले कर रही हूँ, सुनिए.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, आपके साथ हूं मैं आकृति, और आपसे यही कहना चाह रही हूं कि क्या आपने कभी सोचा था कि जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह तब होगी जब आपको समाज एक तरह से रिटायर्ड एज की कैटेगरी में डालता है। हम लोग सोचते हैं रिटायरमेंट का मतलब है सब काम हो गया, सारी जिम्मेदारियां हो गई, बस अब आराम करना है, कुछ नहीं करना है। इवन जो परिवार के यंग लोग हैं वो भी वृद्ध लोगों को एक कोने में बिठा देते हैं कि नहीं अब आप बैठ के आराम कीजिए, काम करने का दिन हमारा है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक फुल स्टॉप लगा देते हैं। जीवन तो जीने का नाम है, आराम नहीं, बल्कि ये उम्र है जबकि नए सपनों को उड़ान देना है, नई हॉबीज अपनाने का दिन, नई फ्रेंडशिप्स बनाने का दिन, नया लाइफस्टाइल, नई आइडेंटिटी होनी चाहिए। प्रोफेसर अर्चना यही हमें बता रही हैं आज के प्रोग्राम में। जब हम एक्टिव एजिंग की बात कर रहे हैं तो एक्टिव एजिंग का मतलब ये नहीं है कि आई मीन वन हैज़ टू रिजुनुएट एंड रिवाइव वंस ओन स्पिरिट। यही सब सवाल आपके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर भी पहुंच रहे हैं। और रेनबो हेल्पलाइन की आज की हमारी एक्सपर्ट प्रोफेसर अर्चना दासी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट सोशल वर्क जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से हैं, यही बात हमें बता रही हैं। और फिलहाल फरीदा खान, इनका ये मैसेज हम तक आया है और ये कहती हैं कि मुझे कुछ बीमारियां हैं जिसके चलते मैं बहुत एक्टिव नहीं रह पाती हूँ, बाहर नहीं निकल पाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ इस उम्र में, मुझे तो घर में बस बंद सी हो गई हूँ।
2: फरीदा जी, फिजिकली एक्टिव तो रहना पड़ेगा। अब ये सोचना है कि कैसे रहेंगे फिजिकली एक्टिव। तो क्या ये मुमकिन है? ये मैं दो चार सुझाव जो मेरे जहन में आ रहे हैं मैं वो देती हूँ, अब वो आप देखिए कि उसमें क्या हो सकता है पॉसिबल। एक तो ये हो सकता है कि क्या आप अपने घर से बाहर सिर्फ 15 मिनट के लिए वॉक करने के लिए जा सकती हैं, सिर्फ 15 मिनट, 15 से 20 मिनट बहुत है उसके लिए। अगर वो मुमकिन नहीं है तो घर में रहते हुए जो है आजकल बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्लासेस हैं, योगा क्लासेस, जिनको ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको एक फीलिंग ऑफ फिटनेस भी आएगी। तो इस तरह की कोई क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। घर में एक्टिव रहने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि आप के टाइम में आपकी अम्मी ने अगर आपको कुछ ऐसी रेसिपीज सिखाई हो, क्या उन रेसिपीज को फिर से ट्राई किया जा सकता है घर में? उसके लिए किचन में जाया जा सकता है, थोड़ा बहुत किसी का सपोर्ट लेके, किसी का हेल्प लेके, अगर कुछ भी एक्टिविटी विद इन द हाउस भी की जाए। देखो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें आदत हो जाती है, अगर हमें प्यास लगी तो हम कहते हैं भाई कोई पानी पिला दो। एक एक्टिविटी ये है कि आप उठ के फ्रिज तक जाते हैं, आप वहां से पानी निकालते हैं, आप पानी पीते हैं, वापस उस बॉटल को थोड़ा भरते हैं और फिर वापस रख के फिर अपने बेड के पास वापस आ जाते हैं। अब जो ये मूवमेंट थी ये भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर ही ऐड होती है। तो आपको ये देखना होगा कि बहुत छोटी छोटी चीजें कैसे इनकॉर्पोरेट की जाए। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूंगी कि फिजिकली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है,
1: चाहे बीमारी कितना भी हो। लेकिन लाइक वी आर सेइंग कि हमारी जो शरीर है ना, इसकी मसल्स जो हैं उनको अगर आप जितना इनएक्टिव रखेंगे वो उतनी ही रिजिड होती जाएंगी,
2: बिल्कुल दर्द करने लगेंगी।
1: और जितना उसको एक्शन में आप रखोगे वो उतनी फ्लेक्सिबल रहेंगी और आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो बहुत अच्छे से प्रोफेसर रचना ने बताया कि काम करने के लिए बाहर निकलना नहीं भी होता है तो घर में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। एक और मैसेज हम तक आया है कि जिंदगी में हमेशा अपने काम से, मनोहर सिंह जी कहते हैं कि इतना बिजी रहा कि कभी कुछ फ्रेंड सर्कल बना ही नहीं, अब रिटायरमेंट के बाद जो है समझ नहीं आ रहा कि कैसे सोशली एक्टिव रहूं, क्या किया जाए।
2: अब जो है वो जहां कहीं भी जिस किसी नेबरहुड में मनोहर जी रहते हैं उस नेबरहुड में बाहर निकलिए और इनिशिएटिव लीजिए अपनी तरफ से, अपने नेबर्स पड़ोसियों के साथ इंटरेक्ट करने का। आपके आसपास में अगर कोई पार्क है तो उस पार्क में जाइए, आपको वहाँ पे बहुत सारे सीनियर लोग जो हैं वो बैठे मिलेंगे, ग्रुप्स में बैठे हुए मिलेंगे। अपनी तरफ से इनिशिएटिव लीजिए उनके पास जाने का, उनसे बात करने का, और फिर आप देखेंगे कि दोस्त बनाना तो बहुत आसान है और सीनियर सिटीजन्स के पास तो कला है कि उनके पास तो इतने सारे अनुभव हैं, अगर आप वही बताना शुरू कर दें तो वैसे ही लोग आपके आसपास बैठ के जो हैं वो आपसे मिलना चाहेंगे, इंटरेक्ट करना चाहेंगे।
1: बहुत ठीक आपने कहा, ये दिल्ली जैसे शहरों में तो खैर बहुत से सीनियर सिटीजन के क्लब हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, आप कहीं पर भी जाएं आप जरूर कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपने बड़ी अच्छी बात का एक जिक्र किया प्रोफेसर अर्चना की, आप अनजान लोगों से भी, व्हाई कांट वी बी द फर्स्ट वन टू इनिशिएट एनी कन्वर्सेशन। और आप देखिए आज के जमाने में किसी के पास फुर्सत नहीं होती किसी से बात करने की, लेकिन अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिले जो आपसे बढ़कर हालचाल आपका पूछ रहा है, लोग आपको चाहेंगे कि दोबारा मुलाकात हो और दोस्ती बन जाएगी।
2: आप पार्क में जाके देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो बात करना चाहते हैं। और एक चीज जो सीनियर सिटीजन्स के अंदर क्वालिटी है, उनके सुनने की बैंडविड्थ बहुत अच्छी है, तो वो सुन सकते हैं बैठ के और उसके बाद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कुछ उनको सुझाव भी दे देंगे। ऐसे लोग तो बहुत ही पसंद आते हैं। लेकिन अगेन, क्योंकि मैं ये समझ सकती हूँ आपने आज तक इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया, तो हो सकता है थोड़ी झिझक होगी, थोड़ी हेसिटेशन होगी, लेकिन उस झिझक को आप ही छोड़ सकते हैं, आप ही तोड़ सकते हैं। पहला कदम बढ़ाइए, फिर देखिए
1: और राजी कीजिएगा,
2: और राजी कीजिए, शाम में निकलिए और देखिए, फिर आपकी ये सारी शिकायत दूर हो जाएगी।
1: किसी एक को आप किसी अनजान आदमी के सामने आज आपने हेलो कहना है, इनिशिएट करना है,
2: मुस्कुराइए, मुस्कुरा के नमस्कार कहिए और फिर देखिए कि कैसे वही आपके साथ जो है वो साथी बन जाएंगे वॉक करने के लिए।
1: एब्सोल्युटली प्रोफेसर अर्चना, अगला सवाल मेरा आपसे है, हाउ कैन वी प्रमोट एक्टिव एजिंग, इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं।
2: देखिए, दो तीन चीजें जो है जिसकी वजह से हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है, उसको हमें समझना जरूरी है, और अगर हम उन एक्टिविटीज को हैंडल कर लें तो इसका मतलब हम एक्टिव एजिंग को कर सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। और जब हम बात करते हैं एक्टिव होने का, तो हमें एक्टिव कैसे होना है, हमें फिजिकली भी एक्टिव रहना है, मेंटली भी एक्टिव रहना है, सोशली भी एक्टिव रहना है, फाइनेंशियली भी एक्टिव रहना है। तो पहली चीज जब हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये बात आ जाती है कि हम विद द ग्रोइंग एज कई बार बहुत सारी डिजीजेस, जो बर्डन ऑफ डिजीज है वो आ जाता है। तो हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक हेल्थ प्रमोशन और एक डिजीज प्रिवेंशन। मतलब ये नहीं कि जब बीमारी हो जाए तो उसको फिक्स करें, नहीं, पहले से ध्यान रखें कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी हेल्थ जो है वो सही रहे। तो उसके लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, इंडिया में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग बड़ा रिच, ऑयल रिच खाना खाते हैं, नॉर्थ की तरफ तो बहुत ज्यादा ये चीज है, और हमें ये लगता है कि अगर हम ऑयल रिच खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया खाना है। तो हाई कैलोरी फूड के बदले न्यूट्रिशियस फूड खाना एक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने एल्डरली, स्पेशली महिलाएं, ये इंश्योर करती हैं कि वो दूध पिएं या वो पल्सेस खाएं या एग खाएं, अगर वो खाती हैं, नॉन वेज खाती हैं या नॉन वेजिटेरियन जो भी फूड आइटम्स हैं वो खाएं, या फ्रूट खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स प्रेफर करें। तो हम ये कहते हैं नहीं, हमें ये पसंद ही नहीं है। अब ये पसंद ना पसंद का सिलसिला जो है इसको खत्म करना होगा। ये समझिए कि उस गोली खाने से बेहतर है हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं। तो पहला है हेल्थ प्रमोशन, उसको अपनी हेल्थ को इंश्योर करना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिस जो एक्टिव एजिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो डिजीज प्रिवेंशन है। कोई भी ऐसी चीज जो हमें परेशान कर रही है उसको इग्नोर नहीं करना है। हम सीनियर एज में आके कई बार जो है वो हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं अरे कोई बात नहीं, सिर में दर्द ही तो है, अरे कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। इम्यूनिटी कम होने लगती है जैसे ही हम सीनियर होने लगते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पे हमें लगे कि ये हमारी हेल्थ में रूटीन में ऐसा नहीं हो रहा था, तो ज़रूरी है एक बार चेकअप करवाना, एक बार डॉक्टर को दिखाना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, ये तो फिजिकल हेल्थ हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। किसी ने अभी, हमारे एक श्रोता ने कहा, अकेले हो जाते हैं, तो ये सोशल आइसोलेशन जो है ना, सामाजिक रूप से ये जो हम अकेले हो जाते हैं, ये इस मिलेनियम का अनफॉर्चुनेटली एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जहाँ पे बच्चे दूर दूर चले गए, अपने आप नहीं चले गए, हम ही ने उनको पढ़ाया लिखाया और हमने उनको कहा कि गो एंड ग्रैब द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब जब वो चले गए तो हम अकेले रह गए, अब हम कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। तो अब ये इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप को मेंटली भी एक्टिव रखना। जैसा कि हमने कहा कि कोई नई चीज़ सीखिए, कोई नई भाषा सीखिए, कुछ ब्रेन से रिलेटेड गेम्स खेलिए। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत से एल्डरली अकेलेपन में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं। उन सब चीज़ों को पहले से ही कॉशस रहना है, सतर्क रहना है। और किसी ने कहा कि भूल जाते हैं, एक बहुत आसान नुस्खा है चीज़ें याद रखने का। एक बार सेट कर लीजिए कि आपने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, और ये इंश्योर करिए कि वो चीज़ जब वहाँ से उठाई जाएगी तो उसको वापस वहीं रखा जाएगा, तो कभी भी आपकी चीज़ें जो हैं वो गुम नहीं होंगी, वो मिलती रहेंगी आपको। कुछ बिहेवियर चेंजेस करने की बहुत ज़रूरत है हमारे सारे सीनियर सिटीजन्स को। जैसे मान लीजिए, अगर हम ये कहें कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं या अगर आप स्मोक करते हैं, तो कोशिश करिए कि अब इन चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करिए कि अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिंस मिलती हैं। तो हल्का सा भी सिर दर्द हुआ तो चलो दवाई खा ली, कमर में थोड़ी सी दर्द हुई तो एकदम से कोई भी पेन किलर खा लिया। तो इस तरह की बिहेवियर चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशली विमेन के लिए, जो अपने न्यूट्रिशन को इग्नोर करती हैं, वो प्लीज़ अपने न्यूट्रिशन को इंश्योर करें। आखिरी बात, जो एल्डरली अकेले रह रहे हैं, उनके एक्टिव एजिंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो घर है वो एक सेफ हाउसिंग की तरह होना चाहिए। जैसे जब बच्चा छोटा होता है ना, तो आप पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि घर में कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, सारे कॉर्नर्स राउंडेड होने चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से जो एल्डरली का घर है उसमें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे हम कहते हैं कि बाथरूम में स्किड फ्री टाइल्स होनी चाहिए, ताकि जो है वो कोई फिसले नहीं, क्योंकि फॉल का बहुत डर रहता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है एक्टिव एजिंग के लिए।
1: एब्सोल्युटली। तो रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है एक्टिव एजिंग की, और मैं आकृति, प्रोफेसर अर्चना रासी के साथ यही बात हम कर रहे हैं कि हर उम्र में का कोई भी पड़ाव क्यों ना हो, हर इंसान हकदार होता है कि वो अच्छी ज़िंदगी बिताए, हैप्पी ज़िंदगी बिताए, खुश रहे, मुस्कुराए, चले, नया कुछ सीखे, सपने देखे। जी हाँ, एक्टिव एजिंग इसी को कहते हैं। और छोटी छोटी सी आदतें हैं जो आपको सेफ भी बनाएंगी, सिक्योर भी बनाएंगी, और साथ साथ एक्टिव भी बनाएंगी। रेनबो हेल्पलाइन से जुड़े रहिए। एक्टिव एजिंग इन न्यू मिलेनियम, यही आज का टॉपिक है।

0: रेनबो हेल्पलाइन में आज बात हो रही है उम्र के उस पड़ाव की जिसे यूं तो जीवन की संध्या कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है जहाँ पे लाइफ को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेहरे के हर रिंकल में मुझे एक नई कहानी लगती है। मुझे मालूम है हमारे घर के कुछ बुज़ुर्ग बारे हैं, और जब भी वो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो कहते हैं हम बदल से जाते रहे हैं, और मैं कहती हूँ कि नहीं मम्मी, आपकी एक एक रिंकल में मुझे इतनी खूबसूरती नज़र आती है, क्योंकि वो खूबसूरती उनके एक्सपीरियंस की है, और साथ ही साथ हर एक्सपीरियंस, हर लर्निंग, हर नया दिन एक नई अपॉर्चुनिटी ला सकता है अगर आपकी स्पिरिट और आपका वे ऑफ डीलिंग विद लाइफ एंड इट्स अफेयर चेंज हो जाता है। एक सवाल है, उसके बाद मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप पूछना चाहूंगी कि गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं सीनियर सिटीजन की केयरिंग के लिए। बट इन साहब का एक प्रश्न आया है, इनका नाम है महेश साहब, और ये कहते हैं कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं करते, वो तो हमेशा जल्दी में रहते हैं या फिर अपनी टैबलेट्स में, फोन में बिजी रहते हैं। इनको क्या कहें महेश साहब को?
1: महेश जी, ये तो आजकल जो है वो इस समय की विडंबना है कि घर में अगर 6 लोग बैठे होंगे तो वो सब अपने अपने फोन में बिजी होंगे। मतलब लगता ही नहीं है कि कोई किसी से बात भी करना चाहता है। तो मेरे ये स्ट्रगल मेरे ख्याल से जो है वो इस समय हर घर की है, लेकिन ये डेफिनेटली ज़रूरी है। अगर घर में कुछ इस तरह की चीज़ें, नियम बना लिए जाएं कि अगर हम मान लीजिए खाना एक साथ खाते हैं डाइनिंग टेबल पे, कोई भी ऐसा समय है जब हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो बात करने की कोशिश करने में जो है वो उनके बारे में बात करना, तो इसका मतलब एल्डर

0: को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि ये यंगर जनरेशन किस तरह की बातचीत करना चाहती है, या ये एक किस तरह के मुद्दे इनको बहुत अच्छे लगते हैं। आप उनसे कोई नई चीज़ पूछिए कि क्या चल रहा है आज, या आजकल जो है ये नए शॉर्टकट्स लैंग्वेज में क्या यूज़ किए जाते हैं, इसका क्या मतलब है। तो कहीं पे एक बिगिनिंग करनी होगी और देखना होगा कि वो जिस तरह की बातचीत करना चाहते हैं वहां से शुरू करनी है हमको बातचीत। बाद में हो सकता है उन्हें फिर इंटरेस्ट आने लगे और वो फिर हमसे हमारे अनुभव पूछने लगे।
1: इंटरेस्ट बहुत होगा क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन तो सब है, लेकिन बहुत डिलेमा है, बहुत कंफ्यूजन है जो दिमाग के अंदर चलता है, और उन्हें कोई अगर प्यार से सुनने वाला मिलेगा तो वो बहुत अपने दिल की बात भी शेयर करेंगे। लेकिन समय जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आपसे चलते चलते आखिरी सवाल जो पूछना चाहती हूँ वो ये कि गवर्नमेंट की सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं।
0: गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम्स जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई हैं, जैसे डे केयर सेंटर्स हैं जहाँ पे सीनियर सिटीजन दिन में जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को हैं, तो इस तरह से डे केयर सेंटर चल रहे हैं। ओल्ड एज होम्स हैं जिन एल्डरली के पास किसी तरह का सोशल सपोर्ट नहीं है, जो इंडिपेंडेंटली नहीं रह पा रहे हैं उनके लिए ओल्ड एज होम्स हैं। मोबाइल मेडिकल वैन्स हैं जो बहुत सारी एनजीओज चला रही हैं जिनको, और वो अलग अलग एरियाज में जो है वो एल्डरली के पास पहुंच के वहां पे उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बहुत सारे एल्डरली जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, जिसमें बहुत थोड़ा सा एक अमाउंट जो है वो एटलीस्ट उनको मिल जाता है। डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल यू नो इट्स अ स्मॉल अमाउंट। अभी कुछ समय से जो है वो हर बड़े हस्पताल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जीरियाट्रिक क्लिनिक्स खुल गई हैं, यानी कि एल्डरली के लिए स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स खुल गई हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आ रहा था कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में पूरी एक विंग जो है वो जीरियाट्रिक विंग बन गई है
1: जी।
0: और इसी तरह से एक आखिरी चीज कि नेशनल एल्डर हेल्पलाइन है 14567 जो आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी सपोर्ट और एनी इमरजेंसी। ऑल दीज आर गवर्नमेंट स्कीम्स।
1: और चलते चलते कुछ टिप्स हमारे सीनियर सिटीजंस के लिए।
0: डिजिटली अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाइए, यूपीआई यूज करना सीखिए, वीडियो कॉल्स करना सीखिए, खासतौर से व्हाट्सएप पे। स्कैमर्स को पहचानना शुरू कीजिए कि किनको हर आजकल उतनी साधारण जिंदगी नहीं है कि सतयुग में नहीं रह रहे हम कि कोई परेशान नहीं करेगा। हमारे पीछे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे पड़े हुए हैं, जो जिनको पता है कि आप जो है वो सीनियर सिटीजन को देख सकते हैं। हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए, उसको बिल्कुल मत छोड़िए। अपने आप को सोशली एंगेज करिए, ये बहुत बहुत
1: जरूरी है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर रचना दासी साहब, आप हमारे साथ रही और एक्टिव एजिंग के बारे में आपने इतना कुछ बताया। और चलते चलते मैं आकृति भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि एक्टिव एजिंग लाइफ का वो फेज है, वो पड़ाव है जब मुझे लगता है कि हम खुद को, अपने आप को, खुद को गहराई से समझ सकते हैं। जिंदगी भर समय नहीं मिलता ना, ये समय है। अपने आप के अंदर झांके देखिए, नई सोच को अपनाइए, नया आउटलुक होना चाहिए, और उम्र की गिनती आई थिंक हमें अब छोड़ देनी होगी। सपने के लिए नए कदम बढ़ाइए और नई मुस्कुराहटों को भी, आई थिंक नए नए रिश्ते बनाने का समय भी ये भी है।
0: अपनी गोल्डन एज कहिए।
1: जी हाँ, एब्सोल्युटली गोल्डन एज होगी। आइए प्रॉमिस करते हैं कुछ नया सीखेंगे, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहेंगे, अपने हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और जैसा आज हमने सीखा कि किसी न किसी से जरूर जुड़ेंगे। तो इसी के साथ रेनबो हेल्पलाइन से मुझे यानी आकृति को दीजिए विदा। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य भारत के स्वास्थ्य अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए एक रणनीतिक ढांचा प्रदान करना है। सरकार ने बताया कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई खेप के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है, जिसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉडल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष सिंगल्स का खिताब बरकरार रखा है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वरेव को हराया। ये थे अब तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम आशियाना की। आशियाना एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम परिवार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त आरजे शालिनी। चलिए शुरुआत करते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

बिल्कुल दोस्तों, समय आगे बढ़ता रहता है और हमारा समय भी बढ़ रहा है। और आज का टॉपिक हमारा ये है कि जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए हर परिवार में ना कुछ चैलेंजेस आते ही हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में काम और परिवार के बीच जो संतुलन है वो बनाना बहुत ज़रूरी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ा चैलेंजिंग भी हो गया है। बढ़ती पेशेवर जिम्मेदारी और परिवार की अपेक्षाओं के बीच कई लोग ना खुद को समय की कमी से जूझता हुआ पाते हैं। और ऐसे में पता है दोस्तों क्या ज़रूरी है? ऐसे में ज़रूरी है कि हम काम और परिवार दोनों को ही बराबर इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि करियर हमें पहचान देता है लेकिन परिवार हमें भावनात्मक मजबूती और सहारा देता है। तो एक सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आप अपने व्यस्त जीवन में अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय निकाल पा रहे हैं?

दोस्तों, कार्यक्रम आशियाना में हम बात कर रहे थे परिवार में बैलेंस बनाने की, यानी काम और परिवार के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों, इसका सबसे अच्छा तरीका है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप दिन की प्रायोरिटीज़ को सेट कर लें और काम और परिवार के लिए अलग अलग समय को निर्धारित कर लें, तो बैलेंस बनाने का जो स्ट्रेस है ना, वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पता है एक्सपर्ट क्या मानते हैं? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऑफिस का काम ना ऑफिस में ही रहना चाहिए और परिवार का समय परिवार के नाम होना चाहिए। और इसके लिए आप कर सकते हैं छोटी छोटी कोशिश जिनसे आप परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। क्या हो सकती है वो छोटी छोटी कोशिश, उनके बारे में करेंगे बात एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आशियाना। दोस्तों हम बात कर रहे थे परिवार में बैलेंस बनाने की और ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटाने की, जिससे कि आप परिवार और काम के बीच एक बेहतर बैलेंस बना सकें। दोस्तों लेकिन आजकल के डिजिटल एरा में मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप का इस्तेमाल हम में से सभी लोग करते हैं और इनकी वजह से ना काम और घर की सीमा काफ़ी हद तक मिट चुकी है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में लगातार संदेश आते रहते हैं जो बार बार आपको काम की याद दिलाते हैं। ऐसे में हम में से कई लोग घर पर मौजूद तो होते हैं लेकिन उनका ध्यान काम में ही लगा रहता है और इसका असर पड़ता है पारिवारिक रिश्तों पर। दोस्तों ऐसे में पता है क्या ज़रूरी है? ऐसे में ज़रूरी है कि परिवार के साथ बिताए जाने वाले समय को स्क्रीन से मुक्त रखा जाए। पता है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? जब आप घर पहुँचे तो माता पिता, बेटा बेटी जो भी हैं जो बाहर से आ रहे हैं, अपने मोबाइल को एक बास्केट में रख दें और जो घर में भी रह रहे हैं बुज़ुर्ग लोग या फिर मम्मी हैं आपकी, तो वो भी अपना फ़ोन एक बास्केट में रख दें और एक नियम बना लें कि डिनर के दौरान या फिर उसके बाद के कुछ एक घंटे के समय के लिए कम से कम कोई उस मोबाइल को हाथ नहीं लगाएगा। पता है ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आप सभी एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे, संवाद करेंगे और जब आप लोगों का आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो रिश्तों में अपनापन और मजबूत होगा।

दोस्तों, लगातार जब ऑफिस में काम होता है ना, तो उसका दबाव और साथ ही साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ ना स्ट्रेस का कारण बन जाता है। ऐसे में अगर हम परिवार के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो उनका जो सहयोग है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। इसलिए परिवार के साथ खुलकर बातचीत करना, अपनी परेशानियां साझा करना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि बेहतर मेंटल हेल्थ के लिए हमें हमारा काम तो बेहतर करना ही है, लेकिन साथ ही साथ परिवार के साथ अपने रिश्तों को भी समय देना चाहिए।

दोस्तों कई बार ना हम सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन सफलता ना केवल पेशेवर उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी तय होती है कि हम अपने परिवार और रिश्तों के लिए कितना समय निकाल पा रहे हैं। काम और परिवार ना जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं और दोनों का संतुलन बेहद ज़रूरी है। इसलिए जब हम अपने परिवार और करियर दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं ना, तभी हमारी लाइफ सही मायने में सक्सेसफुल कहलाती है। इसलिए परिवार और अपने काम के बीच बैलेंस बनाइए और रिश्तों को मजबूत करिए। फिलहाल समय है प्रायोजित कार्यक्रम का।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
1: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है, यह सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है, साथ ही साथ हमारे दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
2: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था, इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
1: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है, यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एन आर प्रसाद जी और अखिला जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी राम दुलारी जी का।
2: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का, वो लिखते हैं,
1: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद और ज्ञानवर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं, आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
2: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाए तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय, प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
1: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
2: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
1: तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था कि मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
2: श्रोताओं इसका जवाब जान लेते हैं। मातृ वृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
1: जी, और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे

0: पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
1: जी, हमारा अगला प्रश्न था, क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
0: जी, इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद, और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
1: जी अश्रोताओ, हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था, जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
0: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
1: जी तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कंगारू के कितने पैर होते हैं?
1: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
0: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल बह गई।
3: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है, हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी मां की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता, वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
4: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
5: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़, और दूर दूर तक फैले हुए खेत,
4: और वो सामने देखो बहती हुई नदी, कितना साफ पानी है।
3: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए, और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे, और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
6: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
3: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए, और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की, लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
7: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो, इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
3: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे, आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
6: अरे काट काट काट, हाँ तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
8: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
3: गर्मियों का मौसम था, लोग कहते उफ इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
4: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
9: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान ले ली इस गर्मी ने।
3: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे, और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी। पेड़ कट गए थे इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया, और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
2: हमारे
6: खेतों में पानी भर गया, सारे
2: भगवान सारी फसल बह गई।
10: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा,
2: सारा
10: सामान जल्दी
2: ऊपर
10: ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर,
10: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो,
10: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप वाप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
3: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना, और इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
11: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी। बच्चों संग वो खेलती थी, कलकल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहु ओर हाहाकार। अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
1: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा। शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे। घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोक गीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा दाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता, मैं ही जीवन हूं धरती का। मुझे नष्ट मत करो, मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी।

0: वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहाँ निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यही तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती,
2: अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
2: जिंदौरी।
3: हाँ चाची।
2: और
1: हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है।
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ? वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
4: हाँ? छत्ते? क्या मतलब?
1: हाँ हाँ, छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ,
4: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
4: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
5: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ कर।
4: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
5: क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
4: हाँ ठीक है, ना

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तूण, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? हाँ, आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है।
1: मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा।
2: अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो खाकी पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है। ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं। सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं।

0: 不站队长，
1: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए, मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
2: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
3: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
2: हाँ, ठीक है, ठीक है।
4: मगर ये औरतें और बच्चे।
3: अरे अगर मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी। नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
5: हाँ क्या बात है?
3: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
5: क्या जंगल
3: काट रहे हैं?
1: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे, सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
3: सुनो, वृक्ष हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा करें।
5: लेकिन हम क्या करें, इनके पास तो हथियार है।
3: अरे डरो मत, भाग कर हर बहन एक एक पेड़ से चिपक जाए ताकि ये पेड़ न काट सके। भागो, चलो पकड़ लो प्राणों को। ये कुछ नहीं कर सकते चाची, तुम भी यहाँ से चिपक जाओ, चिपक जाओ पेड़ से। अब हम पेड़ों से चिपक गई हैं, अब चलाओ कुल्हाड़ी।
6: देखता हूँ सबको बड़ी बहादुर बनती
3: है, हम जान दे देंगे मगर पेड़ों को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखते क्या हो, चलाओ कुल्हाड़ी। अरे शिब्बा, तू तो हमारे गांव का ही है, मार अपनी बहनों को।
7: अरे साथियों देखते क्या हो, आगे बढ़ो और ये पकड़कर पैरों से अलग कर दो। आगे बढ़ो, जय देवर, जय आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
1: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
8: चिब्बू भाग ले यहाँ से,
1: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
9: वाह भाई, ये गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया,
10: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को। अरे भाई गौरा, वाह कमाल कर, जीतती रहे बेटी, जीतती रहे।
3: तो हम सबका कर्तव्य है।
1: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है। एक गांव की कहानी अभी आपने सुना। ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को,
1: कुसुमलता,
0: जगबंधु,
1: चेतना
0: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
11: उमंग उमंग उमंग उमंग।
12: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी रेनबो पर। फिलहाल आकाशवाणी रेनबो पर आगे आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक गीत।

0: डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, जब बारिश का मौसम आता है तो हर तरफ हरियाली होती है, हमें अच्छा लगता है जब मौसम में बदलाव होता है, गर्मी से एक राहत मिलती है। लेकिन कई बार ये अपने साथ कुछ ऐसे इन्फेक्शंस, कुछ ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी लेकर आता है जिसका सोल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मौजूद है रेडियो डॉक्टर आज का ये अंक लेकर, जिसमें हम बात करेंगे इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी बारिश में होने वाली आमतौर पर क्या समस्याएं होती हैं, क्या संक्रमण होते हैं जिनसे बचना बेहद ज़रूरी होता है, और अगर किसी कारणवश आपको ये बीमारी या इन्फेक्शन हो जाए तो क्या सावधानी लेकर या किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, इस सब के बारे में भी आपको इस कार्यक्रम में जानकारी मिलेगी। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है आज के हमारे दो रेडियो डॉक्टर्स से मैं कराना चाहूंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर विष्णु आपका स्टूडियो में।
1: धन्यवाद मैम।
0: और हमारी दूसरी एक्सपर्ट, दूसरी रेडियो डॉक्टर हैं डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत आपका भी।
2: धन्यवाद मैडम, और सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और बहुत सारी हमारी ऐसी समस्याएं होती हैं जो खासतौर पर इस बीमारी, इस समय जो मौसम चल रहा होता है उस पर केंद्रित होती है, यानी बरसात में। और कई बार हम इसका आनंद लेते लेते ये भूल जाते हैं कि हमें ध्यान रखना है कि सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं जिससे ये बीमारी हमें हो ना जाए या ये संक्रमण हमें हो ना जाए। तो मैं चाहूंगी कि हमारे जो श्रोता हमारे साथ जुड़ते हैं हर रेडियो डॉक्टर में अपनी समस्याओं के साथ, आज भी इस कार्यक्रम में आप पूरी तरह से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना भागीदारी शो कर सकते हैं। और कैसे करना है ये भी आपको पता है, क्योंकि हमारी फोन लाइन्स खुल जाती हैं, हमारा व्हाट्सएप खुल जाता है, आप बस जुड़ना है हमारे साथ। हमारे फोन नंबर्स वही हैं 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाएं, और फिर ये नंबर आप लगा सकते हैं और सीधे हमारे एक्सपर्ट्स जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे बात कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070। साथ ही साथ हम कुछ खूबसूरत से गीत भी सुनेंगे, लेकिन आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। सबसे पहले कार्यक्रम शुरू करूं मैं डॉक्टर विष्णु, आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हम ये विषय आज जो लेकर आए हैं इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मानसून सीजन, कौन से ऐसे इन्फेक्शंस खास तौर पर इस मौसम में आप देखते हैं?
1: देखिए, जैसा कि आपने बताया कि बारिश का मौसम चारों तरफ खुशियां लेके आता है, हर कोई खुशी से भर जाता है, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों। स्पेशली जो किसान होते हैं उनके लिए ये जो बारिश का मौसम आता है वो एक नई उमंग और नई ऊर्जा लेके आता है। लेकिन हमें ये जानना भी जरूरी है कि ये जो बारिश का मौसम होता है इसमें क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है
0: जी।
1: दूसरा, बारिश के जो शॉर्ट स्पेल्स होते हैं, छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि घर के आसपास, घर के सराउंडिंग में जो छोटे गड्ढे या छोटी चीज़ें ऐसी जो पड़ी होती हैं, टायर पड़ा हुआ है, कोई गमला पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनमें पानी इकट्ठा हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से क्या होता है कि मच्छर बहुत पनपते हैं, और जब मच्छर पनपते हैं तो वो बीमारियाँ पैदा करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे जो बारिश का पानी होता है वो ओवरफ्लो होता है, नालियों में जाके मिल जाता है, नालियाँ ओवरफ्लो होती हैं, कई बार सीवर का जो पानी होता है वो कई बार वाटर जो लाइन होती है उसके साथ कंटामिनेटेड हो जाता है, तो उसकी वजह से, दूषित पानी की वजह से भी बीमारियाँ होने लग जाती हैं। तो अगर हम मोटा मोटा इसको क्लासीफाई करें कि बारिश के मौसम में जो होने वाली बीमारियाँ हैं वो बेसिकली चार तरह की बीमारियाँ होती हैं। पहली बीमारी होती है जो मच्छरों के काटने से होती है, इसमें मेनली जो होता है इस सीजन के अंदर डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां काफ़ी प्रोमिनेंटली देखी जाती है और ये एक पीक सीजन माना जाता है इन मौसमी बीमारियों के लिए। तो ये बेसिकली होती है आपके घर के आसपास जो पानी इकट्ठा होता है उसमें जो मच्छर पनपते हैं उसकी वजह से। जो दूसरी बीमारी होती है वो होता है दूषित पानी को पीने से या दूषित खाने को खाने से। तो इसमें मोस्टली जो बीमारी हम मानते हैं वो होता है टाइफाइड फीवर होता है, एक हिपेटाइटिस ए और ई जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं कई बार, और एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। पहले कोलेरा वगैरह भी होता था लेकिन कोलेरा अब आजकल देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली टाइफाइड फीवर और जॉन्डिस इस तरह का, या फिर किसी किसी को गैस्ट्रोएंटेराइटिस या लूज मोशन जिसको हम बोलते हैं वो हो जाता है। तो ये दो तो बेसिक बड़ी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा जब भी वेदर चेंज होता है तो एक फ्लू लाइक बीमारियां होती है जिसको हम वायरल फीवर भी बोलते हैं, जिसमें आपके गले में खराश हो जाती है, आपके गले में खिचखिच होने लग जाती है। तो ये भी जब बदलता मौसम होता है स्पेशली बारिश के मौसम में ये भी देखने को मिलता है। चौथी जो बीमारी अगर मोटा क्लासिफिकेशन करें तो पेशेंट्स में कई बार कंजक्टिवाइटिस, जैसे आपके हाथ वगैरह गंदे होते हैं तो आप गंदे हाथ अपने आंखों के आसपास लगाते हैं तो उससे आंखों के में कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, लाल जिसको आंख हम बोलते हैं, वो भी इस बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती है। और इसी में एक चीज और इंक्लूड करते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन, जैसे आपने देखा है कि बारिश के अंदर जैसे हमने बात करी कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आपके कपड़े जो होते हैं स्पेशली जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो कई बार हम होते हैं कि अच्छे से सूखे नहीं होते हैं, उन्हें हम पहन लेते हैं, तो हमारे जो ऐसी जगह होती हैं उन जगह पे लाल लाल दाने या फिर चकते जैसे बन जाते हैं जिसको हम दाद खाद खुजली कहते हैं। तो ये जो चार मोटी बीमारियां होती हैं, चार तरह की जो बीमारियां होती हैं, ये बारिश के मौसम में काफी देखने को मिलती हैं।
0: जी, बहुत सारी आपने इन्फेक्शंस और बीमारियां बताई, फंगल इन्फेक्शंस भी, बैक्टीरियल भी, और स्किन इन्फेक्शंस, वायरल भी, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। तो जरूर हमारे श्रोता चाह रहे होंगे कि अपने जो प्रश्न है हम तक पहुंचाएं, तो उन्हें पुनः बता दें कि आप अगर हमें कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 2342108023421082 हमारा फोन नंबर है, 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मैम तनु मैम हमारे साथ हैं। अभी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि खासतौर पर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस बहुत बढ़ जाती हैं इस मौसम में। पहले तो ये कारण भी सर ने बताया क्योंकि पानी का जमाव होता है, ये हम सब जानते हैं, पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी खासतौर पर कि कौन कौन सी ये बीमारियां हैं और इनके कुछ लक्षण मिलते जुलते हैं कि अलग हैं।
2: जी, तो ये जो वेक्टर बॉर्न बीमारियां हैं, ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये तीन बीमारियां हैं जो पूरे ही कंट्री में, हर प्रदेश में और यूटीज़ में प्रेजेंट हैं। लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस है, कालाजार है, जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है वो कुछ लिमिटेड स्टेट्स में है। और ये सारी ही बीमारियों के लक्षण जो शुरू होते हैं वो फीवर से शुरू होते हैं। तो बुखार एक कॉमन लक्षण है जो सारी ही बीमारियों का होता है। साथ ही साथ जो बारिश की आपने बात की, तो बारिश के साथ ह्यूमिडिटी तो एक फैक्टर है ही कि होती है, और पानी का जमाव भी एक फैक्टर होता है। लेकिन एक फैक्टर होता है जो घर के आसपास कूड़ा और गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर जो जैसे छोटे नारियल के खोल पड़े हैं या छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे पड़े हैं, उसमें जो पानी भर जाता है, स्पेशली जो एडीज मस्किटो होता है, जिसे हम टाइगर मस्किटो कहते हैं, जो डेंगू के लिए होता है, वो उसमें पनपता है। तो एक हफ्ते से ज्यादा साफ पानी अगर किसी भी जगह पर भरा रहे, जो आपके गमले हैं घर के अंदर, उसके अंदर ट्रे होती है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, इन सबके अंदर ये जो पानी भरता है इस सीजन में, उसके अंदर हफ्ते भर तक अगर स्टैग्नेंट रहे, वाटर्स खड़ा रहे और उसको आप ड्रेन आउट ना करें, तो उसके अंदर ये इसके मच्छर के अंडे पनपते हैं और ये एडल्ट में बन जाते हैं। और ये मच्छर बहुत ही हार्डी एक मच्छर होता है। मैं बताना चाहूंगी कि इस मच्छर का एक बड़ा टिपिकल कैरेक्टर है कि डे बाइटर होता है, डेंगू खास करके डे बाइटर होता है, और ये दिन के टाइम काटता है। और इसकी प्रेफर्ड प्लेसेस हैं कि ये पैर पे काटेगा, ईयर लोब पे काटेगा, हाथ पे काटेगा, तो ये वाले सारे पार्ट्स होते हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, दिन भर आप इधर उधर बैठे हैं, कहीं पे स्टिल बैठे हैं, तो वो काटेगा। एक मच्छर लगभग 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ब्लड मील जो उसका होता है, उसका जो जितना खून उसको चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए। एक मच्छर एक दिन में 10 से 15 लोगों को भी बाइट कर सकता है और वो सभी को इन्फेक्शन दे सकता है अगर वो इन्फेक्टेड है। तो ये एक बहुत डेंजरस मस्किटो होता है।
0: अगर घर में आ गया तो वो फिर सारे फैमिली मेंबर्स को।
2: तो इसीलिए प्रिकॉशंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने घर के आसपास सफाई रखें। और एक और चीज होती है, ह्यूमिडिटी के साथ साथ इनकी लाइफ जो होती है वो लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाती है, तो ये एग से एडल्ट

0: हम अचानक से छाता नहीं लेके निकले और अचानक बारिश हो गई, या घर से ऑफिस आए या ऑफिस से घर गए, ऐसे मैं भीग जाता हूँ, तो क्या मुझे प्रिकॉशन लेनी चाहिए? अगर मैं भीग गया हूँ तो क्या मुझे करना चाहिए? अचानक हो गया ऐसा तो?
1: देखिए, भीगना कोई बीमारी नहीं है। बारिश में अगर कोई भीगता है तो ये नहीं कह सकते कि वो बीमार पड़ेगा ही। अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी या आप कोई क्रॉनिक इलनेस है, आपको कोई पुरानी बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, अगर वो बारिश में भीगेगा और टाइमली अपने आप को सुखाएगा नहीं, तो उसको हो सकता है कि बारिश पकड़ ले, जो बीमारी है वो पकड़ ले। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर आप भीग गए हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई आसपास शेड मिल जाता है तो आप उस शेड के नीचे जा सकते हैं। घर जाके अपने कपड़े चेंज कीजिए, तुरंत कपड़े चेंज कीजिए, मोटे कपड़े से, मोटे तौलिए से अपने पूरे शरीर को सुखा लीजिए। फिर थोड़ा सा एक गर्म चाय या गर्म सूप या कुछ ऐसी गर्माहट वाली चीज़ ले लीजिए, तो फिर उसके बाद में आपको इस तरह से चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
0: जी
1: लेकिन अगर आपको लगे, फिर भी उसके बावजूद भी लगे कि आप को बुखार आ रहा है या आपके गले में कुछ खराश, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप किसी डॉक्टर से इस बारे में बात कर सकते हैं।
0: हाँ, लेकिन
1: जी
0: ये पक्का है कि वो बारिश के भीगने से नहीं,
1: सिर्फ
0: पानी के भीगने से नहीं, वो वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो कॉमन होता है उस सीजन में, तो हो सकता है आपको वायरल हो और आप भीगने से उसको एसोसिएट करें, तो ऐसा ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं पर है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ी गर्माहट गर्माहट लानी चाहिए और गीले को बहुत देर तक गीला नहीं
1: नहीं
0: छोड़ना
1: रहना।
0: चाहिए।
1: आपके जो गीले कपड़े हैं वो जैसे ही
0: हाँ,
1: आपको जगह मिलती है, मौका मिलता है, आप उनको
0: तो
1: चेंज कर
0: चेंज
1: लीजिए,
0: कर लें।
1: बेस्ट
0: जी
1: तरीका यही
0: जी
1: है।
0: और हमारे लिसनर जो शायद कट गया था फोन, दोबारा से आ गए। हेलो
2: नमस्कारम,
0: जी, आपकी बात नहीं पहुंची थी
2: बीबी
0: बहुत
2: गौतम
0: वक्त।
2: जिनसे
0: जी
2: बोल रहा
0: जी
2: हूँ।
0: बताइए।
2: मेरा पूछना था कि वायरल फीवर के क्या लक्षण हैं और बुखार से इसका क्या अंतर है और ट्रीटमेंट क्या है, कृपया विस्तार से
0: जी जी
2: बताएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब बताएं, डॉक्टर विष्णु, वायरल फीवर का आपने जिक्र भी किया था कि इस मौसम में बहुत होता है, तो क्या डिफरेंस है नॉर्मल फीवर से और किस तरह से उपचार किया जाता है?
1: देखिए, वायरल फीवर अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हम इनको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो वायरल फीवर जो फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ आता है, जिसमें आपको हल्का सा फीवर आएगा, वो फीवर काफ़ी तेज़ नहीं होगा, आपके गले में खराश होगी, हल्की सी ठंड लगेगी आपको। और जो दूसरा वायरल फीवर हम जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर डेंगी और आपका चिकनगुनिया आता है, ये भी बेसिकली है तो वायरस डिजीज ही, क्योंकि डेंगी वायरस होता है और चिकनगुनिया वायरस होता है। तो इन दोनों को आपको कंपेयर करना है। तो सिंपल वायरल फीवर जो होगा उसमें कभी भी आपको तेज़ बुखार नहीं आएगा, और उसके साथ कोई एसोसिएटेड फीचर होगा, जैसे आपको ठंड लगेगी, आपके थोड़े से आपको कोराइजा होगा, नाक बहेगी आपकी, आपके गले में इरिटेशन होगा, इस तरह के सिम्टम्स होंगे, तो वो जनरली वायरल फीवर होता है। और ये यूजुअली क्या है, 2-3 दिन तक आप सिंपल अगर फीवर हो रहा है तो पैरासीटामोल लेंगे, गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे, जैसे गर्म चाय ले ली, गर्म कॉफ़ी ले ली, गर्म सूप ले लिया, इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो 2-3 दिन में ये सेटल डाउन यूजुअली हो जाता है। इसका दूसरा स्पेक्ट्रम जो है, अगर हम वायरल फीवर दूसरे की बात करें, तो एक डेंगी और एक होता है आपका चिकनगुनिया। तो डेंगी और चिकनगुनिया के अंदर जो बेसिक फीचर डिफरेंस होता है, डेंगी फीवर में आपको जो फीवर होता है वो तेज, काफ़ी तेज़ फीवर आता है, आपकी आंखों के पीछे, जैसे आप अपनी आंखों को घुमाएंगे, अगर आप आंखें बंद करके अपनी आंखों की पुतलियों को घुमाएंगे तो आपकी आंखों के पीछे आपको हल्का सा दर्द महसूस होगा, ये एक इसका काफ़ी टिपिकल फीचर होता है। हल्की सी रैश आपके शरीर पर आपको देखने को मिलेगी 3रे 4थे दिन। रैश आपको चिकनगुनिया में भी देखने को मिलती है, लेकिन वो उसमें अर्ली रैश होती है। दूसरा जो फीचर जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो चिकनगुनिया फीवर होता है उसमें आपके जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे किसी जगह पे बैठ गए और आप मूव नहीं कर पा रहे हैं, आप उठ के जा रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है जैसे ओल्ड एज में कई बार जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी कमर झुक जाती है, हाथ झुक जाते हैं, तो वो अपनी कमर को सीधी नहीं कर पाते।
0: जॉइंट्स में ज्यादा
1: जॉइंट्स जो स्टिफनेस की
0: इफेक्ट
1: होती
0: होते
1: है
0: हैं।
1: वो चिकनगुनिया में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। फीवर उसमें भी आता है लेकिन उतना तेज नहीं आता जितना आपको डेंगी में आता है। डेंगी में उसके अपोजिट क्या होता है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, उसमें बोन्स और मसल्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, मतलब आपकी बोन्स ऐसे लगेगी जैसे आपको किसी ने कंबल में लपेट के पीटा हो, तो आपको पूरा बदन टूटेगा लेकिन आपके जॉइंट्स इतने स्टिफ नहीं होंगे,
0: जी
1: और
0: जी
1: फीवर आपको देखने को मिलेगा, आपकी आंखों के पीछे दर्द होगा और थोड़ी सी रेस्ट देखने को मिलेगी। तो ये बेसिक आपका डिफरेंस है डेंगी और चिकनगुनिया फीवर के अंदर।
0: जी मैम हमारे साथ हैं, तनु मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप इसी तरह से केसेस
1: जी
0: डील कर रहे हैं। हाँ जी,
3: तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू, चिकनगुनिया और कॉमन वायरल फीवर में जो डिफरेंसेस हैं वो सारे लोगों को ध्यान रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मैं इसमें ये ऐड करना चाहूंगी कि वैसे तो आप जो भी बुखार होगा आप सिर्फ पैरासीटामोल लें, कोई और दवाई ना लें, क्योंकि डेंगू डेंगू के अंदर में अगर आप कोई और दवाई लेते हैं, जैसे लोग आइबुप्रोफेन ले लेते हैं

0: कोई एंटीबायोटिक या ऑफ द काउंटर कोई दवाई लेते हैं तो वो नुकसान कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर में आपके चांसेस हैं कि कहीं पे आपके प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। उसी के साथ में डेंजर साइंस थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे 3-4 दिन में अगर वायरल है तो वो अपने आप निकल जाएगा, लेकिन अगर डेंगी है तो उसमें डेंजर साइंस यूजुअली ये होते हैं कि 7 डेज तक वायरस आपकी बॉडी में रहता है, और 7 दिन के बाद अगर आपको फिर भी बुखार है और आप ठीक नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी डायग्नोसिस डेंगी की बनी हुई है ऑलरेडी, आपने टेस्ट करा लिया है, तो 2रे से 3रे दिन अगर आप टेस्ट कराएंगे तो आपको डायग्नोसिस मिल जाएगी। तो अगर आपको बुखार बना हुआ है या पेट में दर्द होता है या वॉमिटिंग होती है या रैशेज आते हैं या कहीं से ब्लीडिंग होती है, तो वो डेंजर साइंस हैं। तो जो कहते हैं ना कि डेंगू बुखार खतरनाक हो सकता है, तो ये खतरनाक होने के फीचर्स हैं जो लोगों को ध्यान रखना चाहिए, बुखार उतरने के बाद भी। तो कोई जरूरी नहीं है कि बुखार रहेगा, बट पेशेंट ऐसा कहेगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, फीवर भी नहीं है, कुछ अपेरेंटली दिख नहीं रहा पर ठीक नहीं लग रहा है, खास करके अगर पेट में दर्द है, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं जिनको लोगों को सोचना चाहिए। और दूसरा, चिकनगुनिया में थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, इससे नॉट डिसेबिलिटी बट लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी होती है। ये पेन जो है काफी दिन तक रहता है, कई कई केसेस में देखा गया है कि ज्वाइंट पेन्स आपका एक एक साल तक परसिस्ट करते हैं, तो ये भी ध्यान रखने की बात है। इसमें घबराना ये नहीं है कि ये हमें ही क्यों हो रहा है, ये जिसको भी चिकनगुनिया होगा तो उसको ये परेशानी होगी, लेकिन हमें ऐसी बीमारियां करनी ही क्यों है, ये आपका जो एक प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये इजिली प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं, और ये अपना ख्याल रखना है, अपने घर का ख्याल रखना है, अपने घर के आसपास का ख्याल रखना है, तो ये इस तरह की बीमारियां होंगी नहीं। तो ये जरूरी है कि लोग अपने आप प्रिकॉशंस लें और पर्सनल प्रोटेक्शन।
1: बिल्कुल सही आपने कहा कि हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं, मकसद यही है कि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें और ये सारी बीमारियां आपको ना हो, लेकिन वो यही बात है कि जब तक हमें पता ना हो, अवेयर ना हो, तब तक हम उस चीज के लिए उतनी जानकारी नहीं समेट पाते हैं। तो बिल्कुल ये सही माध्यम है, यहां पर आप पूछ भी सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं, और मैसेजेस भी बहुत हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हम एक गाना सुनकर वापस आते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और फिर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात कर रहे हैं इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन, बारिश के दौरान होने वाली संक्रमण और बीमारियों के बारे में। और हमारे गेस्ट हमारे रेडियो डॉक्टर्स हैं डॉक्टर विष्णु गुप्ता और डॉक्टर तनु जैन। हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। हेलो।
1: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं, अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से ही बोल रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या प्रश्न है आपका?
1: हाँ, पहले तो शालिनी मैम को शालिंदा से ही नमस्कार।
0: जी नमस्कार, स्वागत।
1: और दोनों डॉक्टर साहिबान को भी तहे दिल से नमस्कार और आभार।
0: नमस्कार
2: नमस्कार।
1: मेरे दो सवाल हैं।
0: जी
1: एक मिनट है और एक सवाल है। पहले मैं सवाल पे आता हूँ। वैसे तो मुझे जो है ना श्वसन एलर्जी है और स्किन से मुतालिक भी एलर्जी है, तो जब भी कोई टेस्ट होती है घर में तो मैं छींक आने शुरू हो जाती है, तो साफ में परेशानी होती है। और जब घर की सफाइयां करता हूं मैं तो मेरे को खुजली शुरू हो जाती है शरीर में। तो अब मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि इसके लिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक गंगोत्री का पानी और वर्षा का पानी, ये दो पानी सबसे शुद्ध पानी माने जाते हैं या कहा जाता है, तो क्या इसको इस्तेमाल करने के बाद हमें कॉर्पोरेशन के पानी से भी नहाना चाहिए? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा मिथ ये है कि जब हम लोग नहाते हैं और उसी वक्त हम कपड़े भी धोते हैं, तो मैंने तरीका बताया है कि मैं जब नहाता हूँ और उसी वक्त अपनी शरीर की सफाई और कपड़ों की सफाई की और फिर उन्हीं कपड़ों को मैं पहन लेता हूँ और पंखे के नीचे खड़ा हो जाता हूँ, 15 मिनट में कपड़े सूख जाते हैं, तो मुझे मेरी जो ये प्रॉब्लम मुझे इसमें रिलीफ मिल रहा है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? प्लीज गाइड करें, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: चलिए धन्यवाद। प्रश्न थोड़े अलग से प्रश्न है डॉक्टर साहब, बताएं क्या बताना चाहते हैं।
2: देखिए, आपका जो मिथ है पहले मैं उसका जवाब देना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि आप जब नहाते हैं उसी के साथ कपड़े धोते हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई बुराई नहीं है अगर कोई नहाते वक्त कपड़े धोता है तो। जो गलती आप जो करते हैं वो ये है कि आप जैसे ही कपड़े धोते हैं उनको सुखाने के बजाय उनको पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाते हैं, ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। वो इसलिए कि जैसे कि हमने अभी बात करी कि बारिश के सीजन के अंदर अगर आप गीले कपड़े पहनेंगे तो वो कुछ ऐसी जगह होती है हमारे बॉडी के अंदर जहाँ पे वो पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पसीने के रूप में या फिर आप ये कहें कि वो नमी के रूप में फंगल इन्फेक्शन को इनिशिएट कर सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप गीले कपड़े पहन के पंखे के नीचे खड़े हो जाएं। दूसरा, जैसे कि हमने हमसे किसी श्रोता ने भी पूछा था कि मैं बारिश में भीग जाता हूं, तो हमने उसे सजेस्ट किया था कि कभी भी आप बारिश में भीगते हैं तो घर आके सबसे पहले अपने गीले कपड़े चेंज कर लीजिए और अपने बदन को एक सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए और कुछ गर्माहट वाली चीज़ लीजिए। तो अगर बारिश के मौसम में अगर आप

0: गीले कपड़े पहनेंगे और पंखे के नीचे खड़े रहेंगे तो नेचुरल है कि आपको कोई बीमारी पकड़ भी सकती है और आपको फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना भी रह सकती है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बात कर रहे थे इस गाने से पहले कि कुछ वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती हैं और वायरल के बारे में आपने बताया था। मैं जानना चाह रही थी डॉक्टर तनु आपसे कि मलेरिया भी बहुत फैलता है लेकिन उसका जिक्र अभी तक हमने नहीं किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी तो मलेरिया जो है उसका बुखार थोड़ा सा फर्क होता है और उसमें एक हॉट फेज होता है जहाँ पे काफ़ी हाई ग्रेड फीवर आता है और उसको चिल्स के साथ आता है, काफ़ी तेज़ ठंड लगती है और फिर फीवर आता है और फिर प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है कि पहले आपको बहुत तेज़ ठंड लगेगी। तो वो ठंड बहुत तेज़ का क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक कंबल पहन लें या हल्का चादर डाल लें। आपके ऊपर एक दो तीन कंबल इस मौसम में भी अगर डालेंगे तो आप कहोगे जी मुझे ठंड लग रही है अभी भी। तो वो चिल्स कहते हैं हम उसको, वो बहुत कस के चिल्स आती हैं और फिर बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है और उसके बाद आप सारे कंबल उतार दोगे आप, क्योंकि आपको पसीना स्वेटिंग आके वो उतरता है बुखार। तो ये एक टिपिकल सिस्टम होता है। इसमें भी थोड़ा हेडेक ज़्यादा होता है, मसल पेन ज़्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है और यूजुअली ये सिम्टम्स जब होते हैं तो हम मलेरिया सस्पेक्ट करते हैं। ये मच्छर के काटने के 7 से 10 या 15 दिन बाद इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और अगेन इसका मच्छर जो है उसको एनोफिलीज मस्किटो कहते हैं और ये पनपता है जो आपका गंदा पानी है ठहरा हुआ, जैसे नाले हो गए, ड्रेन्स हो गए या सॉलिड जो आपके घर के आसपास गंदगी पड़ी है उसके अंदर पानी बहुत दिन से पड़ा हुआ है और ठहरा हुआ पानी है, तो ये मच्छर भी वहाँ पे पनपता है। और ये मच्छर यूजुअली शाम के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में काटता है। खास करके इसके प्रिकॉशंस होते हैं कि आपको रात में सोते वक्त मच्छरदानी के अंदर सोना है, ये बहुत ज़रूरी है और ये आदत है जो सारे लोगों को लगा लेनी चाहिए अपने घरों में मच्छरदानी। दूसरा जो है शाम होते होते अगर आप लोग के घरों में जाली वाली खिड़कियां हैं तो उनको ज़रूर बंद कर दें और मच्छर ताकि अंदर ना आ पाएं। और अगर नहीं है तो हमारा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप अपने घर में जाली की खिड़की दरवाजे ज़रूर रखें जिनको कि शाम होते ही बंद कर दें जिससे कि मच्छर अंदर ना आए। और जो इस वाले सीजन में अगर हो सके तो दोपहर में भी जब आप सोएं तो मच्छरदानी के अंदर सोएं क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। खास करके प्रिकॉशंस लेने हैं कि जो एल्डरली हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं उनको जरूर मच्छरदानी में सुलाएं और जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अपने आप को पूरा प्रोटेक्ट करें और मच्छरदानी के अंदर सुलाएं क्योंकि इस तरह की बीमारियां जब गर्भवती महिला में होती हैं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं। तो सब लोग प्रिकॉशंस लें, एक तो सफाई रखें, किसी भी तरह का जल भराव आसपास ना होने दें, दूसरा जो है पूरी बहाके और पूरे कपड़े पहने और मच्छरदानी के अंदर सोएं। और जब भी आपके यहाँ स्वास्थ्यकर्मी आए कोई स्प्रे करने या घर के अंदर या घर के बाहर तो उनका पूरा सहयोग करें। तो ये सब चीजें करेंगे तो फिर ये इस तरह की बीमारियों से हम छुट्टी पा सकते हैं।
1: खासतौर पर हम प्रिकॉशंस पर आज बार बार बात करेंगे कार्यक्रम के थ्रू आउट क्योंकि जैसा मैम ने भी कहा कि ये प्रिवेंटेबल है, प्रिकॉशंस ली जाए अगर सही तरीके से हम ध्यान रखें तो ये नहीं होंगी बीमारियां। और ये मैसेज आया है अनूप कुमार जी का रांची से कि प्लीज टेल अबाउट स्प्रिंग एलर्जी एंड क्योर। तो डॉक्टर विष्णु, स्प्रिंग एलर्जी क्या इस मौसम में होती है?
0: देखिए स्प्रिंग एलर्जी जो है ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस, इसको हम हे फीवर भी बोलते हैं, इसका नाम है। और ये मोस्टली होती है जैसे ही आपकी सर्दी जाने लगती है और उसके बाद में जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें ये होता है। तो उस वक्त क्या होता है कि सर्दियां जाती हैं तो पेड़ पौधे हैं वो खिलते हैं, उनमें फूल निकलते हैं थोड़े से, और घास है वो एक नई करवट लेती है, पत्ते शेड होते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि हवा में पोलन ग्रेन्स फैल जाते हैं, छोटे छोटे कण आपने देखे होंगे। जैसे ही सर्दियां जाती है और फरवरी और मार्च के स्टार्टिंग में हवा में छोटे छोटे छोटे छोटे कण तैर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम होती है उसे जो स्प्रिंग्स एलर्जी बोलते हैं वो होती है। और उसका कारण
1: रेस्पिरेटरी
0: इलनेस है। और वो आपको केवल रेस्पिरेटरी नहीं, जैसे आपकी आंखों में आ गए तो आपकी आंखों के अंदर कंजक्टिवाइटिस या आपकी आंखों में पानी आने लगेगा, नाक में चले गए तो लगातार छींके आने लगेगी, आपकी स्किन में, जैसे किसी किसी को स्किन की प्रॉब्लम होती है तो आपके स्किन पे अगर वो कण बैठ गए तो उस जगह पे आपको खुजली होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स डिपेंड करता है कि वो जो एलर्जन है वो कहाँ पे जाके लैंड किया है।
1: अच्छा, तो ये खास तौर पर, लेकिन आपने बोला कि सर्दी और मौसम बदलाव के बाद,
0: बारिश के मौसम में तो हे फीवर या स्प्रिंग एलर्जी चली जाती है क्योंकि बारिश की बूंदों की वजह से जो कण होते हैं ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे पोल्यूशन चला जाता है बारिश के मौसम में, वैसे ही हे फीवर कम देखने को मिलता
1: मतलब है। जो भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो गए। सागर मखीजा जी हमसे पूछ रहे हैं विजयपुरा कर्नाटका से कि मेनी पीपल आर फेसिंग फ्लू लाइक इश्यूज ड्यूरिंग मानसून, हाउ इट कैन बी डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड इन मेनी स्टेट्स, कोविड इज ऑल्सो ऑन राइज, और एक क्वेश्चन और है कि वॉट प्रिकॉशंस यू कैन टेक सो दैट वी डोंट गेट एनी इन्फेक्शन ड्यूरिंग मानसून। तो हमने अभी तक यही सारी बातें की हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं सागर जी तो आपने सुन लिया होगा, अगर इसके अलावा भी आप कुछ जोड़ना चाहें आप लोग तो बताएं। वैसे तो ये बात हम अभी कर ही रहे थे,
0: फ्लू सीजन हर मौसम में जब भी मौसम बदलेगा फ्लू सीजन आएगा, तो कोविड भी एक तरह का फ्लू ही था, तो उसमें भी हमने कोविड पे जो विजय प्राप्त की थी वो सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों से प्राप्त की थी, या तो मास्क से और सोशल डिस्टेंसिंग पे। तो अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं आपको या आपके परिवार में या आपके किसी दोस्त को, तो उसको बोलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे और मास्क पहने। अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है और ये चीज आपको वरीसम कर रही है तो नियर बाय डॉक्टर से जरूर मिले
2: जी। ये मास्क के ऊपर मैं बोलना चाहूंगी, जो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि मास्क पहने, तो बाहर अगर आप कुछ और कंट्रीज में देखेंगे तो वहां पे लोग अपने आप मास्क पहनना शुरू कर देते हैं, उनको कोई बताता नहीं है। तो जब फीवर आपको खांसी जुकाम है तो टू अवॉइड कि दूसरे लोगों के तक पहुंचे तो मास्क पहने। और एक चीज जो प्रिवेंशन के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हाथ धोना समय समय पे, चाहे वो रेस्पिरेटरी इलनेस हो, चाहे कंजंक्टिवाइटिस हो जो आंखों में हो जाती है, चाहे आपकी फूड बॉर्न इलनेस हो, वाटर बॉर्न हो, जो ये सब फैलती हैं बीमारियां, अगर सब लोग हाथ धोने का ध्यान रखेंगे कि प्रिकॉशंस लेंगे, और जो एक हमारा यूनिवर्सल हैंड वॉशिंग टेक्निक है कि कम से कम 20 से 30 सेकेंड तक हाथ को ठीक से धोएंगे साबुन से और साफ पानी से, तो बहुत हद तक इन सब बीमारियां जो एयरबॉर्न है, जो आपकी वायरल इन्फेक्शन है, उससे हम छुट्टी पा सकते हैं।
1: जी, ये बहुत जरूरी बात है ध्यान रखना कि सफाई पे भी बहुत जोर है। और एक ये मैसेज हमारे पास आया है, श्याम मित्तल जी लिख रहे हैं रोहिणी से कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग वैक्सीन एंड व्हेन इट हैज टू बी टेकन। और धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा है। करंट इश्यूज और जो खास तौर पर जो मौसमी बीमारियां उस पर जो हम कार्यक्रम लेते हैं उसकी ये तारीफ कर रहे हैं। तो धन्यवाद श्याम जी, आप इस तरह से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम के साथ। क्या कुछ वैक्सीन से इनको बचाया जा सकता है डॉक्टर साहब?
0: देखिए, अगर हम मौसमी बीमारियों की बात कर रहे हैं बारिश से रिलेटेड, तो इसमें जो प्रोमिनेंट बीमारी है वो टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर के लिए इफेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट के अंदर। पहले कॉन्जुगेट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन हम लगाते थे जो 2 साल से बड़े बच्चों को लगती थी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले एक नई वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस हुई है, उसकी सिंगल डोज ही लगती है, जो TVC टाइफीवार वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं, उसकी सिंगल डोज लगती है और 6 महीने से लेके आप 45 साल तक के किसी भी उम्र के व्यक्ति को लगा सकते हैं और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है इससे।
1: अच्छा, टाइफाइड
0: के लिए
1: जी।
0: पहले पहले 3 तरह की वैक्सीन और भी होती थी, एक ओरल वैक्सीन भी आती थी टाइफाइड के लिए, लेकिन वो अब ज्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि जब से नई वैक्सीन आई है, और दूसरा क्या है कि उसकी सिंगल डोज लगती है तो इसलिए वो पॉपुलर ज्यादा है। हालांकि अभी हमारे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो इंक्लूड नहीं हुई है, पर ये प्राइवेटली काफी अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर और आप इसे लगा सकते हैं। अगर स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर के अंदर इस तरह की बीमारियां बार बार देखने को मिलती हैं,
1: तो आप रिकमेंड करते हैं कि इस तरह की लगा लेनी चाहिए। पर उसको 45 ईयर्स तक को ही क्यों आपने माना है?
0: तब तक इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है,
1: उसके बाद लगाने से फायदा नहीं है।
0: लंबा कोई मतलब मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं वो आपके अवॉइड हो चुके होते हैं।
1: ओके, तो मैक्सिमम जो उसका फायदा है वो 45 ईयर्स तक ही होता है। अच्छा, एक हमारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है इस समय। हेलो,
3: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, जी अपना नाम बता दीजिए।
3: जी, मैं नादिन भाई रेडियो वाला।
1: जी हाँ, प्रश्न बताए।
3: जी मैं मैम से सर से जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि छोटे बच्चे तो मानते ही नहीं है बर्फ ऋतु में, बारिश में नहाते रहते हैं छोटे बच्चे, भीगते रहते हैं, इनकी देखभाल कैसे की जाए, इससे कोई फीवर वगैरह की तकलीफ न आए।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल यही एक प्रश्न मेरे पास मैसेज के माध्यम से भी आया हुआ था जो मैं अगले लेने वाली थी, तो मैं उसको भी पढ़ देती हूँ। नरदेव सिंह चौहान जी ने लिखा था कोटद्वार उत्तराखंड से कि सभी को नमस्कार, और बरसात में बच्चे शौक से भीगते हैं और ठंडा गर्म खा पी लेते हैं, तो बच्चों के लिए खास तौर पर क्या आप लोग बताना चाहेंगे?
0: देखिए, प्रिकॉशन चाहे छोटा है या बड़ा है दोनों के लिए समान है। छोटे बच्चे क्योंकि बारिश को ज़्यादा पसंद करते हैं, बार बार जाके बारिश में भीगते हैं, तो कोशिश करिए कि उसका बारिश का जो स्पेल है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। मतलब 10 मिनट 5-10 मिनट आप भीगते हैं तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक बारिश में ना भीगें। अगर बच्चे बारिश में भीगते भी हैं तो उसको तुरंत जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश से जैसे ही बाहर आता है, उसके गीले कपड़े आप तुरंत उतार दीजिए। उतार के उसके पूरे शरीर को गर्म टॉवल से या टॉवल से मोटे टॉवल से पोंछिए ताकि पानी ना रहे, और उसके बाद में उसको कुछ जैसे हल्का सा गर्म दूध या गर्म चाय इस तरह की चीजें उसको दीजिए। ये सिंपल प्रिकॉशंस है जो सबके लिए बराबर है।
1: तो यहाँ पर एक ब्रेक लेकर आते हैं, एक गाना सुनते हैं और आपके प्रश्नों का हमें इंतजार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप इन्फेक्शंस ड्यूरिंग मॉनसून सीजन पर कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे विशेषज्ञ

0: आप हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और आज बात हो रही है विभिन्न ऐसी बीमारियों के बारे में जो खास तौर पर बारिश के मौसम में हम देखते हैं और उसके बारे में काफी बातें हम डॉक्टर साहब से जान चुके हैं, किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कैसे बचाव किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे, आगे भी करेंगे और कर भी चुके हैं। लेकिन कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं जिसमें, जैसे डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं किसी भी बीमारी की तो उसमें हम बोलते हैं हर ऋतु में एक खान पान की बात जरूर होती है, लाइफ स्टाइल की बात जरूर होती है। हमारे कार्यक्रम में उसकी कोशिश करते हैं कि उसके बारे में भी अपने श्रोताओं को बताएं। तो क्या खास तौर पर बारिश के मौसम में, मानसून सीजन में, कुछ ऐसी प्रिकॉशंस खाने पीने से रिलेटेड लेनी चाहिए? जैसे एक प्रश्न है मैसेज के माध्यम से सरोज मल्होत्रा जी का आया है साकेत मेरठ से, कि क्या मानसून में दही खानी चाहिए या नहीं और डाइट क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा बताएं।
1: देखिए, पहले तो ये मिथ इनका दूर कर देता हूं कि बारिश क्या किसी भी मौसम में आप दही खा सकते हैं। दही खाने के साथ, दही खाने से कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज जो इन्होंने पूछी थी कि बारिश में खान पान के लिए हमें क्या स्पेशल प्रिकॉशन और क्या ध्यान रखना चाहिए, तो आपको, आपने देखा होगा कि बारिश के दिनों में आपके घर के अंदर कोई सामान होता है, फ्रिज के अंदर भी रखा होता है, लेकिन वो जल्दी खराब हो जाता है। बारिश में आपने देखा अचार होता है, अचार में फफूंदी लग जाती है, कोई जैली पड़ी होती है जैसे बच्चे खाते हैं, जैम पड़ा होता है, जैम के अंदर एक व्हाइट कलर के ऊपर लेयर जमने लग जाती है, फंगस लग जाती है ना। पापड़ पड़े होते हैं, पापड़ अगर एक दो, मतलब 15 दिन भी अगर आप फ्रिज में उसको ह्यूमिडिटी मिल जाती है तो उसके अंदर भी फंगस लग जाती है। तो बेसिकली क्या होता है कि बारिश के दिनों में फूड जो इंग्रेडिएंट होता है, फूड जो होता है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब जल्दी होता है। तो अगर आप खराब फूड को अगर खा लेंगे, जैसे बासी फूड है, अगर उसको अगर आप खाएंगे तो नेचुरल है कि वो आपकी बॉडी में जाएगा और आपको बीमार करेगा ही करेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या होती है कि हमने शुरुआत में भी बताया था कि बारिश के दिनों में, बारिश में नालियां होती हैं, आपके ड्रेन्स होते हैं, ये ओवरफ्लो हो जाते हैं, और कई जगह क्या होता है कि आपका जो पोटेबल वाटर होता है, जो हमारे घर में पीने के लिए जो पानी सप्लाई होता है, वो कई बार मिक्स हो जाता है आपके सीवर लाइन से, या कहीं भी छोटी सी लाइन में आपका, मतलब
0: कहीं ब्रेकेज है
1: उसमें आपका मिक्स हो गया और वो पानी आपके घर के अंदर आ गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया, तो नेचुरल है कि वो आपको बीमार करेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, अगर आपको बचाव करना ही है तो बारिश के दिनों में जो आप पानी यूज करते हैं उसे उबाल के ठंडा करके फिर यूज करें। खाना कभी भी बासी खाना ना खाएं और ताजा शुद्ध घर का बना हुआ खाना खाएं। तीसरी चीज, जैसे हमने कई बार देखा है कि स्ट्रीट पे कई बार स्ट्रीट फूड होता है, गोलगप्पे होते हैं, छोले भटूरे होते हैं, ये स्ट्रीट फूड जो लोग खा लेते हैं, तो बारिश के दिनों में इन्हें अवॉइड करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे कई लोगों की आदत होती है कि बाहर जो कटे हुए फल मिलते हैं, ठेले लगा के बैठे रहते हैं, वो 3-4 तरह के फल काट के और आपको दे रहे होते हैं, तो बारिश के दिनों में स्पेशली इस तरह के फूड को अवॉइड करना चाहिए।
0: तो मतलब मेन यही है कि घर का बना हुआ
1: साफ खाना, ताजा खाना वो खाना,
0: तो ये हर मौसम में ही बोला जाता है, लेकिन इस मौसम में थोड़ा सा ज्यादा और अगर एहतियात ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वही आपने जैसे बताया ह्यूमिडिटी है तो उसमें ग्रोथ ज्यादा जल्दी होती है। डॉक्टर तनु जी, एक प्रश्न ये आया जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। अनु कुमार जी लिख रहे हैं रांची से कि एक मलेरिया इराडिकेशन कार्यक्रम है 2030 तक इसको इराडिकेट करने का, तो वो बताएं। और साथ ही मैं चाहूंगी कि और भी सरकारी जो प्रयास हो रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के चलते कि किस तरह से इनको खत्म किया जाए, तो उन प्रयासों के बारे में थोड़ा सा बताएं।
2: जी, तो ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कंट्रोल, और ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है। और इस इंस्टीट्यूट में 6 वेक्टर बॉर्न बीमारियां जो मेजर हैं हमारी कंट्री में, उससे उसके तहत सारी पॉलिसी बनाई जाती है और प्रोग्राम पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें 3 मेजर बीमारियां जिस पे हम थोड़ी चर्चा भी कर चुके हैं, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया आती हैं। और इसमें जो मलेरिया का इन्होंने गोल पूछा है वो SDG गोल है एलिमिनेशन का, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक गोल होता है। तो अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट इस साल में आई थी 2025 में, उसमें ऑलरेडी हमारे कंट्री ने जो पैरामीटर्स थे अचीव करने के 2025 तक, वो अचीव कर लिए हैं। 80% से ज़्यादा केसेस में डिक्लाइन आया है 2015 से 2025 के बीच में, और डेथ्स में भी लगभग 80% के ऊपर डिक्लाइन आया है, कम हुई है हमारे यहाँ पे मृत्यु भी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इस कंट्री के लिए। लेकिन अभी जो डेफिनेशन के हिसाब से हमको 0 केसेस पे जाना है, तो ये मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो जिले हैं 160 जिलों में 3 साल से पिछले जीरो केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है देश की, और ये अथक प्रयास हैं भारत सरकार के, जिसके चलते ये सारी हमें अचीवमेंट्स हो पा रहे हैं। और इसी के तहत में जो नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन प्रोग्राम है वो सुचारू रूप से चलता है, और स्टेट्स की सहायता से जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमारा, जो एक बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके तहत PIP जो होती हैं या प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान की जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें स्टेट के साथ बैठ के पॉलिसी बनाई जाती है। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक, विलेज लेवल तक क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए प्रोग्राम किया जाता है, और उसके लिए बजट भी प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को। तो कौन सी नई दवाइयाँ आई हैं, कौन से हमें किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी है, जब अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटीज़ क्या करनी है, मीडिया एक्टिविटीज़ क्या करनी है, इन सब पे विचार करके और उसके लिए फंडिंग की जाती है। तो ये तो एक मलेरिया का प्रोग्राम हुआ। इसी तरह डेंगू चिकनगुनिया में भी रहता है। दो और बीमारियाँ हैं जो थोड़ी सी टच करना चाहूँगी मैं, हाथी पाँव जिसे लिम्फेटिक फाइलेरियसिस कहते हैं, वो भी हमारे देश में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और उसके लिए भी एक मच्छर ही जिम्मेदार है। आपको ये भी बहुत सारे श्रोताओं को शायद नहीं पता होगा कि हाथी पाँव अगर आपने अपने आसपास देखा है, या हाइड्रोसील जो होती है उसको अगर आपने कहीं पे देखा है, तो वो मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है, जो लोगों को नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कोई चोट लगी है या कोई घाव हुआ था, कोई जख्म हुआ था जिसकी वजह से हमें ये हो गया। कुछ लोग तो इसको जो है सोचते हैं कि ये कोई अभिशाप है हमें दिया हुआ। तो ये भी एक मच्छर जिसे हम क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं, और शाम होते ही आप देखेंगे कि ये न्यूसेंस मस्किटो भी कहलाता है, क्योंकि ये शाम होते ही आपका पूरे में घूमने शुरू कर देता है, और इसके काटने से इतनी भयंकर बीमारी होती है और उसका कोई इलाज भी नहीं होता। अगर आप 25-30 साल की उम्र में किसी को हो जाए, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उनके साथ वो बीमारी रहेगी। अगर स्टेजेस बढ़ गई, इसमें पैर फूल जाता है और पैर के अंदर में जो लिम्फेटिक्स होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज बंद हो जाती है और पैर का साइज बढ़ जाता है। जैसे हाथी पांव इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हाथी का पांव होता है उस तरह होता है, उसके अंदर फोल्ड्स आ जाते हैं और फोल्ड्स के अंदर में इन्फेक्शन होता है। तो ये काफ़ी भयानक बीमारी होती है, और इसके लिए भी अब ये जो गोल है हमारा 2027 तक हमको less than 1% माइक्रोफाइलेरिया रेट करना है। ये एक छोटा सा पैरासाइट होता है जो मच्छर काटता है तो आपके ब्लड में छोड़ जाता है, और वो बड़ा पैरासाइट, बड़ा एक वर्म बन के आपके लिम्फेटिक्स में पैर के पहुँच के वहाँ पर बैठ जाता है। एक और बीमारी है जो कालाजार है, और उसके लिए अच्छी खबर ये है जिसको जो कि चार ही अभी राज्यों में है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, और उसमें भी सब जगह नहीं है, 54 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें है और लगभग 633 ब्लॉक्स हैं। तो ये बीमारी को 2023 में हम एलिमिनेट किए हैं। इसका एलिमिनेशन का गोल है कि एक केस से कम हो पॉपुलेशन में 10 लाख में, तो वो गोल हम अचीव कर चुके हैं, और अगर ये हम सस्टेन कर गए हैं तो अगले साल हम लोग WHO को डॉजियर के लिए अप्लाई कर सकेंगे और ये बीमारी हमारे देश से एलिमिनेटेड हो जाएगी। और एक आखिरी जो बीमारी हम लोग देखते हैं वो जैपनीज एनकेफलाइटिस है, या दिमागी बुखार जिसे कहते हैं। ये भी कुछ 20 राज्यों तक ही सीमित है, और इसके अभी तक बहुत ज़्यादा केसेज अब नहीं आते, पहले बहुत आते थे, लगभग 1000 से 2000 केसेज के बीच में हर साल रिपोर्ट होते हैं। बट इसकी केस फेटैलिटी बहुत हाई है, मतलब डेथ्स बहुत होती, अगर जो केस जिसको हो जाए उसमें करीब 10 से 15% लोगों में डेथ्स होती हैं। पर इसके लिए खुशखबरी यह है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और ये अवेलेबल वैक्सीन इन सब राज्यों में जो प्रभावित राज्य हैं उसमें यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर बच्चों को दी जाती हैं 2 डोजेस, और जहां एडल्ट केसेस हैं वहां पे एडल्ट वैक्सीनेशन भी एक प्रोजेक्ट मोड में हम लोग करते हैं। तो ये सारे
0: एडल्ट्स को भी लगाई जा रही है, लेकिन सबको नहीं, आप बोल रहे हैं उस
2: पर्टिकुलर जी, जहां पे एडल्ट्स में है। जो यूजुअली क्या होता है, जहां पे चाइल्डहुड में वैक्सीन हम 2 डोज दे रहे हैं उसमें देखने में ये आता है कि कुछ जगहों पे 15 साल के ऊपर के लोगों में ज्यादा इन्फेक्शन दिखने लगता है, तो फिर हम वहां पे एक कैंपेन मोड में एडल्ट वैक्सीनेशन भी करते हैं। तो ये सारे प्रयास हैं जो इन सब बीमारियों के अराउंड हमारे चलते हैं, और इसमें जो है हमारे माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के और सचिव समय समय पे हमारा रिव्यू करते हैं, स्टेट्स का रिव्यू करते हैं, और ये सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर इसमें जनता का सहयोग, जन भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारियां ऐसी हैं कि जब तक आप खुद प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, घर के अंदर पानी भरा हुआ है, बहुत मुश्किल है कि सरकार आपके घर तक पहुँच के पानी ड्रेन करे। तो हमारी सबसे फिर से अपील है कि बहुत ही ज़रूरी है कि अपने घर के चारों तरफ और पर्सनल प्रिकॉशंस, जन भागीदारी और जागरूकता, ये एक दो चीज़ों का बहुत इसमें सहयोग हम लोगों को, सरकार को चाहिए रहता है।
0: जी, सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। बहुत सारे, बहुत विस्तार से आपने बताया कि सारी बीमारियों को एक एक लेकर और किस तरह से हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमें

0: पहुंचना है और कैसे पहुंचना है। लेकिन यही जैसा आपने कहा कि जन भागीदारी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, उसके बिना इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो यही इस कार्यक्रम का भी आज उद्देश्य है कि आप इस चीज को समझें कि किस तरह से हम इसमें अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं और किस तरह से बचाव या उपचार की दिशा में हम भी अपना एक कदम बढ़ाकर सरकार को सहयोग कर सकते हैं। एक मैसेज में आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर जो हम वैक्सीन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, टाइफाइड की वैक्सीन के बारे में आपने जो बात की थी उससे रिलेटेड ये मेरे पास प्रश्न है। इन्होंने लिखा है कि मैं 46 ईयर्स की फीमेल हूं और मुझे टाइफाइड जब हुआ था फर्स्ट टाइम तो मैं 43 ईयर्स की थी और आज मुझे और 45 ईयर्स पे मुझे दोबारा हुआ, यानी 2 साल बाद इनको दोबारा हुआ और दोनों बार डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया कि आप वैक्सीन लगाएं। ही ऑल्सो आस्क्ड टू टेक अ 19-डे इंजेक्शन कोर्स। शुड आई टेक वैक्सीन एंड एनी सच इंजेक्शन, इफ नो देन हाउ टू प्रिवेंट फ्यूचर रीअकरेंस, ये उन्होंने जानना चाहे।
1: देखिए 45 साल जो हमने उम्र बताया था ना, वो कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि मतलब 45 से अगर आप ऊपर हैं तो आपको वैक्सीन नहीं लगती, ऐसा कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। 45 के ऊपर भी आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, पर यूजुअली क्या होता है कि 45 के बाद में इम्यून रेस्पॉन्स थोड़ा सा स्लो हो जाता है। जब हम किसी को वैक्सीन लगाते हैं तो हमारा मोटिव ये होता है कि उस इन्फेक्टिव पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग इम्यून रेस्पॉन्स शो करे। तो 45 के बाद में क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन होती है तो उसका इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो स्लो होता है। पर लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको रिकरेंट टाइफाइड फीवर हो रहा है, टाइफाइड डायग्नोज हो रहा है, तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, इसमें कोई दोरा नहीं है।
0: अच्छा, तो लगवा
1: और सकते ये हैं। जो 90 दिन के इंजेक्शंस बोले हैं ये 19, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
0: 19 डेज
1: 90 ना 19 इंजेक्शंस, आई डोंट थिंक सो कि या तो ऐसा होगा कि ये मलेरिया अभी टाइफाइड से पीड़ित होंगी तो उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो टाइफाइड के इंजेक्शन जो होते हैं, टाइफाइड के लिए जो एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं उसको यूज करने के लिए वो बोल रहे होंगे, पर वैक्सीन 19 डेज तक नहीं लगती कभी भी।
0: जी जी, वैक्सीन वही है जो आपने अभी विस्तार से बताया,
1: वो 45 के बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन उसका जो रेस्पॉन्स होता है थोड़ा पुअर होता है, इसलिए उसको डिस्करेज करते हैं, अदरवाइज किसी में इंडिकेटेड है तो उसको लगा सकते हैं।
0: तो जैसे इनको बार बार हो रहा है टाइफाइड, तो क्या रीजन है कि किसी को वही बीमारी बार बार होती है? क्या इम्यूनिटी लो होती है या कोई उनके प्रिवेंशन की जो है सही तरीके से ये सावधानियां नहीं ले रही हैं?
1: पीछे मैं आपको एक बताता हूँ, एक टाइफाइड मैरी करके कंसेप्ट फेमस है पूरे वर्ल्ड में, एक टाइफाइड मैरी टर्म हम यूज करते हैं मेडिकल लिटरेचर में। बेसिकली मैरी एक फीमेल का नाम था जो आई, मुझे जितना याद है कि न्यूयॉर्क में एक हाउसमेड थी, तो उसको कभी भी टाइफाइड नहीं होता था और उस वो जिस जिस घर में भी खाना बनाती थी ना उसके पूरे फैमिली मेंबर्स को टाइफाइड हो जाता था। तो जब उसके बारे में स्टडी किया गया तो ये पाया गया कि वो जो लेडी थी, जो हाउसमेड थी, वो टाइफाइड कैरियर थी। तो उस टाइफाइड कैरियर से क्या होता था कि उसके थ्रू टाइफाइड पूरे फैमिली में फैल जाता था। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो और जब भी इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है तो वो टाइफाइड इनके बॉडी में अपीयर हो जाता हो। तो हो सकता है कि ये टाइफाइड कैरियर हो।
0: तो जो कैरियर होते हैं थ्रू आउट रहते हैं जिंदगी भर
1: वो कैरियर। कैरियर यूजुअली क्या होता है कि जो टाइफाइड का कैरियर होता है गॉल ब्लैडर में जाके बैठता है। तो इनका स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर, इस तरह का कल्चर हम करा के देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो पहले उसको ट्रीट करते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि अगर कोई कैरियर होता है तो उसको गॉल ब्लैडर सर्जरी कराने की भी एडवाइस करते हैं।
0: ओके, तो ये सारी चीजें भी ये टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, और हो सकता है इस तरह की कोई बात हो आपके साथ। तो चलिए, समय बहुत कम है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमें फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। एक और दिमाग में प्रश्न आ रहा है डॉक्टर तनु, कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत वेदर हम देख रहे हैं कि शिफ्टिंग भी हो रही है, सर्दी गर्मी बारिश, तो क्या इसका भी असर होता है?
2: जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा है, स्पेशली अगर हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की बात करें तो, क्योंकि मच्छर का एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से रिश्ता होता है और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में, लाइक 20 से 25 या 30 डिग्री तक, या ह्यूमिडिटी लेवल आपका 60-70% के करीब है, उसमें ये मच्छर की जो लाइफ साइकिल होती है वो छोटी हो जाती है और ये जल्दी जल्दी पनपना शुरू करते हैं। तो अब हाल में देखने में ये आया है कि जो बहुत हमारे ठंडे रीजन्स हैं वहाँ पे भी हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगा है या ह्यूमिडिटी बढ़ने लगी है, तो वहाँ पे भी ये बीमारियाँ अब होने लगी हैं। जैसे उत्तराखंड का एरिया ले लीजिए, तो ये शिमला का, ऐसे हिमाचल का एरिया ले लीजिए या कुछ नॉर्थ ईस्ट का एरिया ले लीजिए, जहाँ पे कि पहले ये बीमारियां नहीं होती थी बट होने लगी हैं जहाँ पे ठंडा टेम्परेचर। दूसरा, इस साल के लिए मैं खास करके बताना चाहूंगी, जैसे कि 2023-24 में भी एक ग्लोबल वार्मिंग वार्निंग आई थी कि एल नीनो आएगा, आप सब लोगों ने सुना भी होगा कि एल नीनो इस साल भी प्रक्रिया काफी स्ट्रांग एल नीनो का

0: इफेक्ट आएगा. उसमें क्या होता है, यूजुअली जो साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया की तरफ का रीजन है, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है, बारिश थोड़ी कम होती है. तो बारिश थोड़ी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, मानसून डेफिसिट होता है, तो छोटी छोटी जगहों पे पानी भरने लगता है. क्योंकि जैसे अगर पानी बहता हुआ है तो उसका लार्वा तो नहीं पनप पाएगा, लेकिन ठहर गया है पानी तो लार्वा पनपने का टाइम मिल जाता है. दूसरा, पानी की जहाँ जहाँ पे कमी होती है या सप्लाई में थोड़ा इशू आता है, वहाँ पे लोग स्टोर करते हैं वाटर को. और जब स्टोर करते हैं वाटर को और उसे ढक के प्रॉपरली नहीं रखते हैं, उसके अंदर भी ब्रीडिंग देखी जाती है कि मच्छर ब्रीड करने लगते हैं. और क्योंकि वो पानी तो जरूरी है, आपको रखना है, तो इस सीजन में ये बहुत जरूरी है कि स्टोर करके अगर पानी कोई रख रहा है तो उसको ढक के रखें, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे नहाने के लिए हो. अगर स्टोर करने का पानी है तो उसे ढक के रखें, नहीं है तो उसमें एक दवाई आती है वो भी डाली जा सकती है. लेकिन बेस्ट ये है कि आप उसको ढक के रखें और अपने आसपास कहीं भी देखें पानी इकट्ठा है तो उसको स्क्रब करके. एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो लार्वा होता है ना, आप पानी हटा देते हैं, जैसे आपने सपोजिंग बर्ड फीड है, कुछ लोग चिड़ियों को करने के लिए रखते हैं एक ट्रे, पानी निकाल देते हैं फिर सीधा कर देते हैं. अब उसके अंदर जब पानी भरेगा तो अगर उसके अंदर एग चिपका हुआ रह गया वो फिर से मस्किटो बन जाएगा. तो जिसको कहते हैं स्क्रब ड्राई, कस कस के ड्राई करना है और उल्टा करके रखना है ताकि उसके अंदर दोबारा पानी ना भरे. तो ये प्रक्रिया आप लोग अपने घर में, और अगर हफ्ता में एक बार आप एक ड्राइंग डे करके मनाएं और 1 घंटा या 2 घंटा अपना टाइम दें, अपने घर और अपने घर के आसपास देख लें कि कहीं पानी तो जमा नहीं है. और खास के ऊपर पानी की टंकियां जो आपकी हैं, कई बार बंदर आता है उसकी लिड खोल जाता है, कई महीनों हम भूल जाते हैं जाना, वहां पे बहुत ब्रीडिंग मिलती है. तो वो सब चीजें चेक
1: की सफाई,
0: जी टैंक्स की सफाई, लेकिन वो स्क्रब ड्राई करना है. और अगर बड़े टैंक्स हैं तो उसके ऊपर जाली से ढक के रखना है ताकि मच्छर ब्रीड ना करें, और कर जाएं तो एटलीस्ट बाहर आके किसी को बाइट ना कर सकें.
1: जी,
0: तो ये
1: बहुत सारी बातें हमने की कार्यक्रम में, समय कम बचा है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये जरूर जानना चाहूंगी डॉक्टर बिश्नोई की कौन सी ऐसी अलार्मिंग सिम्टम्स हैं जब ऐसा लगे किसी भी पेशेंट को या मरीज को कि मुझे इमिडिएटली अब जाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने, कई बार इसमें भी डिले हो जाता है.
2: देखिए, अभी डॉक्टर तनु ने भी बताया था कि जैसे डेंगू फीवर की अगर हम बात करें तो डेंगू फीवर में यूजली क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन बुखार चला जाता है. तो जैसे ही बुखार जाता है मरीज सोचता है मैं ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है. वो जो फेज होता है वो क्रिटिकल फेज होता है. तो आप ये देखिए कि डेंगू फीवर में आपको चौथे पांचवें दिन अगर बुखार चला गया है लेकिन उसके साथ अचानक से आपकी स्किन, जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए, या आपके पेट में दर्द होने लगे, है ना, या आपको वोमिटिंग होए, या आपका मेंटल स्टेटस अल्टर्ड हो जाए, तो ये डेंजर है. ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है. दूसरा, जितने भी हमने मौसमी बीमारियां बात करी उन सब में एक फीवर प्रोमिनेंट फीचर है. तो अगर आपका फीवर 3 दिन से ज्यादा है तो आपको उस केस में कभी भी आपको रिस्क नहीं लेनी है, तुरंत डॉक्टर से मिलना है और जो जरूरत की जांचें होती है वो करवाना है. तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कभी भी ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन खरीद के ना खाएं. कोई भी मेडिसिन हो, इवन पैरासिटामोल भी है तो वो किसी डॉक्टर की सलाह से ही लें. अगर आपको कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, अदरवाइज पैरासिटामोल के अलावा कोई भी दवाई आप डॉक्टर से पूछे बिना ना लें. और जो डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक या जो भी कोर्स दिया है उसको बीच में अधूरा ना छोड़ें. अगर आपको 7 दिन के लिए दिया है तो 7 दिन का कोर्स पूरा करें. कई बार क्या होता है कि तीसरे चौथे दिन हमें आराम पड़ जाता है तो हम उसका कोर्स छोड़ देते हैं. तो उससे क्या होता है कि अगली बार वही दवाई आपकी बॉडी पे असर नहीं करती, रेसिस्टेंस डेवलप कर लेती है. तो ये चीज आपको बिल्कुल हमेशा ध्यान रखनी चाहिए.
1: जी, तो बहुत सारी बातें आज इस कार्यक्रम में हमने जानी, और अब समय इतना ही है कि मैं धन्यवाद दूं अपने सभी साथियों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुना, हमारे साथ जुड़े, और हमारे गेस्ट का जिन्होंने समय निकालकर यहाँ आए हैं, इतनी ढेर सारी जानकारी आप सब तक पहुंचाई है. तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे डॉक्टर विष्णु गुप्ता, आप CMO एट CGHS हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में. डॉक्टर तनु जैन, आप डायरेक्टर हैं नेशनल सेंटर फॉर वेक्टरबॉर्न डिजीज कंट्रोल, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली में. और विषय रहा हमारा इन्फेक्शन ड्यूरिंग मॉनसून सीजन. आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार कि आप यहाँ.
0: बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: और अब स्वीकार करिए शालिनी मित्तल का भी नमस्कार.

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराधरोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार और आपका स्वागत है आकाशवाणी के कार्यक्रम अल्फा जेन में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी और अल्फा जेन में खास सोमवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं यूथ स्पीक्स, यानी आप में से ही किसी खास को मिलता है मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और आपसे जुड़े मुद्दों को उठाने का, उन पर बात करने का। आज ये मौका मिला है खुशी सिंघल को। खुशी बीसीए कर रही हैं। खुशी, रेनबो के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं बात करना चाहूँगी एजुकेशन में एआई के इस्तेमाल पर। मेरे लिए शिक्षा के युग में एआई का अर्थ है कि सीखना ना अब केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक की मदद से हर छात्र अपनी गति और जरूरत के अनुसार सीख सकता है। इससे शिक्षा और स्मार्ट हो गई है।
0: बिल्कुल खुशी, स्मार्ट एजुकेशन की तो आजकल सब जगह बात हो रही है, लेकिन आखिर स्मार्ट एजुकेशन है क्या और कैसे हमारे आजकल के जो युवा हैं वो इसे सीख सकते हैं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, इस पर होगी बात आज के यूथ स्पीक्स में।

शाम होते होते ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। कभी लगता है कि पूरा दिन बिजी रहे पर सीखा क्या, और कभी असाइनमेंट तो कंप्लीट हो जाते हैं पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। कभी कभी वीडियो सेव करते करते इतने लेक्चर्स कलेक्ट हो जाते हैं कि प्लेलिस्ट भी सिलेबस से बड़ी लगने लगती है। और फिर एक सवाल मन में ज़रूर आता है, मैं पढ़ तो रही हूँ पर क्या सही डायरेक्शन में पढ़ रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशी सिंघल और आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक्स आकाशवाणी रेनबो पर। आज हम बात करेंगे शिक्षा की, लेकिन सिर्फ किताबों और परीक्षाओं की नहीं, हम बात करेंगे लर्निंग की, स्किल की और एआई के इस नए दौर की। तो चलिए बढ़ते हैं एक गीत के साथ।

साथियों, आपका फिर स्वागत है। बचपन से हमें सिखाया गया अच्छे मार्क्स लाओ, लेकिन आज की दुनिया कह रही है कि अच्छे स्किल्स लाओ, क्योंकि जानकारी तो हर जगह उपलब्ध है, गूगल पर, यूट्यूब पर, पॉडकास्ट में, और अब तो हमारे साथ AI भी है। लेकिन असली चुनौती जानकारी ढूंढना नहीं, बल्कि उसे सही ढंग में इस्तेमाल करना है। चलिए एक छोटा सा ना चैलेंज करते हैं। आज जो भी आप नई चीज़ पढ़ें, उसके बारे में खुद से सवाल पूछना कि इसको हम अपनी व्यक्तिगत जीवन में कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, और यकीन मानिए आप उस कॉन्सेप्ट को कभी भूल नहीं पाएंगे, और इसे ही कहते हैं प्रैक्टिकल स्किल। चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ।

0: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
1: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
0: क्या ये जांच उपलब्ध है?
2: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
3: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुँचने से रोका जा सकता है।
2: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
3: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
4: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो पर यूथ स्पीक्स। वैसे एक सवाल कितने लोगों के मन में आया है AI को लेकर, और कितने लोगों ने इसे अपने होमवर्क करवाने के लिए यूज किया है। देखिए, AI ना एक शक्तिशाली उपकरण है, पर याद रखिए ये आपको उत्तर दे सकता है, लेकिन आपकी जिज्ञासा, रुझान, रचनात्मकता और सोच केवल आप खुद ही विकसित कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और अपना काम कर लेते हैं, पर असली फ़ायदा उसे समझने में और उसे खुद से करने में है। यानी कि आप AI की मदद से कंटेंट निकाल लीजिए और उसे अपने आप मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि तकनीक तभी शक्तिशाली बनती है जब उसके साथ जिम्मेदार सोच व रचनात्मकता होती है।

0: दोस्तों, आप सभी हमारे ही हैं और आप में से ही एक खुशी सिंघल को मिला है मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और आपसे ढेर सारी बातें करने का। और खुशी बात कर रही हैं एआई के इस्तेमाल के बारे में। तो खुशी, आपने एआई के इस्तेमाल के बारे में बताया, साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे स्मार्टली एआई का हमें यूज़ करना चाहिए और ख़ासतौर से युवाओं को जो अपने होमवर्क में भी एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी एक्टिविटी है आपके पास जिससे एआई के इस्तेमाल के जो स्किल हैं उसको लोग और बेहतर कर सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम एक दिलचस्प गतिविधि कर सकते हैं। आज रात सोने से पहले ना, आप किसी भी स्किल को 10 मिनट दे दीजिए, चाहे वो कोई भी स्किल हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, राइटिंग हो, अन्य कोई भी भाषा हो, या फिर हम ग्राफिक डिजाइनिंग या कोडिंग भी ले सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम रोज के 10 मिनट भी हम देंगे ना, तो लगभग साल के 60 घंटे बन जाते हैं और कई बार ये हमारे करियर में काम आती हैं, क्योंकि शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है।
0: बिल्कुल खुशी, कहीं ना कहीं हमें एआई से मदद तो मिल ही रही है, फिर चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। कई लोग जैसे अंग्रेजी बोलने में कतराते हैं, घबराते हैं, तो एआई आजकल लोगों को इंग्लिश बोलना भी सिखा रहा है और कहीं ना कहीं उनको एक पार्टनर मिल जाता है, क्योंकि कोई भी भाषा सीखने के लिए ज़रूरी है उसमें बात करना, और एआई के ज़रिए आपको ऐसा पार्टनर मिलता है जिससे आप बात कर सकते हैं, लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यही प्रैक्टिस आपके लिए एक ज़रिया बन जाता है एक नई चीज़ को सीखने का, फिर चाहे वो कोई भी स्किल क्यों ना हो। तो दोस्तों, अपने लक्ष्य को बनाएं, उसको सेट करें, और एक बार अगर कोई लक्ष्य अपने मन में ठान लें तो उसको पाने के लिए एक एक्शन प्लान बनाएं कि कैसे उस तरीके से उसको पाने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, और उसमें एआई का इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं, उसमें सफल हो सकते हैं।

0: दोस्तों, पहले के दौर में ना कहीं सारा फोकस सिर्फ अच्छे नंबरों पर होता था। क्यों खुशी? पहले के दौर में तो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि नंबर अच्छे आने चाहिए, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारी मित्र और जो जिनको भी हम जानते थे, वो कहीं ना कहीं पूछते थे नंबर कितने आए। तो पूरा फोकस, पूरा दबाव सिर्फ अच्छे नंबरों को लाने पर होता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं दौर बदल रहा है और फोकस नंबर्स के बजाय स्किल पर डाइवर्ट हो रहा है। क्या सोचती हो आप इस बारे में?
1: जी बिल्कुल, हम अक्सर सोचते हैं कि अच्छी शिक्षा का अर्थ है सिर्फ अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक। लेकिन आज की शिक्षा ना एक अच्छी शिक्षा को हमें जब बताती है जब हम हमारा हर दिन एक बेहतर इंसान बनने में लगाएं।
0: बिल्कुल खुशी, बहुत गहरी बात कर दी आपने कि कहीं ना कहीं शिक्षा के ज़रिए हमें एक बेहतर इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान जो खुद बढ़े आगे, अपने समाज को आगे बढ़ाए और देश को मजबूत बनाने के लिए काम करे। तो खुशी, क्या लगता है कि हमारे साथ साथ हमारे श्रोताओं को भी संकल्प लेना चाहिए इस दिशा में?
1: जी बिल्कुल, तो चलिए आप भी आज मेरे साथ एक संकल्प लीजिए। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगी, मैं तकनीक का इस्तेमाल सुविधा के साथ साथ समझ बढ़ाने में भी करूंगी, मैं रोज अपनी स्किल बढ़ाने पर काम करूंगी। और आप देखिएगा, जब आप ये संकल्प लेंगे ना, तो आपकी सोच और समझने की दिशा में एक रचनात्मकता आएगी और यही एक रचनात्मकता आपको एक नई दिशा दे सकती है।
0: बिल्कुल खुशी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि कहीं ना कहीं जब हर दिन हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो वो हमें एक बेहतर इंसान बनाता है, हमारे स्किल्स को आगे बढ़ाता है और हमारा आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त करता है। तो चलिए एक गाना सुनते हैं और देते हैं जीवन को एक नई दिशा इस नए संकल्प के साथ।
2: खबर पड़ी

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: बिल्कुल दोस्तों, और हम में से कई लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि हम आसमान की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचें, और कोशिश भी यही रहती है कि आगे बढ़ते जाएं आगे बढ़ते जाएं। स्कूल कॉलेज में तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हम पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं या ऐसा ज्ञान हमें मिल जाता है जो आगे तक हमारे लिए एक बड़ा मूल मंत्र बन जाता है। क्यों खुशी, कहीं ना कहीं आप BCA कर रही हैं, अपने स्कूल कॉलेज आपका अभी रिसेंटली ही आपने पास किया है, तो कहीं कुछ ऐसा है जो एग्जाम्स के दौरान आपने देखा हो, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे तो बड़ा प्रेशर रहता है और कितनी भी पढ़ाई आपने क्यों ना की हो लेकिन डर सबको लगता है, खासतौर से जब बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं कैसे नंबर आएंगे, और जब हम ये सोचने लगते हैं तो और ज्यादा परेशान होने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ था कुछ?
1: जी मैम, इसी से मुझे ना एक बात याद आती है। जब मैं मेरे 10वीं की मेरे 10th के बोर्ड्स थे और मेरा रात को मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगले दिन मेरा पेपर था 10th का, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पेपर कितना टफ आएगा, पेपर मेरा कैसा जाएगा, मेरे कैसे नंबर आएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मेरे पापा ने ना मुझे एक बात समझाई कि हमेशा ना किसी भी चीज़ से डरो मत, जो तुमने पढ़ा है जो तुमने किया है बस उसको करके आओ, जो
0: बिल्कुल
1: भी मार्क्स आएंगे तुम्हारी मेहनत के होंगे, बस अपने आप पर विश्वास रखो और अपना बेस्ट देकर आओ और देखना सब चीज़ें सब अच्छा हो जाएगा।
0: बिल्कुल खुशी, कहीं ना कहीं हमारा आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, और आत्मविश्वास के साथ अपने दृढ़ निश्चय के साथ जब हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमें उसका फल भी मिलता है और हमारे जो सपने होते हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं।

0: दोस्तों, आशा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का जो मूल मंत्र है, मुझे लगता है आपके पास होगा ही और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कुछ सीखते हैं, करते हैं, तो उस चीज़ों को समझने के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो खुशी, आप जब सीखती हो, बीसी आप कर रही हो, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी आप पढ़ती होगी, तो कैसे उन्हें याद रखती हो आप?
1: अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसकी थ्योरी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच लगाती हूं। लेट्स से मैंने आज कोई भी एक कोड पढ़ लिया या फिर कोई भी एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो जब तक मैं उसको अपने कोड में ना लगाऊं या फिर मैं अपनी किसी भी स्किल में ना लगाऊं, तो जब तक मैं उसको मानती नहीं हूँ, मतलब उसकी थ्योरी में मैं नहीं जाती। क्योंकि मुझे चाहिए कि जब तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच हम नहीं लगाएंगे तो हम उसको हम कहीं भी यूज़ नहीं कर पाएंगे और आगे चल के उसका कोई काम नहीं आ पाएगा।
0: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब हम टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ते हैं या फिर कोई और भी चीज़, तो प्रैक्टिकल अप्रोच की बहुत ज़रूरत होती है। उससे जैसे ये कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो उनको लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझेंगे, वो प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तभी वो उस चीज़ को डीकोड कर सकते हैं। क्यों खुशी, सही कह रही हो ना
1: जी?
0: मैं?
1: और ये सिर्फ टेक्निकल में नहीं, ये हर एक स्किल, हर एक चीज़ में काम आता है। अगर आप एक कम्युनिकेशन स्किल भी डेवलप करना चाहते हैं, तो जब तक आप प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपनाएंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाना और उसको सीखना और सही ढंग में करना बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल खुशी, और इसी नोट के साथ हम हमारे श्रोताओं के लिए गाना लेकर आते हैं, और साथ ही साथ ये जो खुशी का फंडा है मुझे भी बड़ा पसंद आया, और मुझे लगता है कि पुराने ज़माने से आगे बढ़कर नए ज़माने में इसी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की बेहद ज़रूरत है।

0: आपकी दोस्त आरजे शालिनी। दोस्तों समय हो गया है 4:56 और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बिल्कुल नज़दीक आ गया है। और जाते जाते खुशी आप क्या कुछ कहना चाहोगी?
1: बस मैं यही कहना चाहूंगी कि किताबों को अपना दोस्त बनाइए और अपनी स्किल को रिफाइन करते रहिए, सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और तकनीक का सही ढंग में इस्तेमाल कीजिए।
0: तो दोस्तों आपको कहीं नहीं जाना है, हम तो जा रहे हैं, लेकिन आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, क्योंकि आगे आपके लिए आएगा प्रोग्राम सैटेलाइट्स।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं की पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में तीन प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विलय किए गए आदिवासी जिलों में कर लागू करने के फैसले का तेज विरोध हो रहा है। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। मौसम विभाग ने त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुरा, सेपा, हेजाला, खोवई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा सहित कई जिलों में 16 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल भारत और इंग्लैंड के बीच जारी। ये थे आकाशवाणी FM रेनबो पर अभी तक के मुख्य समाचार।

5:05, हिना मौज का आदाब कबूल कीजिए। वेलकम करती हूँ आप सबको सिटी लाइट्स प्रोग्राम में। इस ट्रैक के साथ हमने शुरुआत की आज इस प्रोग्राम की और उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आप सुनेंगे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर 5 से 6 के बीच में। और बहुत सारी चीज़ें सिटी की यानी दिल्ली और एनसीआर के बारे में हम बात करेंगे आज भी इस प्रोग्राम में। आज 13 जुलाई है। शुरुआत हम यहाँ से करेंगे कि आज हम मनाते हैं इंटरनेशनल रॉक डे। रॉक का मतलब है वो संगीत जिसको हम अपने आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलने का एक ज़रिया मानते हैं। आज इंटरनेशनल रॉक डे के मौके पर यानी 13 जुलाई को जो मनाया जाता है आज ही के दिन, उसमें के बारे में बस यही कहना चाहेंगे कि ये दिन सिर्फ एक संगीत शैली का उत्सव नहीं है बल्कि आज़ादी, ऊर्जा, जुनून और बदलाव की आवाज़ का प्रतीक भी है। और वो कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। 13 जुलाई की तारीख इसलिए ख़ास मानी जाती है क्योंकि इस दिन ऐतिहासिक चैरिटी कॉन्सर्न का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में दुनिया के सबसे बड़े रॉक कलाकारों ने हिस्सा भी लिया था और अफ्रीका में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए धन जुटाया गया था आज ही के दिन इस रॉक बैंड के जरिए। इस आयोजन ने ये साबित कर दिया दोस्तों कि संगीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है बल्कि मानवता की सेवा का भी सशक्त साधन है। रॉक संगीत की शुरुआत वैसे तो 1950 के दशक में हुई थी। समय के साथ इसने युवाओं की सोच, समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव भी डाला। इसकी तेज लय, दमदार गिटार, प्रभावशाली ड्रम और दिल को छू लेने वाले बोल जो होते हैं, इसकी अलग ही पहचान है। दुनिया भर में अनेक महान रॉक बैंड और कलाकारों ने इस संगीत को नई ऊंचाइयां दी। उनकी धुनों ने पीड़ितों को प्रेरित किया और ये संदेश दिया कि संगीत भाषा, सीमा और संस्कृति की दीवारों से कहीं बड़ा होता है। आज के दौर में भी रॉक संगीत अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। नए कलाकार इसे आधुनिक अंदाज में पेश कर रहे हैं जबकि पुराने गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। तो इंटरनेशनल रॉक डे के अवसर पर हम संगीत की उस शक्ति को सलाम करेंगे जो लोगों को जोड़ती है, उम्मीद जगाती है और इंसानियत का संदेश फैलाती है। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बने रहिए मेरे यानी हिना मौज के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स में।

वक्त हो चला है 5:13:15। हिना मौज के साथ हैं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। बात कर रहे हैं हम दिल्ली और एनसीआर की, जहां होने वाली गतिविधियां हम आप तक पहुंचाते हैं और बताते हैं ये कि आप किस रास्ते से जाएं ताकि आप अटके नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। मौसम का जिक्र भी होगा इस प्रोग्राम में। आपके साथ हैं हिना मौज और ये प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM रेनबो पर। फिलहाल हम दिल्ली में एडमिशन लेने वाले जो PG के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड बात करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जिनको करना है उनके बारे में आज बात करते हैं, क्योंकि आज बिल्कुल लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आप दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं बच्चों, तो आज आपके पास आवेदन करने का आखिरी मौका है। ऐसे में जो छात्र अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं वो जल्दी जल्दी अपनी प्रक्रिया जो है वो पूरी कर लें, क्योंकि दिल्ली के सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में PG कोर्स के जो एप्लीकेशंस हैं उनकी प्रक्रिया जारी है, लेकिन आज जो है वो आखिरी डेट है एप्लीकेशन सबमिट कराने की। तो कई ऐसे होंगे स्टूडेंट्स छात्र जिनको अपने पसंदीदा कोर्स या फिर अपने पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन लेने का इंतज़ार होगा, लेकिन अब समय जो है वो बहुत कम बचा है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने पेपर्स जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार रखें एप्लीकेशन भरते वक्त, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आगे चल के आपकी कोई एप्लीकेशन खारिज ना हो। आवेदन करते वक्त सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी जो जितनी भी एजुकेशन की प्रमाण पत्र वगैरह हैं और पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज़, अपनी फ़ोटो, इन सब को इकट्ठा रखे, एक जगह रखकर पूरी तरीके से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें। किसी भी तरह की गलती या देरी से आपका जो आवेदन है वो रद्द भी हो सकता है, इसलिए फॉर्म भरते वक्त ही सभी जानकारी को ध्यान में रखकर उसके अंदर ज़रूर डालें। और जो स्टूडेंट्स दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है, इस बात को वो भी जानते हैं। PG एडमिशन के

जरिए आप अपने जो करियर है उसको एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने पसंदीदा किसी भी विषय में आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आज आखिरी डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो बिल्कुल भी इसको हल्के में ना लें। कोशिश कीजिए कि आप आज ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दें पोर्टल बंद होने से पहले। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। बातें सिटी और सिटी से मुताल्लिक इवेंट्स की भी होंगी इस प्रोग्राम में आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। एक और प्यारा सा गाना आपके लिए।

5:20 24 सेकंड हिना मौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे आषाढ़ मास की सोमवती अमावस्या की। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन यानी आज मंडे को

है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है और ये धार्मिक तौर पर अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। और आषाढ़ का महीना जो अब चल रहा है यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। ये समय सिर्फ प्रकृति के नवजीवन का ही नहीं है दोस्तों, बल्कि अपने आप के बारे में सोचना, ध्यान लगाना और ये समझना कि हम किस दिशा में अपनी ज़िंदगी को ले जा रहे हैं या फिर क्या सोच रहे हैं या क्या चाहते हैं और आप अपने ज़रिए दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर निर्भर करता है। अमावस्या की रात जो होती है वो हमें ये याद दिलाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश यानी उजाले का मार्ग जो है वो निकलता है। सोमवती अमावस्या के दिन यानी आज के दिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो श्रद्धालु किया करते हैं। इस पर्व का संदेश धार्मिक अनुष्ठानों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, ये हमें अपने जीवन की नेगेटिविटी को त्याग कर नए संकल्पों की तरफ जो है रागिब करता है, अपने साथ जोड़ता है और प्रेरणा देता है क्षमा देने की, सेवा करने की, अपने अंदर संयम रखने की। और ऐसी भावनाएं अगर एक इंसान में आ जाएं तो वो इंसान बहुत अच्छा साबित होता है दुनिया के लिए और अपने लिए। और इस पावन अवसर पर हम अपने जीवन में हर उस चीज़ की शुरुआत करें और अपने अंदर लाने की कोशिश करें, यही इस पर्व का उद्देश्य है। तो इसी तरीके की अपनी ज़िंदगी में चीज़ें शामिल कीजिए, अपने आप को हर चीज़ से परे करके अच्छी चीज़ों की तरफ रहिए और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आइए। आज के दिन का यही संदेश है और आप सबको शुभकामनाएँ आज के दिन की।

आई सिटी लाइट्स में बात किए लेते हैं दिल्ली और एनसीआर में होने वाले इवेंट्स रिलेटेड। भारत टेक्स 2026 जो है वो शुरू हो चुका है। एग्जीबिशंस जो हैं वो 10 जुलाई से ही लगनी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन भारत मंडपम में 13 से 16 जुलाई में ये स्टार्ट होगा। और टेक्सटाइल और अपैरल एग्जीबिटर्स को साथ लाना इसका उद्देश्य है, इंडिया और इंडिया के बाहर तक में भी। इससे रिलेटेड काफ़ी इवेंट्स हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें भी नुमाइश के तौर पर रखी जाएंगी, दिखाई जाएंगी, तो आप इन्जॉय करने के लिए जा सकते हैं और चीज़ों की जानकारी लेने के लिए भी जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में थिएटर, कॉमेडी शोज, लाइव म्यूजिक्स, बुक्स फेयर और उसके अलावा इसी तरीके के बहुत सारे इवेंट्स हैं जो ऑन गोइंग हैं और बहुत अलग अलग जगहों पर आप देख कर जा सकते हैं इनको इन्जॉय करने के लिए। तो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाइए और बहुत सारी जो दिल्ली एनसीआर में होने वाली एक्टिविटीज़ हैं या फिर इवेंट्स हैं उनमें शिरकत करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपका जहन थोड़ा सा अपने रोज़मर्रा के कामों से हटकर कुछ अलग सोच सके, कुछ अलग कर सके और आप तरोताजगी का एहसास कर सकें। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी FM रेनबो पर। 5:28 2 सेकेंड।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं आप सिटी लाइट्स प्रोग्राम हिना मौज के साथ 5:32:37। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाता है दिल्ली एनसीआर की सारी खबरें और कोशिश करते हैं कि आपको वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें जो आपके लिए कारगर साबित हो। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि ट्रैफिक की अपडेट इस वक्त क्या है, क्योंकि इस वक्त सबके ऑफिस से घर जाने का वक्त हो जाता है और इस वक्त आप सोचते हैं कि आप ऐसे मार्ग से घर तक पहुंचें जहां ट्रैफिक या तो बिल्कुल ना मिले या फिर कम से कम मिले। तो उससे से रिलेटेड हम आपको बता ही देते हैं कि आज़ादपुर मंडी के आसपास ड्रेनेज और निर्माण का कार्य जो है वो यातायात को प्रभावित कर सकता है। इस मार्ग से यानी इस रास्ते से गुजरने वाले जितने लोग हैं वो कोशिश करें कि इस रास्ते से ना गुजर के किसी और तरफ से निकल जाएं, अपने घर के और किसी रास्ते को पकड़ें ताकि सही टाइम पर वो घर पहुँच जाएँ। हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ से जाने का मार्ग खुला हो, लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रैफिक जब ज़्यादा होता है, लोग जब ज़्यादा तादाद में सड़क पर होते हैं अपनी गाड़ियों के साथ, तो फंसने का ज़्यादा चांस बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी और जगह से निकल जाएं। ITU रिंग रोड NH 48 यानी दिल्ली गुरुग्राम जो रास्ता है वो, DND फ्लाईवे और नोएडा लिंक रोड और इसके अलावा कालिंदी कुंज पर भी पीक आवर्स में यानी इस वक्त पीक आवर्स हैं तो धीमी रफ्तार से यातायात चल रहा है। और मौसम की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में हल्की बारिश और तेज़ हवाओं की संभावना जताई जा रही है। बारिश के दौरान कुछ जगह जो है वहाँ पे पानी भी भर सकता है और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन सकती है ऐसे में। तो कोशिश कीजिए कि अपना ज़्यादा वक्त लेकर निकलें अगर बहुत ज़रूरी काम है, और अगर घर जाना है ऑफिस से तो फिर आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को सेफली और सही रास्ते से घर पहुँचाएँ। ज़्यादातर गाड़ी चलाने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए थोड़ी आपस की गाड़ियों में दूरी बनाए रखें ताकि एक दूसरे को मारने का जो ख़तरा होता है वो ना रहे, और अपनी जो स्पीड है वो भी कोशिश करें कि बहुत तेज़ ना हो ताकि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। और अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि बहुत सारे अपने हैं जो आपका घर में इंतज़ार कर रहे हैं। तो सेफ ड्राइव कीजिए, सेफली घर पहुंचिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर सुन रहे हैं आप सिटी लाइट्स। और जब बात दिल्ली एनसीआर की हो तो दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो दिल्ली को एक खूबसूरत और एक नायाब और बिल्कुल ही यूनिक शहर साबित करती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का ये दिल है और इसमें रहने वाले लोगों के साथ साथ इसमें बसने वाले मॉन्यूमेंट्स बहुत करीब हैं सबके दिलों के। और इन मॉन्यूमेंट्स में घूमना फिरना और इनके बारे में जानना, ख़ासतौर पर इनकी हिस्ट्री को जानना हर इंसान पसंद करता है। और अगर आप यहाँ के मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री जान जाएं तो बहुत सारी कुर्बानियों का जज्बा आपके अंदर पैदा होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऐसे पता चलेगा कि जिनके बारे में एक आम इंसान आज की दौड़ धूप वाली ज़िंदगी में दौड़ता हुआ इंसान शायद सोचे तो उसको लगे कि हाँ बहुत बड़ा काम था, लेकिन उस वक्त के लोग कर गए, कर गुज़रे और आज

रात फिजा में हम सांस ले रहे हैं उन्हीं की वजह से। 5:47 हिनामौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दिल्ली एनसीआर की खबरों के साथ और बहुत सारे इवेंट्स से रिलेटेड बातों के साथ हम बने हुए हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। सुनते रहिए और ये प्यारा सा ट्रैक आपके लिए।

सिटी लाइव्स प्रोग्राम में हिना मौज के साथ हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। भाई अगर सिटी की बात हो रही है तो राजधानी दिल्ली में एक बहुत ही मीठा मीठा महोत्सव चल रहा है। जी हाँ, वो महोत्सव है आम का। आम का सीजन है और बारिशें पड़ने के बाद बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि आम जो है वो खा लेने चाहिए और बारिशों से पहले नहीं खाने चाहिए क्योंकि नुकसान होता है। शायद सेहत के हवाले से वो ये सब बातें करती हों क्योंकि बड़े बुजुर्गों को हमारी सेहत का ज़्यादा ख्याल रहता था और जो घरेलू नुस्खे या टोटके कहा जाता है उन्हें ज़्यादा वो लोग फॉलो करते थे। बहरहाल बात थी आम की, तो राजधानी में चल रहे आम महोत्सव में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, जाकर देख सकते हैं क्योंकि इसमें देश भर की सैकड़ों किस्में आई हुई हैं आम की, जिनके अलग अलग स्वाद हैं, जिनके अलग अलग शक्लें हैं और जिनका अलग अलग ज्ञान है जो आप तक पहुंच सकता है इस महोत्सव में। और ये अनूठा सा मेला जो है वो हमारे हिंदुस्तान में हर साल लगता है, जिसमें हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं कि आम सिर्फ खा नहीं रहे हैं, उसके बारे में, उसकी हर किस्म के बारे में, उसके हर स्वाद के बारे में हम मालूमात भी हासिल कर रहे हैं।

5:55, यानि आप सब लोगों को बाय बाय टाटा करने का वक्त आ चला। आपसे फिर मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ। यही कहना चाहूँगी कि अपना ख्याल रखिए, खैर से घर पहुँचिए और उस रास्ते से जाएं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का ट्रैफिक जो है वो कम मिले, ताकि वक्त पर आप घर पहुँच जाएं ठीक ठाक से। बने रहिए हमारे आकाशवाणी FM रेनबो के साथ। फिलहाल हिना को दीजिए इजाज़त, क्योंकि अमरीन लाएंगी अगले घंटे में आपके लिए प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। तो जी, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, पूरे 6 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 पौधे लगाए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण बैठक में शामिल हुई। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं की पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के

आरोप में 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक आज ब्रुसेल्स में हुई। बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध, यूक्रेन में जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पेटरसन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। भारत और जापान ने मुक्त खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विलय किए गए आदिवासी जिलों में कर लागू करने के फैसले का तेज विरोध हो रहा है। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। मौसम विभाग ने त्रिपुणा में लगातार बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुणा, सिपाहिजाला, खेवाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा सहित कई जिलों में 16 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। तो ये था अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

6:08 और पूरे 35 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम, आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स। एमरीन आपके साथ है, आपके जज्बात मेरे पास हैं। और देखें ना, अभी तो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है और आगाज़ होते के साथ ही सब ने बता दिया है कि हम लोग बहुत बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं, अच्छे हैं। आप बताइए, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। जब आपसे रूबरू होती हूँ ना, आप सबसे बात करती हूँ, तो दिल खुश हो जाता है। दोस्तों से मिलने पर यही तो हासिल होता है क्या, सुकून। और जब जिसको सुकून हासिल हो गया ना, इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, कसम से सच बता रहे हैं, बहुत बहुत वो लकी इंसान होता है कि जिसे सुकून हासिल हो। सुकून के लिए तो हम कितना कितना कुछ करते हैं। कभी कहीं घूमने का प्लान कर लेते हैं कि अरे दिल कर रहा है थोड़ा सुकून हासिल करें, कहीं चलें वादियों में। और सोचिए, जब दोस्तों से ही बात करके सुकून हासिल हो जाए तो कहीं जाने की भी जो है ज़रूरत नहीं पड़ती। वेल, कहीं मत जाएं, बने रहें हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ। आज क्या पूछने वाली हूँ मैं, बस इस गाने के बाद बताती हूँ। और हाँ, जिन लोगों ने अभी मेरे जिन दोस्तों ने नहीं भेजा है ना खैरियत का पैगाम, फटाफट भेजने 9868107070 पर। एमरीन दिल से इंतज़ार कर रही है, कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

6:15 और पूरे 15 मिनट, 6:15 हो रहे हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। और देखिए ना कितने सारे मैसेज आ रहे हैं। अनिल मोहन कह रहे हैं, उषा कह रही हैं, टिल्लू, मधु सब कह रहे हैं हम तो बिल्कुल अच्छे हैं और आपका हालचाल जानकर ना और भी अच्छे हो गए। ये हुई ना बात, दोस्ती में यही तो होता है कि जब हम एक दूसरे का दोस्ती में हाल जानते हैं ना, तो बस अपना हाल भी जो है ना वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। अच्छी बात है। और मुरादाबाद से जो आया कहते हैं, कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मुकेश पूछ रहे हैं, सोनू पूछ रहे हैं, राजपाल, काजल, मानवी और लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर सब अभी हालचाल एक दूसरे के बता रहे हैं। अच्छी बात है ना, जब मिलते हैं, जब मुलाकात होती है तो सबसे पहले जो है हालचाल ही जानने चाहिए ताकि पता चल जाए। और प्रदीप सलूजा का मैसेज है, जनकपुरी दिल्ली से, हाँ तारीफ के लिए शुक्रिया। ये बताइए कैसे हैं आप? बताएं, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप भी अपने हालचाल बता दीजिए। वैसे जब मैसेज शुरू हो गए ना आने, तो मुझे पता है कि सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास, चंगे होंगे, बिल्कुल, है ना, है ना, है ना, सही कह रही हूँ ना मैं? और नरेंद्र का भी मैसेज आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि हमारा दिल तो किसे मिलकर सुकून इनको मिलता है वो हमारी प्यारी सी बिटिया। आ हा हा हा, जब अपनी प्यारी सी बेटी से मिलते हैं, कहते हैं दिल को जो है ना सुकून मिल जाता है। बस सुकून मिलना चाहिए, वो बेटी से मिलकर हो रहा हो, दोस्तों से मिलकर हो रहा हो, माँ बाप से मिलकर हो रहा हो, सुकून मिलना चाहिए। और ये सरफराज आलम का मैसेज है, पूछने क्या हाल चाल है डियर एमरीन जी। एमरीन के हाल बिल्कुल अच्छे।

हैं आप बताइए कैसे हैं। भुवनेश का भी मैसेज आ चुका है, सबसे पहले मैसेज आया था वैसे भुवनेश, सॉरी सबसे लेट हो गया, कोई बात नहीं। मतलब दोस्ती जो है ना वो बरकरार रहनी चाहिए, ऊपर नीचे तो हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास हैं, और मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए कुछ नई ताज़ी। नई ताज़ी बताने के लिए मैं अब आपसे, मतलब नई ताज़ी पूछने के लिए आप लोगों से मैं ये पूछने वाली हूँ कि मुझे ये बताइए कि हर रिलेशन बहुत बहुत जो है मायने रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, और ज़रूरी भी है। नहीं तो अगर हम उनका ख्याल ना करें तो कोई भी रिलेशन मुझे नहीं लगता कि वो एक अच्छा रह पाएगा। तो मुझे ये सब बताइए कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या अपने अंदर बदलाव करना ज़रूरी है? क्या हमें अपने अंदर चेंजेस लाना ज़रूरी है कि अगर हमें अपने रिलेशन को किसी के साथ मजबूत करना है, अच्छा करना है और अच्छा रखना है हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि हमारी दोस्ती जो है बहुत आगे तक जानी है और लेकर जानी है, तो क्या अपने अंदर चेंजेस बदलाव करना ज़रूरी है? जल्दी से बताएं, और जो अपनी बात है जो भी रखें वो छोटा सा जवाब होना चाहिए ताकि मैं बहुत सारे मैसेज शामिल कर सकूँ, है ना, कि हाँ बदलाव करना ज़रूरी है, इससे जो है दोस्ती लॉन्ग टाइम तक रहती है, या जो भी चीज़ आपको। अब अगर मैं सबके मैसेज नहीं लेती ना तो फिर नाराजगी भी हो जाती है, तो मेरी कोशिश रहती है मैं सबके सबके सबके मैसेज शामिल करूं। तो बस 9868107070 पर अपना मैसेज बहुत शॉर्ट में जो है जवाब वो मुझे बताएं और भेजने यहाँ पर जिस नंबर को मैंने अभी आपको बताया है। अपना नाम जरूर लिखें क्योंकि नाम नहीं होता है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सुनते रहें आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक। फिलहाल ये वाला गाना सुनते हैं, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी एफ एम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

इतने सूदिंग सॉन्ग जब सुनो तो बस खो जाने का मन करता है, वहां से मतलब बाहर आने का दिल ही नहीं करता, है ना? ऐसा होता है ना? आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स, एम्ब्रीन आपके साथ है। और देखिए ना, पूछा कि रिश्तों को मजबूत करने के लिए क्या अपने अंदर बदलाव करना, चेंजेस करना जरूरी है या नहीं है। तो रिश्तों को निभाने के लिए किसने, रवि बता रहे हैं कि आपसी इंट्रैक्शन बहुत जरूरी है और एक दूसरे पर विश्वास भी। ये तो अपनी जगह पर ठीक है रवि, लेकिन मैंने पूछा कि क्या हमें अपने अंदर चेंजेस करना, बदलाव लेकर आना, वो ज़रूरी है नहीं कि अगर हमें अपने रिलेशन को मजबूत रखना है, अच्छा रखना है, मैंने वो पूछा है, तो मुझे इस बात का जवाब चाहिए। और रंजीत कुमार का मैसेज है अररिया बिहार से, कहते हैं कि यदि हमारी कोई हैबिट दोस्ती को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे बदल कर जो है ना अपने रिश्तों को मजबूत हम लोग बना सकते हैं। हाँ, ये बात है कि अगर दोस्ती को कोई आपकी आदत लग रहा है कि मेरी इस आदत से जो है रिश्ता कमजोर हो रहा है तो उसे बदल लेना चाहिए, क्योंकि वो पता चल जाता है अगर बार बार बार बार उसी चीज पर टोकने लगता है दोस्त तो पता चल जाता है। हाँ, अच्छी बात कही, ये अच्छी चीज़ है। और लोकेश का मैसेज है यूपी से, उन्होंने कहा है कि हल्के फुल्के बदलाव ज़रूर करना चाहिए, ज़रूरी है वो। ईगो को कभी भी सामने नहीं लाना चाहिए, ईगो तो छोड़नी ही पड़ेगी तभी रिश्ते जो हैं वो बेटर हो सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है कि ईगो को तो हटाना ही पड़ेगा, अगर दोस्ती में ईगो आ गई तब तो दोस्ती को निभाना वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्ती निभानी है और लॉन्ग टाइम, मतलब अपनी दोस्त को खोना नहीं है ये सोच लेना है, तो बस ईगो को तो लेकर ही नहीं आना। और वैसे भी ईगो जो है दोस्ती में तो कभी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता इतना इतना इतना प्यारा होता है। और ये मैसेज है कि रिश्तों को मजबूत बनाए जाने के लिए दोनों तरफ से ही पहल होनी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। ये ऐसा कहना है नीलम का, किशन का, और हाँ नीलम, स्वाति का और किशु का, आनंद विहार से। बिल्कुल सही कहा कि देखिए बात तो लेकिन हमने अपने ऊपर पूछी है कि हाँ, कि हमें अपने, हम क्या बदलाव कर सकते हैं, क्या हमारे किसी बदलाव से दोस्ती का रिश्ता जो है वो खूबसूरत बना रह सकता है कि नहीं रह सकता है। तो कई मैसेज आ रहे हैं और ये बात भी आपने सही कही कि ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन फिर भी हम क्या चेंज कर सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे ना, है ना। और गुड्डू का मैसेज आया, इन्होंने कहा है कि रिश्तों को बचाना है तो लंबे समय, क्या रिश्तों को बचाना है ये लंबे समय तक रखना है तो बदलाव कर लेना चाहिए। मतलब वही वाली चीज़ कि अगर आपकी कोई आदत या कुछ चीज़ से आपको लग रहा है कि दोस्ती टूट सकती है तो फौरन फौरन फौरन उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बता रहे हैं कि रोल होता है ना वो ईगो का होता है, तो ईगो को तो एक तरफ कर देना चाहिए।

बिल्कुल सही कहा, उसको एक तरफ कर दिया है हमने ईगो को। अच्छी बात है, मतलब सबका जो मानना है, मैं ये देख रही हूँ कि काफी हद तक सब चीजें सेम सोचते हैं हम लोग। और हमारे अंदर सबसे अच्छी चीजें क्या कॉमन है, वो ये कि हम रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि ईगो लेकर बैठ गए तो बस बचे ना बचे वो हम बाद में देखेंगे, नहीं। और ये मैसेज किसका है? जी हाँ एमरीन, जरूरी है अपने अंदर बदलाव करना, क्या पता अगले को हमारी कौन सी कमी जो है वो कमी ना पसंद हो, इसलिए रिश्ते खराब होते हैं। बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन नाम नहीं लिखा, मैंने कहा था नरेंद्र नरेंद्र लेकिन आपने ना इस मैसेज में नाम नहीं लिखा। नाम जरूर लिखा करें, बिल्कुल जरूरी है भाई, कि रिश्तों में अगर आपको बहुत अच्छे लॉन्ग टाइम मतलब हमेशा बने रहना है, खोना नहीं है रिश्तों को, तो अपने अंदर की जो भी कमी है तो उसको चेंज करना है, उस बदलाव लेकर आना है। सुनते रहे आकाशवाणी एफएम रेनबो, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और गाना भी सोच रही हूँ कि मैं प्ले कर दूँ। कह रहे कि जो चाहतों का सिलसिला है, बस उसको चलते रहने दो, चलते रहने दो, बहुत ज़रूरी है चाहतों का सिलसिला जो है चलते रहना, क्योंकि ये जो सिलसिला है हमें आपस में जोड़ता है, एक दूसरे से जोड़ता है। तो बस जुड़े रखिए हमारे इस रिश्ते को, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ।

कह रही थी ना मैं कि चाहतों का सिलसिला जो है वो हमेशा बने रहना चाहिए, तो देखा चाहतों का सिलसिला हमेशा बना रहेगा, क्योंकि अगर हम अपने अंदर बदलाव करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि हाँ हमें अपने रिश्ते को हर हाल में बचाते हुए चलना है और मजबूत बनाना है, तो बस फिर क्या, ईगो हमारी साइड पर और हमारे रिलेशन खूबसूरत वाले वो हमारे साथ। प्रभात का मैसेज आया है मेरठ से, कहते हैं कि प्रोग्राम तो खैर अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। बाबूजी का जन्मदिन है, क्या बात है, आज इनके बाबूजी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत बहुत बधाई बाबूजी प्रभात की तरफ से और मेरी तरफ से भी। हाँ, केक मेरे लिए भी आना चाहिए, खाली प्रभात की तरफ, मतलब ये ना हो कि प्रभात को ही दे दें आप, मेरे लिए भी होना चाहिए केक, ठीक है ना, क्योंकि मुझे भी केक बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से बाबूजी के जन्मदिन का। अच्छी बात है, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा जो है मुस्कुराते रहें, यही जो है बस दिल से आपके लिए दुआ है। और टॉपिक पे जो है प्रभात ने क्या बोला है, प्रभात कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि बदलाव बहुत जरूरी है जीवन में, थोड़ा झुकने में कोई बुराई नहीं है, रिश्ते अच्छे चलते हैं। यही तो बात है कि हम अपने रिश्तों को बचाने के लिए अगर थोड़ा सा झुक भी जाएं तो भी जो है बहुत, मतलब अपने रिलेशंस के लिए हर एक चीज़, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये सब बातें, वैसे कई बार होता है कि कहने की भी होती है कि भाई झुक जाइए, झुकना क्या होता है, सिर्फ बातों को नज़रअंदाज करना होता है कि भाई उससे सहमत नहीं हो रहे, लेकिन खामोशी अख्तियार कर ले कि चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना, डिस्प्यूट नहीं करना, लेकिन कई जगह हेल्दी आर्ग्यूमेंट वो भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि किन किन चीज़ों पर क्या क्या क्या क्या क्या बातें जो है वो निकलती हैं। तो ये तो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वाली चीज़ कि हमें रिलेशंस को अपना अच्छा रखना है, मजबूत रखना है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है, मेन चीज़ ये है। और ये किसका मैसेज है, दिल्ली से मैसेज है, लिखा है कि रिलेशनशिप कायम रखने के लिए अगर खुद को चेंज करना हो तो कर देना चाहिए, सोचने में क्या अच्छा, मतलब जो ज्यादा अगर इस तरीके से नहीं होगा तो रिलेशन जो है वो टूट जाता है। राकेश वोरा का मैसेज है दिल्ली से, बिल्कुल सही बात, अच्छी बात कही है आपने कि अपने अंदर अगर अपने, क्योंकि हम जो है ना दूसरों को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। जब हम अपने अंदर बदलाव लाते हैं ना, तो सच बता रही हूँ कि जो रिलेशन में हमारे साथ जो भी होता है, चाहे हमारे दोस्त हो या कोई भी हो, वो अपने आप ये महसूस कर लेते हैं कि हाँ भाई ये मेरी खातिर यहाँ पर इसने हामी भरी, ये चेंज कर लिया, वो चेंज कर लिया, चीज़ें पता चलती हैं और दिल में जो है ना और भी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है, सच बता रहे हैं। अंकित का मैसेज आया, कहते हैं अगर झुकने से रिश्ता बच जाए तो झुक जाओ, अगर बार बार अपने को ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। ये भी बात सही कही आपने कि हर बार ऐसा नहीं होता, वैसे भी दोस्ती में हर बार कोई दूसरे को झुकाने पे कोई यकीन नहीं रखता है, दोस्ती तो ऐसा रिश्ता है, इतना प्यारा, इतना अच्छा, इतना साफ कि इसमें झुकने की मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ती है, सिर्फ नजरअंदाज करने की बातों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो करना पड़ता है। सरफराज का भी मैसेज आ चुका है, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर के जो वो है ना अहंकार, उसको खत्म करना, उसकी जगह जो है ना धैर्य और विनम्रता, आहा, ये सब चीज़ें जो हैं वो लेकर आनी चाहिए संवाद। बस बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, एक दूसरे को समझने की आदत ही हर रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।

बिल्कुल सही बात कही आपने सरफराज की, एक दूसरे को समझना, वक्त देना, ये जो है ना रिश्तों को मजबूत करती हैं ये सारी चीज़ें। अच्छा लगा, मेरे रिलेशंस तो लिखा है सैकड़े सैकड़ों बच्चों के साथ। अच्छा टीचर हैं, ओके टीचर हैं भैया, प्रोफेसर टंडन का मैसेज है। वाह, जब टीचर डॉक्टर्स के मैसेज आते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है, इसलिए टीचर से भी लगता है और डॉक्टर से भी लगता है, लेकिन कोई नहीं, इनसे तो टीचर्स से अगर हम डरे और एक अपनी एक लाइफ बना ली, क्योंकि टीचर्स जो हैं वही हम सबकी लाइफ बनाने में जो उनका हाथ होता है ना, जो योगदान होता है, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन्होंने लिखा है कि बच्चों को भी गाइड मतलब जो है बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए मुझे तो बच्चों बच्चे के हिसाब से मैं जो है मुझे बहुत अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है, बिल्कुल जीरो ईगो। बिल्कुल सही कहा आपने कि ईगो को तो हर जगह पर जीरो ही कर देंगे तो मुझे लगता है कि हर एक चीज जो है वो बहुत बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें। बहुत सारे और भी मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि अमरीन हमारा मैसेज लेंगे लेंगे लेंगे, सारे मैसेज लेंगे। फिलहाल तो ये वाला गाना सुने, बहुत टाइम हो गया सुने हुए। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रही हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है आपका अपना मैसेज मसाला मिक्स है। अमरीन आपके साथ है और आपके जज्बात, आपकी बातें, आपका जो भी रिलेशन पे मंत्रा है वो ना इस टाइम मेरे पास है। और इतना सही में मतलब अच्छा लग रहा है ये देखकर कि वाकई में हर कोई अपने रिलेशन को जो है ना वो बचाना चाहता है। कोई भी ऐसा नहीं कि रिलेशन को तोड़ने में यकीन रखता है। अब देखिए ना, विकास कहते हैं कि आपके जितने पॉजिटिव वो हैं बदलाव से, अगर आपकी दोस्ती या फिर कोई भी जो भी कोई भी रिलेशन उसमें बदलाव कर ही लेना चाहिए, बहुत जरूरी है, यही एक जीवन है, लाइफ है। विकास बिल्कुल सही कहा है। देखिए रिलेशंस को जोड़ने की बात चल रही है यहां पर, हर कोई चाहता है कि रिलेशन टूटे नहीं, रिलेशन जो है वो जुड़े रहे, अच्छी बात है। और कैलाश लिखते हैं कि रिश्तों को बचाना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर जो है वो चेंज लाना होगा, क्योंकि दूसरों को तो हम बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात। देखिए अभी मैंने भी ये कही थी कि दूसरों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम खुद को बदल कर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर अपने रिलेशन को ज़रूर बचा सकते हैं। झुकना अपने आत्मा, ये नहीं है कि आत्मसम्मान को गिराना नहीं होता है, बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि अपनी एक जिसे बोलते हैं उन्होंने महानता वो दिखाता है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो रिश्ते ना बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और इन्हें निभाना तो और भी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत आसान भी होता है। बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, बस ये होता है कि ये सोच लेना है कि ये हमें दोस्त या हमारा जो भी हम जिसके साथ रिलेशन में हैं बहुत अजीज़ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से डायमंड्स मिलते हैं, तो बस उनको संजो के रखना है ना। तो जब संजो के रखना होता है तो हम उसकी केयर करते हैं, तो हम उसकी केयर का नाम ले दे सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम ये नहीं कहेंगे कि हमें कॉम्प्रोमाइज मतलब हमें झुकना पड़े, कुछ नहीं, झुकना नहीं, हमें बस अपने दोस्त की खास केयर करनी होती है। और ये मैसेज है कि गाना अच्छा लगा, ओके किसका मैसेज है, रंजीत कुमार का, कहते हैं कि गाना बहुत अच्छा लगा, कौन सा, जादू है नशा है, वो तो बहुत प्यारा गाना है। इन्होंने लिखा है, दोस्ती में थोड़ा झुकना और कुछ कहने से पहले थोड़ा रुकना। आहा, क्या मंत्रा दिया है, क्या मंत्रा दिया है, सही में रिलेशनशिप पे इन्होंने बहुत ही प्यारा गोल्डन मंत्रा दिया है कि दोस्ती में थोड़ा झुकना और कुछ कहने से पहले थोड़ा रुकना। कई बार हम जब बहुत गुस्से में होते हैं, होता है ना, उसे कुछ भी जो जुबान पर आया वो बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। तो दिल को तो तोड़ना नहीं है ना, हमें तो अपने दोस्ती के दोस्त के जज्बात को समझना है, किस बात पर नाराज़ हैं, किस बात पर खफा हो गए, क्या हो गया, क्या ऐसी कोई टेंशन है। अगर जिस दोस्ती में ये चीज़ समझ ली जाती है तो सोचिए वो रिश्ता क्या कहलाता है, वो रिश्ता बहुत खूबसूरत कहलाता है, बहुत प्यारा कहलाता है, सच बता रहे हैं। और बदलाव हमेशा आपसी समझ और रिश्ते के बेहतरी के लिए होने चाहिए। ये किसने लिखा है, अनिल ने, उषा ने और मधु ने और टिल्लू नायक ने, कहते हैं कि अगर आपसी समझ बहुत अच्छी है तो, और ये लगता है कि रिलेशन जी, ये जो हमारा दोस्त है, जो हम जिस रिश्ते में हैं, ये बहुत प्यारा रिश्ता है, तो बदलाव जो है वो आपसी अंडरस्टैंडिंग से जो है वो बहुत अच्छे रहते हैं। मतलब अपने आप को अगर आपको उस रिश्ते में जोड़े रखना है तो बस हमें तो जोड़ के ही रखना है, हमें तो हटना ही नहीं है। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें मतलब सुनकर मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारा रिलेशन भी हमेशा हमेशा हमेशा हमेशा ऐसी बना रहे और ऐसी बना रहेगा। तो कहीं मत जाएं, हमारे साथ रहें आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ। कायदे से, क्या कायदे से, बहुत सारी चीज़ें कायदे से होती हैं। सुनते रहें एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

हाय हाय, कितना प्यारा सॉन्ग, मजा आ गया ना सुनकर, अच्छा लगता है। मैं कह रही हूँ ना कि जब सूदिंग सॉन्ग सुनते हैं ना तो अपने आप ही दिल खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। मैसेज मसाला मिक्स सुन रहे हैं आप आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ एम्ब्रीन आपके साथ है। और देखिए ना कितना मतलब अच्छी बात कह रही हैं, धर्म भाटिया का मैसेज है, लिखती हैं कि डियर किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए ना, ज़्यादा तो नहीं बट जो भी रिश्ता हमें लगता है कि वो हमेशा हमेशा बना रहे, कायम रहे, उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा पेशेंस लेवल जो है वो हमें जो है बढ़ा लेना चाहिए। ज़्यादा उसे आर्ग्यूमेंट ना करें, लेकिन मिलकर जो है ना वो बातों को जो है ना वो मतलब एक पूरा रिस्पेक्ट के साथ खुलकर बात ज़रूर करें, ताकि जितने भी अगर हमें लगता है कि हम अपने अंदर अगर कुछ चेंज ला सकते हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, तो वो हम चेंज लेकर आएं। बहुत अच्छी बात कही है, वाकई में खुलकर बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमें लगता है कि हम चेंज हो रहे हैं लेकिन सामने वाला चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलता है रिश्ते में कि वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चेंज अगर हो रहे हैं आप, तो बताना भी बहुत ज़रूरी है, जताना भी कई बार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जताने और बताने से कई बार चीज़ें पता चलती हैं, खुलकर सामने आती हैं। जब हम खुलकर बात करते हैं अपनी दोस्ती में, तो सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत प्यारी होती हैं और अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और ये मैसेज है रवि का, कहते हैं कि अपने आप में जो चेंजेस तभी लाना चाहिए जब सामने वाला हमारी कमियों को बताए। ओ, हम अगर सही हैं तो बदलाव क्यों हो। वाकई में ऐसा भी होता है, ज़रूरी नहीं होता है कि हम चेंज ही लेकर आए, लेकिन मैंने बताया ना चेंज नहीं होता है, वो एक टाइप का केयर होती है, हमारी फ्रेंडशिप में केयर होती है, दोस्ती में, कि हम केयर करते हैं

तो अच्छा लगता है, उससे हमारा रिलेशन जो है वो खूबसूरत रहता है, बना रहता है, अच्छा रहता है। रिलेशन तोड़ने के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि बल्कि जोड़ने के लिए बनते हैं, है ना। और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कितने सारे, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है कि हर कोई रिलेशन को बनाकर रखने में यकीन रखता है, तोड़ने में नहीं। ये मैसेज आया देहरादून से आलोक का, कहते हैं कि जो रिश्ते कैसे होते हैं, स्वार्थहीन होते हैं वो ज़्यादा, मतलब अच्छा, जिन रिलेशन में किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है वो बहुत ज़्यादा टिकते हैं। एक दूसरे को समझना और बहुत ही सॉफ्टली ही रिश्ते को जो है वो मजबूती देती है, मतलब समझना जो है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा इनका मानना है। नहीं, बिल्कुल सही मानना है, आपकी मर्ज़ी बिल्कुल सही है, मैं भी आपसे अग्री करती हूँ कि एक दूसरे को जो समझना है ना और सॉफ्टनेस लेकर आना वो बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत बहुत बहुत होता है ना, जैसे एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं नहीं समझ में आता है, ये नहीं पता कि कितना, मतलब दिल टूट गया है। और लास्ट में पता है हम खुद भी परेशान होते हैं जब हमारी दोस्ती में कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन में लड़ाई होती है, या हम आर्ग्यूमेंट करते हैं या डिस्प्यूट करते हैं, तो हमारा दिल खुद भी दुखता है, दिल अपना भी दुखे, अपने रिलेशंस में जिसके साथ भी उसका भी दुखे। आय हाय, तो नहीं चलेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। मैं तो कह ही रही हूँ, मुझे तो हर चीज़ जोड़ने में यकीन रखती हूँ, तोड़ने में नहीं। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, फिलहाल ये वाला गाना आया है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, सच बता रही हूँ मैं। नहीं यकीन आ रहा तो सुन लो ना, सुनते रहो आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ जी हाँ, दिल जो है ना ऐसे ही होता है, क्या बोले इसको, कोई पागल बोलता है, कोई बहुत प्यारा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है ना। तो बस दिल से रिश्ते निभाते रहिए और सबको अपना बनाते रहिए, और कभी भी किसी रिश्ते में लगता है कि जो है हमें आगे तक बढ़ा के रखना है, हमेशा रखना है, उस रिश्ते को कायम रखना है, तो बस नज़रअंदाज करते हुए चलिए। सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो। फिलहाल अमरीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। बाय, टेक केयर।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: Welcome back. You're tuned into the program Country Carnival with me, Swasni, on Akashwani Rainbow. And let's move on to a few more tracks on the list, because country music is definitely one such genre that delivers its message. It always has a beginning, the middle, and an end. And it's always filled with characters that we love. And sometimes we are bound to remember.

नमस्कार, पूरे 8 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 पौधे लगाए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने रोहिणी सेक्टर 9 में विशेष गहन पुनरीक्षण बैठक में शामिल हुए। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं की पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में आज ब्रुसेल्स में हुई। बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध, यूक्रेन में जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। न्यूजीलैंड के ग्रामीण समुदाय मंत्री मार्क पैटर्सन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में विलय किए गए आदिवासी जिलों में कर लागू करने के फैसले का तेज विरोध हो रहा है। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। मौसम विभाग ने त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुरा, सेपा हिजाला, खोवाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा सहित कई जिलों में 16 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। और भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन में लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल

186 रन पर सिमट गई। तो ये थे इस वक्त के इस एक घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ, यानी आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

8:07 और पूरे 35 सेकंड हो गए हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम आपका अपना म्यूजिक मस्ती, जी हाँ, एम्ब्रीन के साथ।

8:17 बल्कि 8:18 हो चुके हैं और पूरे 2 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिक मस्ती है, आपका अपना फेवरेट शो। जी हाँ, जिसमें हम 1 घंटा कई बार बहुत बहुत बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि कुछ सुकून से गानों को इंजॉय करें, उन लम्हों को गुजारें जिन लम्हों को गुजारने का वक्त तो नहीं मिल पाता लेकिन वक्त हमको निकालना पड़ता है। तो बस वो वक्त निकालिए और इंजॉय कीजिए मेरे साथ, यानी आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूज़िक मस्ती अम्ब्रीन के साथ। और कई गाने, कई म्यूज़िक हमारे दिल को बहुत सुकून देती है और आज वही सुकून ले रहे हैं। सही में पूरे दिन होता है ना कि दौड़ भाग जिंदगी में, बस काम काम काम, लेकिन उस काम में अगर हमें हमारी कोई फेवरेट चीज़ लाइक म्यूज़िक चीज़ में कुछ आराम मिल जाए, उसमें हम आराम ढूंढ लें, सुकून ढूंढ लें, तो कितना कितना कितना वो पल खुशगवार बन जाता है। देखिए ना इस वाले गाने को, हाँ हाँ, बहुत बहुत प्यारा सॉन्ग। सुनते रहें आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

जी हाँ, दिल को बेकरार करने के लिए ना मैं ये वाले गाने प्ले कर रही हूँ, ताकि दिन भर की थकावट जितनी भी है वो बिल्कुल दूर हो जाए। सही में सुनते रहे आकाशवाणी FM रेनबो, दिल से दिल तक।

में चलना और हमारा काम है उसके साथ साथ चलना। फिलहाल एमरीन को दीजिए इजाजत, आपसे फिर मिलूंगी ना, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास का खास ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।

और आइए अब नजर डालते हैं इस घंटे के मुख्य समाचारों पर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमरीका संतुलित तथा दोनों देशों के हितों वाले व्यापार समझौते की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने व्यापार वार्ता में गतिरोध की खबरों को खारिज किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर 35 से 45 मिनट होगा। जम्मू की एक अदालत ने अलगाववादी नेताओं की पुस्तकें प्रकाशित और प्रसारित करने के आरोप में 3 प्रकाशकों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों में खुफिया विभाग के अधिकारी की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता ताहिर हुसैन सहित 5 लोग दोषी करार। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 पौधे लगाए। नागालैंड में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। असम राइफल्स का काफिला दीमापुर जा रहा था जब दोपहर करीब 2 बजे विस्फोट हुआ। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। हुर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले फिर तेज किए। महिला क्रिकेट में भारत ने इतिहास रचते हुए लॉर्ड्स में खेले गए पहले महिला टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराया। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार और आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आपकी याद आती रहेगी। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर। आपका स्वागत। आइए यादों के सफर पे चलते हैं और दिल को टटोल के पूछते हैं कि आखिर ये दिल किसे याद करता है।

कहते हैं जनाब कि आंसू कभी यूं ही नहीं बहते, हर आंसू के पीछे कोई कहानी हुआ करती है, कोई अपना होता है, कोई अधूरा ख्वाब या कोई ऐसी याद जो दिल से कभी जाती ही नहीं, और ये आंसू कई बार अपने आप बह जाते हैं। आखिर उसे कैसे बताएं कि वो हमारे लिए क्या है, कैसे कहें उससे दिल की बात, कैसे समझाएं उसे कि ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता है।

आ जाओ लौट के तुम, ये दिल कह रहा है। लेकिन दोस्त जो चले जाते हैं हमेशा के लिए, वो कहाँ लौट कर आते हैं? कभी सोचा है आपने कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या होता है? वो लम्हा जब कोई

तो घर तो वही रहता है, लेकिन घर में एक कमी सी रह जाती है। हम हर लम्हा उन्हें याद करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। काश ऐसा हुआ होता, उन्होंने यूं कहा होता और मैंने यूं कहा होता। काश उनकी वो बात सुनी होती, काश उन्होंने कहा था ऐसा होता वैसा होता। लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी में उनके बाद भी बेशुमार खुशियां आती हैं, लेकिन उनका वो खाली बैट या फिर उनकी चीज़ें देखकर एहसास होता है कि वो अब नहीं है हमारे बीच। ये एक हकीकत है कि जो चला जाता है वो लौट के नहीं आता। लिहाजा ज़िंदगी में ही हम क्यों नहीं एक दूसरे की कदर करते, एक दूसरे से मिलते, मुलाकातें करते। बहरहाल माँ जैसी शख्सियत को कौन भुला पाएगा।

बेशक जो हमेशा के लिए बिछड़ जाता है वहाँ चला जाता है जहाँ से कोई लौट के नहीं आता, उसका इंतज़ार भी भला कैसे किया जाए। ये दिल करार पा लेता है, इसे करार आ जाता है, सब्र आ जाता है कि वो चला गया हमेशा के लिए। लेकिन जनाब कुछ रिश्ते यूं भी हुआ करते हैं कि वो आपके साथ हों बावजूद इसके, कहीं एक दूरी का एहसास होता है, चाहे वो अपने भाई बहन ही क्यों ना हो। जरा सोचिए तो, एक बहन जो आपको बेहद अच्छी लगती है, आप उसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं, वो भी आपसे बहुत मोहब्बत रखती हो, एक ही शहर में हो, फिर भी वो दूर हो, मिल ना पाए आप उससे, तो लगता है कि बहन दूर हो गई है, हर खुशी अधूरी सी लगती है। हम बहुत सारे खुशियां मनाते हैं, खुश होते हैं अपने घर में, लेकिन जब अपने चेहरे उस खुशी में ना हो तो वो खुशी अधूरी सी लगती है। भाई ना हो तो ज़िंदगी का लगता है कि एक मजबूत सहारा बहन से दूर हो रहा है। एक अजब कहानी है जनाब इन रिश्तों की, कैसे कैसे बताएं, कैसे बयां करें, काश कि कोई समझे ये रिश्तों की जो पेचीदगियां हैं, इन्हें हम अल्फाज में कैसे ढालें, कैसे बताएं इस दर्द को कि ज़रा थम थम के बरस, थम थम के आ इस दिल में उसकी यादों की जो बूंदें गिरती हैं, कैसे थामे उन्हें, काश ये दर्द भी थम जाए, ये दर्द भी धीरे धीरे हौले हौले हमसे कुछ कहे।

कई बार यूं भी होता है कि हम अपने गुजरे हुए रास्तों से गुजरते हैं, जहां कभी रोजाना जाया करते थे, फिर वो रास्ता अलग हो जाता है। और बरसों बाद जब हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो कुछ लोग तब भी याद आते हैं। लगता है कि शायद पीछे से कोई आवाज़ देगा, जैसे कभी पहले हुआ करता था। ये दिल चुपके से अतीत की जानिब चला जाता है, अतीत को तलाशने लग जाता है, और फिर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। कई बार यही मुस्कान आंसुओं में भी बदल जाती है। लेकिन जनाब, हर आंसू गम के निशानी नहीं होता। कई बार ये उस रिश्ते की कीमत भी हमें बताते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ मिला हो, एक कहना चाहिए कि खूबसूरत ज़िंदगी मिली हो। ये आंसू कई बार ये भी एहसास दिलाते हैं कि कुछ लोग, कुछ पल और कुछ यादें वक्त से कहीं ज़्यादा मजबूत होती हैं। और ऐसे में ज़रा सोचिए, वही लोग जो बेहद करीब हैं, अगर हमसे रूठ जाएं, तो फिर कैसे, क्या कहेगा ये दिल, क्या सोचेगा ये दिल।

वाकई अगर कोई चला जाता है तो शिद्दत से याद आता है। और कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जिनसे हमारा कोई भी रिश्ता नहीं होता, या ये कह लीजिए कि एक बंधन होता है लेकिन किसी रिश्ते का नाम नहीं दिया जा सकता। न दोस्ती की कोई पहचान, न मोहब्बत का कोई इजहार, फिर भी दिल के करीब होते हैं। अजीब बात है, कुछ रिश्ते नाम से नहीं, मुझे लगता है कि एहसास से जिए जाते हैं। उनकी मौजूदगी अच्छी लगती है, उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है, और फिर वो ना हो, बहुत दूर चले जाएं, तब एहसास होता है उनका। और कई बार बिना दस्तक दिए ही उनकी याद आँख को अगर नम भी नहीं करती तो एक एहसास तो रहता है कि हाँ, वो एक शख्स था जो बिना किसी रिश्ते के एक आवास पर आ जाता था। लेकिन हमें उस वक्त इसका एहसास नहीं होता। एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है।

दिल तो चाहता है कि आपसे यूं ही ढेर सारी बातें किए जाएं, दिल में जो बात आती है वो आप तक पहुंचाई जाए, लेकिन साथ ही साथ इसका भी एहसास है कि आप सब हमारे साथ हैं। सरफराज आलम साहब जो कि हाट दर्शना बाजार से जिला अररिया बिहार से हमारे साथ हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में यादों का जिक्र करते हैं। वक्त बहुत कम है लिहाजा मैं जल्द से जल्द आपके नाम शामिल कर लूं। सौरा बनीजा गाजियाबाद से हमारे साथ और जोया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स अ लॉट। और पंकज हैं अमरावती महाराष्ट्र से, थैंक यू सो मच, आप अक्सर हमारे साथ होते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ हैं नगीना से सलीम अख्तर और रेशमा बेगम अलीगढ़ से, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे साथ हैं आपने अपना नाम नहीं लिखा दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा प्रदीप सलूजा जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रेमचंद प्रेमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत मैसेज करने के लिए हमें। और इसके अलावा हमारे साथ और कौन है जल्दी से देख लेते हैं, कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान और उनके तमाम दोस्त हमारे साथ हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं और रिश्तों की अहमियत पर भी आप बात कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुड इवनिंग मैम, गुड जॉब, ये हमें किसने लिखकर भेजा है, पंजाब से सतपाल वर्मा ने, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए, अच्छा लग रहा है आप सभी को। और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो, ये हमारे साथ कौन है, किशन मंजानी, नीलम स्वाति और किशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन हमारे साथ हैं, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए मैं यकीन मानिएगा तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। और इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ कौन जुड़ चुका है, माँ की याद पर आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन दोस्त आपने भी अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन जहाँ तक मैं समझ रही हूँ ये पारुल हमारे साथ हैं, थैंक यू पारुल। और राहुल रेणु हैं हमारे साथ बिहारी कॉलोनी शादरा से, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, सॉरी कर रहे हैं, और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैं शहजाद राजगंज से अररिया बिहार से, बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन हमारे साथ हैं, तुगलकाबाद विलेज से मजहर अली हैं, लिखते हैं कि मैं भी, ठीक है हम समझ गए हैं कि आप भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इसके अलावा हमें और क्या चाहिए, तो बस आप इसी तरह से हमारी जो एक कोशिश है उसमें आप हमारा साथ देते हैं, मैं आपका यकीन मानिए दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और रही बात यादों की, रही बात अपने अपनों की, जो यकीनन हमसे कई बार इतनी दूर चले जाते हैं जहाँ से लौट कर आना मुमकिन ही नहीं होता, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद होते हैं, हमारे आसपास होते हैं, अगर वो भी ना मिले तब लगता है कि दिल में कोई कमी सी है, और ये आँख भी बार बार इसी जानिब इशारा करती है, और दिल बार बार यही कहता है कि काश एक बार और मुलाकात हो जाए, एक बार और मिल जाए, और अगर नहीं भी मिल रहा है वो शख्स, तो आखिर वो जो खूबसूरत वक्त साथ गुजारा है वो क्यों कर गुजारा था।

वो नींद और वो चैन जो एक बार चला जाता है दोस्त, वो कहाँ आता है लौटकर। चलिए, मोहब्बतों का ये सफ़र, यादों का ये सफ़र फ़िलहाल यहीं तक। मुलाकात होगी आपसे प्रोग्राम रंगे महफिल में 11 बजे। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और मोहब्बत की जो शमा है उसे हमेशा रोशन रखिएगा। चलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।

और लीजिए अब सुनिए आकाशवाणी के रेनबो चैनल के अभी तक के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37 की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरित दिल्ली संकल्प और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत 1100 पौधे लगाए। तमिलनाडु के मदुरै के पास मैलूर में बस दुर्घटना में 6 लोगों की मौत। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। हुर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक आज ब्रुसेल्स में हुई। बैठक में रूस पर नए प्रतिबंध, यूक्रेन में जारी युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा। मौसम विभाग ने त्रिपुरा में लगातार बारिश के कारण पश्चिम त्रिपुरा, सेपा हिजाला, खोवाई, गोमती और दक्षिण त्रिपुरा सहित कई जिलों में 16 जुलाई तक तेज बारिश की चेतावनी जारी की। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमटी। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। और आइए अब लौटते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और आगाज करते हैं प्रोग्राम रंगे महफिल का। मेरा आदाब कबूल कीजिए और साथ ही ये खूबसूरत नजराना आप सबकी समातों की नजर।

क्या फिर मिलेंगे, पूछा था उसने बिछड़ते वक्त। क्या फिर मिलेंगे, पूछा था उसने बिछड़ते वक्त। मैं मुस्कुरा दिया था फकत उसके बिछड़ते वक्त। एक उम्र की रफाकत भी कम पड़ गई, मगर सब फैसले हुए थे फकत बिछड़ते वक्त। वो आंख भर के देख रहा था मुझे, वो आंख भर के देख रहा था मुझे, मगर कितने नकाब टूट गए उसके बिछड़ते वक्त। मैं चाहता तो रोक भी लेता उसे, मगर लबे खामोशी से भर गए उसके बिछड़ते वक्त। लब खामोशी से भर गए उसके बिछड़ते वक्त।

बारिश की बरसती बूंदों ने जब दस्तक दी दरवाजे पर, महसूस हुआ तुम आए हो, अंदाज तुम्हारे जैसा था। हवा के हल्के झोंके की जब आहट पाई खिड़की पर, महसूस हुआ तुम गुजरे हो, एहसास तुम्हारे जैसा था। मैंने गिरती बूंदों को रोकना चाहा हाथों पर, एक सर्द सा एहसास हुआ वो लम्स तुम्हारे जैसा था। तन्हा मैं चला फिर बारिश में, तब एक झोंके ने साथ दिया, मैं समझा तुम हो साथ मेरे, वो साथ तुम्हारे जैसा था। फिर रुक गई वो बारिश भी, ना रही बाकी आहट भी, मैं समझा मुझे तुम छोड़ गए, अंदाज तुम्हारे जैसा था, अंदाज तुम्हारे जैसा था।

का खजाना तेरा भी है मेरा भी है। और ये जो गम का खजाना है इसका आगाज होता है मोहब्बत से, इश्क से। इश्क एक ऐसा एहसास जिसे अल्फाज में पूरी तरह से समेट पाना शायद कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। कितने बड़े बड़े शायरों ने इश्क पर, मोहब्बत पर, प्रेम पर न जाने कितना लिख दिया होगा, बावजूद इसके आज भी इश्क की कहानी अधूरी ही लगती है। और ये एहसास लफ्ज़ों का अगर सहारा ले भी ली तो समझ लीजिए कि वो गज़ल बन जाती है। गज़ल महज एक तरह से कहना चाहिए कि शायरी नहीं है, दिल की ज़ुबान है जो कई बार खामोशियों में भी अक्सर हमें आवाज़ दिया करती है। अक्सर हम सोचते हैं कि काश कहीं से कोई आवाज़ आ जाए, कहीं से कोई ऐसा एहसास आ जाए जो ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ आगे ले जाए।

जब भी गजल की बात होती है तो गजल में इश्क नजर आता है, मोहब्बत का एहसास होता है। इसमें इश्क की पहली धड़कन के बारे में हम जानते हैं, इंतजार की बेचैनी भी, वसल की खुशी भी और जुदाई का दर्द भी है। यानी कुल मिलाकर गजल हमारे जज्बात, हमारे एहसासात की अक्कासी करती है। देखा जाए तो न जाने कब से गजल ने मोहब्बत को सिर्फ बयां नहीं किया बल्कि उसे एक नई जिंदगी दी है। हर शेर में किसी दिल की दास्तां नजर आती है, हर बार हर लफ्ज में यूं लगता है कि मोहब्बत आवाज दे रही है। कई बार मोहब्बत टूट जाती है, कई बार धड़कनों को उसकी आवाज भी सुनाई नहीं देती जो वो सुनना चाहता है। लेकिन जनाब क्या कीजिएगा, अगर मोहब्बत है, इश्क है, तो उसमें कसक तो होगी ही।

क्या टूटा है अंदर अंदर, क्यों चेहरा कोमलाया है। जब अंदर कुछ टूट जाता है तो इंसान कहाँ किसी को कुछ बता पाता है, कहाँ कुछ कह पाता है। ये लफ्ज आखिर कहाँ खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, किस्सा इश्क उसे हमने सुनाया ही नहीं, क्या कहें अपनी तबीयत को ये भाया ही नहीं। बेशक इंसान चाहता है बहुत कुछ, कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता, और कई बार किसी से कुछ सुनना भी चाहता है लेकिन सुन ही नहीं पाता। और कई बार यूं भी होता है कि खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। दो लोगों के बीच जो खामोशी होती है कई बार, वो खामोशी कहाँ होती है, वो तो दिल के जज्बात का आईना हुआ करती है। लेकिन जब किसी का दिया हुआ दर्द उसे हम मोहब्बत कह लें, तो समझ लीजिए कि मोहब्बत उस मकाम पर पहुंच गई है जहां कोई वापस आ ही नहीं सकता। ये वो मकाम होता है जिसके दूसरी जानिब कोई रास्ता होता ही नहीं है, और इसी को कहते हैं कि जब उसने दर्द दिया है तो उसका दर्द भी कबूल है।

बेशक जनाब, ये दर्द अगर उसने दिया है तो फिर ये भी कबूल है और ये भी मोहब्बत है। जिन्हों से गुजरने को जी चाहता है, हंसी जब्त करने को जी चाहता है। जुनून से गुजरने को जी चाहता है, हंसी जब्त करने को जी चाहता है। जहां इश्क में डूब कर रह गए हैं, वहीं फिर उभरने को जी चाहता है। लेकिन जनाब, इस जी का क्या है? ये तो बहुत कुछ चाहता है। अक्सर और बेशतर एहसास होता है कि ये मोहब्बत है भी या नहीं। क्या उसकी आदत होना मोहब्बत कहलाई जाती है? वो ना हो तो उसके ना होने का दुख होता है, वो हो तो शायद एहसास नहीं होता। अजब कहानी है इस दिल के जनाब, और ये कह सकते हैं कि अक्सर उसी का इंतज़ार रहता है जो सामने भी हो, जो साथ भी हो। ये नज़र उसी को देखती है, उसी को चाहती है, उसी का इंतज़ार करती है।

देखा आपने, इंतज़ार की लज्जत है ये कि इंसान इंतज़ार करता ही चला जाता है। ये आंखें इंतज़ार की आदी हो जाती हैं। और जब बात आई है इंतज़ार की, तो जनाब हम समझ रहे हैं कि आप भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी पैगामात हम प्रोग्राम में शामिल करें। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास मैसेज आया है जोया का, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। लिखती हैं, सुकून वाले सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू जोया, आप ऐसे ही हमारे साथ रहिए, अच्छा लगता है। और इसके अलावा हमारे साथ हैं अनुभव, लिखते हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं भी आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू अनुभव, आप बिहार से हैं। और इसी तरह से आप हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम सुनते हैं तो यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है।

आप इस रात की तन्हाई में आपको सुन रहे हैं, आपकी शायरी और गजलें पसंद आ रहा है। ये कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और इतनी सी थी उनसे आखिरी मुलाकात की कहानी, जुबा खामोश, आंखें चार और उनमें दो दो बूंद पानी। जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिला तो ले लिया हमने, खबर नहीं थी सबक से पहले इम्तिहान होंगे। देव लिखते हैं अपने बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ अंदाज में हमेशा की तरह। शुक्रिया देव और गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो रंगे महफिल। रात की तन्हाई में हवाएं और फिजाएं और इसमें तैरती हुई आपकी आवाज़ दिलों को सुकून दे रही है। चिट्ठी ना कोई संदेश, ये गज़ल सुनवा दीजिए। नाइस प्रेजेंटेशन किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। मुझे लगता है आपने आज आपकी याद आती रही नहीं सुना, उसमें हमने आज इस गज़ल को शामिल किया था। और लेकिन कोई बात नहीं, फिर सही आप शायद नहीं सुन पाए होंगे, कोशिश करेंगे फिर किसी प्रोग्राम में इस गज़ल को ज़रूर शामिल करें। और 13 तारीख याद थी मुझे, पर लेट ट्यून किया है, फिर भी महफिल में शामिल हो गया। खोलते ही खूबसूरत गज़ल सुनने को मिली। नमस्कार, केपी तोमर मेरठ से हमारे साथ। वाह क्या बात है, बेहद खूबसूरत गज़ल आशा जी की आवाज़ में। जी हाँ केपी तोमर साहब, कोई बात नहीं, आपको याद रहा आज की हमारी मुलाकात, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और किसी को याद करना और किसी की याद रह जाना ये बड़ी बात है, लेट होना कोई बात नहीं है। गज़लें आपको अच्छी लग रही हैं और हमें क्या चाहिए, हम तो खुद यही चाहते हैं कि दिल को सुकून दिया जाए, इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कुछ पल कुछ लम्हे अपने लिए निकाले जाएं जिसमें सुकून का एहसास हो सको। और प्रदीप सलूजा जी हमारे साथ हैं जनकपुरी नई दिल्ली से, लिखते हैं वाओ कितनी खूबसूरत गज़लें आप सुनवा रही हैं और तुसी नेक्स्ट फिर कब आएंगे हमसे मिलने के लिए। प्रदीप जी हम अक्सर वेशतर आते हैं, कभी सुबह, कभी दोपहर और कभी शाम, और मुलाकात आपसे तकरीबन इस प्रोग्राम में अक्सर हो जाया करती है, तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आपसे मिलने के लिए आएं और ढेर सारी बातें आपके साथ करें, कुछ अपनी कहें, कुछ आपकी सुने, कुछ दिल के बारे में जानें, कुछ मोहब्बत का जिक्र करें, कुछ इश्क की दास्तानें कहें आपसे। चलिए, सुदर्शन मुखी और अनिता मुखी, सिमरन मुखी हैं हमारे साथ शांतिनगर सोनीपत से, लिखते हैं वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मंडे, गुड इवनिंग एंड नाइट, वी आर लिसनिंग प्रोग्राम रंगे महफिल, नाइस प्रेजेंटेशन, गुड गज़ल प्लीज, यू आर बिग थैंक्स फॉर बेस्ट प्रोग्राम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच मुखी फैमिली। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि कुछ अच्छा सुनवा सकें, कुछ बेहतर सुनवा सकें, और आप सबको अच्छा लगता है और हमें क्या चाहिए। आपका शो अच्छा लग रहा है, अनुभव एक बार फिर हमारे साथ हैं, शुक्रिया अनुभव। और शो आप ही का है, मेरा शो नहीं है, आप हैं हमारे साथ, तो समझ लीजिए कि ये शो है कामयाब। और नमस्कार मैम, आई एम वेरी सॉरी, प्लीज से टू से आकाश, ओके आप ओके, तुम्बा हमारे साथ, और तुम्बा हमेशा से आकाश को याद करती हैं, लेकिन तुम्बा आपने कभी हमें ये नहीं बताया कि आपकी आकाश से मुलाकात कभी होती भी है या नहीं, चलिए फिर बताइएगा कभी। और रही बात हमारे साथ, लीजिए जनाब एक और साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं दिल्ली से, लिखते हैं कि बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ और सोच रहा था कि मैसेज करूँ या ना करूँ, लेकिन आपने मजबूर कर दिया। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि हम कामयाब हैं आपसे दोस्ती करने में। और कोशिश देखिए एक छोटी सी हमारी सिर्फ और सिर्फ इतनी सी होती है कि हम सब जानते हैं, हम सब की ज़िंदगियों में बहुत सारे दुख भी होते हैं, खुशियां भी होती हैं, लेकिन कुछ लम्हे ऐसे भी होने चाहिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच सकें, अपना तज़िया कर सकें और जान सकें कि आखिर हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, हम किसके साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं या फिर किसके साथ कुछ पल खुशी के गुजार सकते हैं।
अपने बारे में जाने कि हमारे अंदर कहाँ कोई गलती हुई है हमसे, कौन सी हमारे अंदर कमी है, तो उसको भी दूर किया जा सके। यानी कुल मिलाकर हम एक ऐसा वक्त

ज़रूर गुजारें कि हम अपने लिए जिएं। तो बस हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इस प्रोग्राम में आपके साथ वो बातें कर सकें जो वाकई हमारी अपने दिल की होती हैं। कई बार दिल बहुत उदास हो जाता है और उसके लिए ये बहुत ही खूबसूरत शाहकार है।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37 की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। हॉर्मुज जलमंड रूपंध्यम पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: 12:03 और 20 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: चतुर नार करके सिंगार
1: एक चतुर नार बड़ी होशियार
0: मेरे मन के द्वार ये घुसत जात
1: अपने ही जाल में फंसत जात
0: हम मर

और अब प्रस्तुत हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37 की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। हॉर्मुज जलडम रूमध्य पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। रात्रि का 1:03 हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सुहानी रात।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

हमेशा ये फरियाद करते रहोगे रहोगे हमेशा ये फरियाद करते रहोगे। करो आज तौबा तौबा करो आज तौबा मुसीबत

यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: इसीलिए तो कहता हूं
1: यही तो था एक हीरो जिसके आगे मैं जीरो
0: बाकी

2 बजे हैं, प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया

रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्यवाही के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। 2 बज चुके हैं और आइए

आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:30 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: लाल कपड़ों वाली मेम साहब।
1: कौन? मैं?
2: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
2: लवली नेम।
1: थैंक यू।
2: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
2: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों

को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ 232 अरब डॉलर से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में नक्सलवाद के वित्त पोषण से जुड़े धनशोधन मामले में लगभग 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमरीका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 3:04 और 3 सेकंड। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी कार्यक्रम लेकर आपके साथ आपके बीच अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और लीजिए अब सुनिए एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में नक्सलवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। साथियों, समय हो रहा है सुबह के 4:04:03, और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम सारे गामा। आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यारा सा नमस्कार।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: लीजिए पेश है FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्टों को खारिज किया। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी की हत्या मामले में दोषी करार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड में नक्सलवाद के वित्त पोषण से जुड़े धन शोधन मामले में लगभग 3,87,00,000 रुपए की 11 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से भारत लाए गए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर से शुरू करेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। तो ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। और लीजिए अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अलमास रजा का नमस्कार और साथ ही हार्दिक अभिनंदन।

0: दिल के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।